सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 24 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: روزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया. इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण. विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है. इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल है. शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की. प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है. उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की. प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे. G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है. भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है. सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया. G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई. गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा. श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा. दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है. एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है. फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया. प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा. उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से. आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदे।

ईश्वर कहते हैं, मुझे पाने के लिए बड़े बड़े साधनों की नहीं, सच्चे प्रेम और निष्कलंक भक्ति की आवश्यकता है। जो भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके हर कदम पर उसके साथ रहता हूँ।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है श्याम रंग से, कि श्याम रंग में पिया मुरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्दों की सुंदरता देखिए।

वंदना कार्यक्रम की इन भक्ति रचनाओं में आपने आवाजें सुनी मोहम्मद रफी बेगम परवीन सुल्ताना और अनूप जलोटा की। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेद स्वरों में ये देशगान।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है गतिशीलता। आलेख है जय कुमार मुदगल का, वाचन है श्री कृष्ण शरद का।
1: मनुष्य सदैव आगे और दूर देखने का प्रयास करता है। वो जानना चाहता है कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद वो कहां चला जाता है। इस संबंध में अनेक मतों की स्थापना हुई। इनमें से कुछ मतों को खंडित करके छोड़ दिया गया और कुछ को स्वीकार कर लिया गया। वास्तव में मनुष्य जब तक इस संसार में रहेगा तब तक विचार करता रहेगा, तब तक ऐसा चलेगा। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय वेदांत दर्शन एकत्व की खोज को महत्व प्रदान करता है। जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले को जान लेने पर जगत की सारी मिट्टी को जान लिया जाता है, उसी प्रकार ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने पर जगत की सारी वस्तुएं जानी जा सकती हैं? वो है सर्वव्यापी सार्वभौमिक की खोज। हम अपने चारों ओर जो देखते हैं, छूते हैं, आस्वादन करते हैं, और तो और हम जो कुछ अनुभव करते हैं, जो कुछ हमारी अनुभूतियां होती हैं, वो सब आकाश में पर्यवसित किया जा सकता है। क्योंकि ये सब आकाश की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र हैं और ये आकाश सूक्ष्म तथा सर्वव्यापी है। ठोस, तरल और वाष्पीय सब प्रकार के पदार्थ, सब प्रकार के रूप, शरीर, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सब इसी आकाश से बने हुए हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि किस शक्ति ने आकाश पर कार्य करके जगत की सृष्टि की? तो इसका उत्तर सीधा है कि जगत में जितनी भी भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, आकर्षण, विकर्षण, यहां तक कि विचार शक्ति भी, सभी प्राण नामक एक महाशक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी प्राण ने आकाश पर कार्य करके इस जगत प्रपंच की रचना की है। कल्प के प्रारंभ में ये प्राण मानो अनंत आकाश समुद्र में प्रसुप्त रहता है। बाद में प्राण के प्रभाव से इस आकाश समुद्र में गति उत्पन्न होने लगती है। इसके कारण आकाश समुद्र से नाना ब्रह्मांड, नाना जगत, कितने ही सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, जंत, उद्भिद और नाना विध शक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं।

0: अतः भारतीय दर्शन के मत से सब प्रकार की शक्तियां प्राण के और सब प्रकार के दृश्य पदार्थ आकाश के विभिन्न रूप मात्र हैं। कल्पांत में सभी घन पदार्थ पिघल जाएंगे, वो तरल पदार्थ वाष्पी आकार में बदल जाएंगे, वो फिर तेज रूप धारण करेगा, अंत में सब कुछ जिस आकाश से उत्पन्न हुआ था उसी में विलीन हो जाएगा और आकर्षण विकर्षण गति आदि समस्त शक्तियां धीरे धीरे मूल प्राण में परिणित हो जाएंगी। जब तक फिर से कल्पांत नहीं होता तब तक ये प्राण निद्रित अवस्था में रहता है। कल्पारंभ होने पर वो जागकर पुनः नाना रूपों को प्रकाशित करेगा और कल्पांत में फिर से सबका लय हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे कि एक समय वो स्थितशील रहता है, फिर गतिशील हो जाता है, एक समय प्रसुप्त रहता है और फिर क्रियाशील हो जाता है। बस इसी प्रकार अनंत काल से चलता आ रहा है, इसी को सृष्टि क्रम एवं जगत प्रपंच समझना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय था गतिशीलता। आलेख था जय कुमार मुदगल का, वाचन था श्री कृष्ण शरद का। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है सुरेश वाडेकर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा नील हरित सहवाल से लाभ। वार्ता करेंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा 7:00 से। सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनाएंगे ब्रज की माटी तुहे प्रणाम। इस श्रृंखला में रंग जी मंदिर वृंदावन के बारे में आप जानेंगे। आलेख और प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता विजय सिंह नौलखा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:00 मुद्दे की बात के अंतर्गत भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा योग और मानव कल्याण। वार्ताकार होंगे राजेश अग्रवाल, इनसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय 9:25 पर। विषय होगा हमारा धर्म और पर्यावरण। आलेख और वाचन होगा डॉक्टर सुदेश आहूजा का। 9:30 पर कार्यक्रम होगा ब्रज दर्पण।

सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 11 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुत करेंगे रश्मि शर्मा। गीत, बात और SMS, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे मध्याह्न 12 बजे। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में सुनिएगा शालिनी शर्मा के गाए लोकगीत। दोपहर 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय होंगे योग और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा विषय होगा डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा। साथ ही सुनेगा स्वरचित काव्य पाठ मानवीय मूल्यों पर आधारित। काव्य पाठ करेंगी डॉक्टर नीतू गोस्वामी। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय 2:30 पर। शाम 5:30 पर युवा वाणी कार्यक्रम में आज की बात में सुनिएगा।

मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण के लिए विश्व दिवस। दूसरा विषय होगा योग अभ्यास के माध्यम से जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखना। साथ ही सुनिएगा व्यक्तिगत विकास वार्ता युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से अक्षया सक्सेना की बातचीत।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में शाम 6:15 पर सुनिएगा चर्चा। वृक्षारोपण से रोके सूखे एवं मरुस्थलीयकरण को। दूसरी चर्चा होगी स्वस्थ किसान समृद्ध किसान में योग की भूमिका। भेंटवार्ता सुनिएगा खेत बचाओ अभियान क्रम में कैसे बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति। प्रगतिशील किसान से बातचीत होगी। वार्ताकार होंगे नरेंद्र कुमार शर्मा से ओपी सिंह की बातचीत।

शाम 6:30 से सुनेगा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम नीदरलैंड के मध्य हेंडिंग्ले लेड्स में आंखों देखा हाल। इसके बाद के सभी कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन पाएंगे। शाम 6:45 पर संध्या वंदन कार्यक्रम, 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा बाबूलाल शर्मा ब्रजवासी से, शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर, रात्रि 8:00 विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर, सुहाने तराने रात 9:15 पर। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, सुनिएगा उस्ताद असद अली खां का वीणा वादन।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है नील हरित सहवाल से लाभ। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ के मौसम की धान प्रमुख फसल है। धान की अधिक उपज लेने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग पिछले 3 दशकों में बहुत अधिक हो गया है। गोबर की खाद, कंपोस्ट उचित मात्रा में उपलब्ध न होने तथा अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का प्रयोग होने के कारण रासायनिक उर्वरकों की तरफ किसान तेजी से आकर्षित हुए हैं, परंतु रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के कारण इनके प्रयोग से प्रति रुपये होने वाला लाभ घटता जा रहा है, जिसके कारण किसान उर्वरकों के अधिक मात्रा में प्रयोग में रुचि नहीं ले रहे हैं। उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की रासायनिक और भौतिक दशा भी बिगड़ रही है, मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब किसानों का ध्यान जैविक खेती की ओर विशेष रूप से हो रहा है। तो नील हरित सहवाल एक विशेष प्रकार की काई होती है, जैविक उर्वरक के रूप में इसको जाना जाता है, जिनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका हेटरोसिस्ट होती है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। इसकी विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें नास्तक, एनाबीना, आइलोस्किसा, सिट्रोनिया आदि प्रमुख

0: रूप से मिट्टी में पाई जाती हैं। धान की फसल की रोपाई के 8-10 दिन बाद 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नील हरित शैवाल को खेत में बिखेर दिया जाता है। नील हरित शैवाल के प्रयोग के बाद कम से कम 15 से 20 दिन बाद तक खेत में पानी भरा रहना चाहिए, जिससे कि शैवाल में गुणात्मक वृद्धि हो सके। नील हरित शैवाल का उत्पादन किसान स्वयं आसानी से अपने खेतों पर कर सकते हैं। शैवाल उत्पादन के लिए किसान अपने खेत में सर्वोत्तम जो इसकी विधि है, गड्ढा में उत्पादन करना, इसको अपना सकते हैं। गड्ढों में उत्पादन के लिए 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी क्यारियां बना ली जाती हैं। इन क्यारियों में गड्ढे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसके पश्चात पानी का रिसाव रोकने के लिए क्यारियों में पॉलीथीन की चादर बिछा दी जाती है। इस प्रकार तैयार क्यारियों में करीब 1 से 1.5 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी डाली जाती है, 100 ग्राम सिंगल सुपरफास्फेट, 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान 3% वाला, कोई इन सब मात्राओं को प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया जाता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नील हरित शैवाल से लाभ, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock फिल्म का ये गीत। आवाज थी गीता दत्त की। गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने, धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। संगीत है ओपी नैयर का, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म बहू बेगम के लिए। गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं भरोसा फिल्म से, गाया है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है रवि ने।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट UG पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट UG पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट UG पुनः परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट UG परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों एवं ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आगामी 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनः परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनः परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के

उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया ताकि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि

0: बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। श्री खन्ना ने कहा कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्करे तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने से जुड़ी कई मांगों को रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ये जानकारी प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश को कई रेल सेवाओं की सौगात देंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित भी करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर दोहरेघाट ओडियार नई मेमू ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन और छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किए जाने को मंजूरी मिल गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में

आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, आगामी त्योहारों, नीट यूजी पुनः परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनः परीक्षा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में अभ्यर्थियों को 50% छूट के दिए निर्देश। नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध। संदेश संपादन सुविधा भी 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। अब छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में 24 जून तक बढ़ाया ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब 25 जून से शुरू होंगी शैक्षणिक गतिविधियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

या में आप जानेंगे रंग जी मंदिर वृंदावन के बारे में। आलेख और प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता है विजय सिंह नौलखा।

0: ब्रज धाम के हृदय स्वरूप वृंदावन में यह रंग मंदिर स्थित है।
1: और श्री रंगमन्नार भगवान की जय। सामने जो देख रहे हैं रंगनाथ मंदिर है। इस मंदिर में सारे पुजारी दक्षिण शैली के हैं, क्योंकि इस मंदिर में दक्षिण शैली विधि विधान से पूजा होता है। इस मंदिर के 7 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे इस साइड हैं और 4 दरवाजा इस मंदिर के बैक साइड हैं। सामने देख रहे हैं कलसी लगी हुई हैं, 7 कलसी हैं सोने की, 3 ये लगी हुई हैं, 1 ये लगे हुए हैं। इस मंदिर की 3 परिक्रमा हैं। पहली परिक्रमा में बाहर विराजमान हूँ, द्वितीय इसके अंदर है और तृतीय इसके अंदर में है। 54 कमरे इस साइड हैं और 54 कमरे इस साइड हैं। 108 पुजारी हैं, 108 घर हैं और 108 कुआ है। जब गर्मियों में भगवान का उत्सव होता है तो 108 कुएं से 108 कलसे से जल लाकर भगवान का अभिषेक किया जाता है। इस मंदिर में तिरुपति बालाजी, रंगमन्नार भगवान, सुदर्शन चक्र, नरसिंह भगवान, वैकुंठ द्वार और काले हनुमान जी का विशेष दर्शन है, क्योंकि इस मंदिर के चारों कोने पर गरुड़ भगवान है। क्योंकि दक्षिण भारत में कोई भी शुभ काम होता है, सर्वप्रथम गरुड़ भगवान की पूजा होती है। इसी के अंदर में सोने का स्तंभ है जो आपको देखने को मिलेगा, वो गरुड़ स्तंभ है। क्योंकि जब होली के बाद कभी आएंगे, मंदिर का ब्रह्मोत्सव चलता है, वो ब्रह्मोत्सव सर्वप्रथम पहले है उस स्तंभ की पूजा की जाती है, क्योंकि उसके चारों कोने पर गरुड़ भगवान है।
0: या मंदिर में मुख्य अर्च विग्रह भगवान श्री गोदा रंगमन्नाथ हैं, श्री गोदा देवी जिन्हें दक्षिण में आंडाल कहो जाए है। भगवान श्री गोदा रंगमन्नाथ की अर्धांगिनी देवी हैं। श्री गोदा रंगमन्नाथ भगवान ब्रज के प्रसिद्ध भगवान श्री राधा कृष्ण स्वरूप ही हैं। प्रभु भक्तन के संकल्प अनुसार अनेक रूपंते अवतार लेके अपनी सरस लीलांते भक्त जनन को आह्लादित करे हैं। श्री रंगजी मंदिर निर्माण कर श्री गोदा रंग मन्नार भगवान के अर्च विद्य की प्रतिष्ठा को श्रेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय आचार्य वर श्री रंग देशिक स्वामी जी महाराज को है। आप अगरम नामक ग्राम राज्य तमिलनाडु में विक्रम संवत 1866 कार्तिक कृष्णा सप्तमी को अवतरित भये। ईश्वरेच्छा दीन आप उत्तर भारत की यात्रा करते भये श्री गोवर्धन जी पहुँचे। वहाँ श्री वैष्णव संप्रदाय के गोवर्धन पीठाध्यक्ष स्वामी श्रीनिवासाचार्य से वैष्णव दीक्षा प्राप्त करके वैदिक सनातन धर्म के प्रचार में निरत है गए। श्री रंगदेशिक स्वामी जी के निरंतर तप और पुरुषचरण अनुष्ठान को साकार रूप यह श्री रंगजी मंदिर है। श्री रंगजी मंदिर का निर्माण मथुरा के धनाढ्य सेठ श्री लक्ष्मी चंद, श्री राधा कृष्ण एवं श्री गोविंद दास के द्रव्यते भयो। श्री लक्ष्मी चंद को छोड़ के भ्राता द्वय तत्कालीन वैष्णवाचार्य श्री षटकोप स्वामी जी की प्रेरणा थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी के तपोमय जीवन से प्रभावित है के बिन के शिष्य है गए। गुरु जी ने अपने शिष्यन को दक्षिण यात्रा कराए के वहाँ के भगवत दर्शन को लाभ प्राप्त करायो और वासने श्री गोदा देवी को श्री गोदा रंगमन्नार के संग ब्रज में प्रतिष्ठित करवे की अपनी हार्दिक इच्छा से उन्हें अवगत करायो। बस यही थे या मंदिर के निर्माण को सूत्रपात भयो, जाकी पूर्ति के लिए श्री लक्ष्मी चंद, श्री राधा कृष्ण एवं श्री गोविंद दास ने अपनो तन मन धन श्री स्वामी जी के चरण में समर्पित कर दियो। श्री स्वामी जी की आज्ञा को

0: आचार्य कर सेठ लक्ष्मीचंद व श्री राधा कृष्ण एवं श्री गोविंद दास जी ने अपने विपुल धन से संवत 1901 में मंदिर को निर्माण कार्य आरंभ करो और तोताद्री स्वामी जी महाराज के तत्वावधान में श्री गोदारंग मन्नार भगवान को मूल विग्रह व उत्सव मूर्ति तथा श्री गरुण, श्री सुदर्शन, श्री विश्वकसेन, श्री वेणुगोपाल आदि भगवान की बड़े समारोह के संग प्रतिष्ठा की। तब ते बराबर मांच रात्र आगम विधि ते भगवान की सेवा हैती आ रही है। या में उषह काल, आगमन काल, समाराधन काल, इज्जा काल, शयन काल की सेवा मुख्य है। या मंदिर को दिव्य देश भी कयो जाए है। प्रातः काल से सायंकाल तक मंदिर के दर्शन, आरती और भोग की जानकारी देते भाई आप हैं मंदिर के सेवायत श्री चक्रपाणी मिश्र जी।
1: प्रातः काल भगवान की सर्वप्रथम मंगला होती है। इसमें भगवान की सभी जितनी सन्निधियाँ हैं सबकी आरती होती है। लोगों को तीर्थ और सरकारी भगवान के श्री चरण उनके सिर पे रखे जाते हैं। फिर इसके बाद आराधन होता है, जो वैदिक पाठ है वो आचार्य लोग करते हैं। फिर इसके बाद भगवान का भोग आता है। भोग में प्रातःकाल मालपुआ एवं खिचड़ी का प्रसाद होता है। कभी कभी दध्योधन, पुलेरा, खिरेना, खिराना, कदम भात इत्यादि प्रकार के भोग लगते हैं। मध्याह्न में भगवान का भोग लगता है। कड़म चावल है जिस प्रसादम बोलते हैं, और कढ़ी है, पकौड़ी है, रोटियां हैं, खीर है, सब्जी है। इस प्रकार से भगवान का दोपहर में प्रसाद लगता है। सायंकाल भगवान के दर्शन 4 बजे खुलते हैं। जो लोग आते हैं अर्चना कराते हैं। फिर सायंकाल 6 बजे भगवान की श्री आरती होती है सभी सन्निधियों की। और फिर इसके बाद आराधन शुरू होता है। आराधन के बाद भोग आता है। भोग के बाद सायंकाल भगवान को चना और बड़ा धोसा, पोंगल या दध्योजन या फुलेहरा इत्यादि भोग लगाया जाता है तथा वह पूरा प्रसाद तीनों टाइम भक्तों को वितरित किया जाता है। रात्रिकाल फिर भगवान के शयन हो जाते हैं। आरती का तो 5:30 बजे दर्शन होते हैं, जिसे मंगला आरती बोलते हैं। सायंकाल फिर भगवान की 7 दीपकों से बत्ती बना करके 7 बत्तियों से भगवान की आरती होती है।
0: गोदा रंग मन्नार के संग अन्य देव मंदिर में भगवान के विशेष विग्रह के भी दर्शन हैं, जैसे सुदर्शन जी, श्री नरसिंह जी भगवान, श्री लक्ष्मी वेंकटेश, श्री वेणुगोपाल, समस्त आलवार भगवान, भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य, श्री रंगदेशिक स्वामी जी द्वितीय प्रदक्षिणा में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी, शेषशायी भगवान श्री विष्णु, बाहरी परिक्रमा में श्री हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। श्री रंग मंदिर की 5 परिक्रमा मुख्य हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व और पश्चिम से कर सके हैं। दर्शक जब पश्चिम से प्रवेश करें तो वह समय उन्हें सर्वप्रथम विशाल रथ घर के दर्शन हुए हैं, जहाँ में उत्तम लकड़ी से बनो कलात्मक 50 फुट ऊंचो रथ है, जो प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी के दिन सजायो जाए है। भगवान श्री गोदारंग मन्नार बामे विराज के बड़े बगीचा पधारे हैं। 10 दिन तक होने वालों यह उत्सव या मंदिर को सबसे बड़ा उत्सव मानो जाए है। अब यात्री विशाल 2 सिंहन के अलंकृत दरवाजे थे, ज्यों ही आगे बढ़े है सामने मंदिर को विशाल दरवाजो दिखे है। यह मजबूत पत्थर को जयपुर की पच्चीकारी से युक्त उत्तर भारतीय प्रस्तर कला को उत्तम नमूना है। द्वार के प्रवेश से पहले बाईं ओर श्री राम केतु स्तंभ के दर्शन हुए हैं, जहाँ में असंख्य श्री राम नाम की प्रतिष्ठा की गई है, या के संस्थापक पूज्य श्री दंडी श्रीमन नारायण

0: नारायण जी, स्वामी जी महाराज के बिनने भारत में यह प्रकार के 108 श्री राम क्रतु स्तंभों की स्थापना करी है। यह विशाल द्वार में प्रवेश करते ही सतखना गोपुरम दृष्टिगत हुई है, जो दक्षिण स्थापत्य कला को नमूना है। यह सात खंड को होने के कारण सतखना कहलाए है। बाई ओर विद्युत चलित लीलान के दर्शन हुए हैं। जब यात्रा बाई ओर से चौड़े रास्ते से आगे बढ़े तो कोने में दीवार के ऊपर गरुण जी की मूर्ति, शेषशायी भगवान के मंदिर को गोपुरम दिखाई दे है। बाई ओर रहने की अनेक बीमारी हैं, जहाँ में अर्चक निवास करे हैं। प्रत्येक में कूप आदि की पृथक पृथक सुविधाएं हैं। विस्तृत परिक्रमा के रास्ते जब आगे बढ़े हैं, तब एक विशाल तालाब के दर्शन हुए हैं, जहाँ में अनेक सीढ़ी और चार घाट हैं। यानी श्री गजेंद्र मोक्ष लीला कर्क संक्रांति की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हुए है। सहस्त्र दर्शक भगवान की लीला के दर्शन करने आए हैं। तालाब के पास ही श्री हनुमान जी का मंदिर है, जो बारह द्वारी है। बारह द्वारी के सामने द्वार में प्रवेश करके यात्री आगे वाले घंटा घर पे पहुंच जाए हैं। यह द्वार के ऊपर एक विशाल घंटा है, जो वृंदावन के अधिकांश भाग को अपनी ध्वनि से समय की सूचना दे है। यह घंटा द्वार से प्रवेश करके आप स्वर्ण स्तंभ के पास अपने को खड़ो पाए हैं। यह सोने को गरुण स्तंभ है, जाकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है और जमीन के अंदर 24 फीट है। यहाँ पे प्रतिदिन अन्न से दिक्पालन को पूजन हुई है। यह संदर्भ में जानकारी दे रही हैं मंदिर के सेवायत श्री चक्रपाणी मिश्र जी।
1: जहाँ भी दिव्य देश जितने होते हैं, वहाँ गौरस्तंभ का होना बहुत आवश्यक है। तो ये 50 फुट ऊंचा गौर स्तंभ है, जिसे स्वर्ण स्तंभ भी कहते हैं। भगवान विष्णु का मंदिर होने के नाते गोदा रंगमन्नार भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए ये गौर स्तंभ की भगवान गरुड़ जो हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। इसमें अब जैसे ब्रह्मोत्सव जब प्रारंभ होता है, तब ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण मतलब एक कपड़े में श्री गरुड़ जी की आकृति बनाई जाती है और फिर उसको जो है रस्सी के सहारे, कुशों के सहारे लपेट करके ऊपर भगवान जो गौरस्तंभ का जो मुख्य ऊपर गुंबज है, वहाँ प्रतिष्ठित किया जाता है। माला धारण कराई जाती है। बगल में बलि प्रदान है, जो जहाँ पर भगवान का जब भी भोग लगता है तो दिक्पालों के लिए प्रसाद दिया जाता है। ये सबसे बड़ा उत्सव है हमारे यहाँ, लट्ठे का मेले के नाम से जाना जाता है, जो कि आप एक आपकी फिल्म बनी है ब्रजभूमि, उसमें भी इसका चित्रण है। तो इसमें लट्ठा एक विशेष तरल पदार्थों से लपेटा जाता है। उसमें कई महीनों पहले उसमें कई तरह के चिकमंगा है, कई तरह की अलसी है, इस प्रकार जो चिकने पदार्थ हैं काफ़ी मोटी परत में लपेटा जाता है। जब वो खूब चिकना हो जाता है तो उसे वहाँ गाड़ करके बगल में मंच बनाया जाता है। उसी के ऊपर करीब 50-60 फुट का ऊंचा होता है वो, और उस पर मंदिर के लोग जो है खड़े होकर के पानी और तेल, इस प्रकार हल्दी, ये सब मिश्रित जल जो है ऊपर। और यहाँ पर दुसायत के हमारे जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि जो दुसायत के ठाकुर हैं वो ही इसमें चढ़ सकते हैं, वही ये लीला करेंगे। तो उस परंपरा का अंतर्यामी भगवान के नाम से वो लोग जाने जाते हैं, वो उसी परंपरा को आज भी निभा रहे हैं। 50-60 पहलवान आते हैं और उसमें चढ़ते हैं, चढ़ने का प्रयास करते हैं। ऊपर से उनके ऊपर तेल मिश्रित, हल्दी मिश्रित तेल पानी डाला जाता है, वो बार बार फिसलते हैं। जब फिसल के नीचे आते हैं कि भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें विजय प्रदान करो। अनेक कम से कम ये 2.5-3 घंटा क्रम चलता रहता है। अंत में कोई न कोई विजयी होता है, ऊपर चढ़ करके जो भी पुरस्कार होता है उसे प्राप्त करता है।

0: अब आप जो ही दक्षिण की ओर मुंह करेंगे तो कोने में भव्य शीश महल के दर्शन हुए हैं। श्री गोदारंग मन्नार भगवान के जगमोहन मंडप में पहुँच के सीधे द्वार के भीतर श्री गोदारंग मन्नार भगवान के दर्शन हुए हैं। मध्य में वेणु लिए श्री गोदारंग मन्नार भगवान, उनकी दाहिनी ओर श्री गोदा देवी, बाई ओर श्री गरुण जी के मूल अर्चा विग्रह हैं। उनके आगे उत्सव विग्रह, शयन मूर्ति, बलि प्रदान मूर्ति, श्री सुदर्शन जी, श्री नृत्य गोपाल जी की मूर्ति हैं। जो यात्री अर्चना करवे भीतर जाए हैं, बिनके लिए यहाँ धोती पहनो अनिवार्य है। भीतर जाए वे वारे श्रद्धालु श्री जय विजय द्वारपालन के चतुर्भुज रूप में दर्शन पाए हैं। भीतर पहुँचते ही भगवान के दर्शन से यात्री सात्विक भावन से ओतप्रोत है जाए है। सुगंधित वातावरण में शांति को लाभ प्राप्त करे है। दर्शन करके लौट के दाहिनी ओर से भगवान की भीतरी प्रदक्षिणा को मार्ग है। भगवान को यह गर्भ मंदिर आनंद निलय या श्री रंग विमान के नाम से कहो जाए है। श्री गोदारंग मन्नर भगवान के दर्शन करके बाहर आए के दाई ओर की परिक्रमा में पहले श्री सुदर्शन जी, श्री नरसिंह जी भगवान, श्री वेंकटेश भगवान जिन्हें तिरुपति बालाजी कहे हैं, बिनके दर्शन हुए हैं। श्री वेंकटेश भगवान को प्रति शुक्रवार को दुग्ध से अभिषेक हुए है। इनके दर्शन और प्रदक्षिणा करवे थे संपूर्ण मनोरथन की पूर्ति देखी गई है। यहीं पे पोषाक गृह आदि हैं। पीछे चंदन चौकी है जहां भगवान की सेवा के काजे चंदन घिसो जाए है। आगे वेणु गोपाल जी को मंदिर है। ये भगवान मंदिर संस्थापक श्री स्वामी के निजी पूजा के भगवान थे। बिनके आगे समस्त आलवार आचार्य हैं। आगे सन्निधि श्री वरवर मुनि स्वामी जी की है जिनके ऊपर शेष जी हते और बिनके शेष अवतार हैवी के प्रतीक हैं। या के आगे श्री षटकोप स्वामी जी व श्री रामानुज स्वामी की सन्निधि हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के महान प्रचारक संवर्धक होने ते श्री रामानुज स्वामी की मान्यता विशेष है। इनकी सन्निधि से आगे श्री रंगदेशिक स्वामी जी के विग्रह के दर्शन करके आप फिर स्वर्ण स्तंभ के पास आए जाए हैं। यहीं आप उत्तर के कोने में यज्ञ मंडप के दर्शन करें हैं।
1: एक विशेषता श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में ये है, प्रातः काल सूर्योदय जब होता है तो सबसे पहली किरण भगवान के श्री मुख में तथा श्री चरणों में नित्य आती है। मंदिर का निर्माण एक तरह से देखा जाए तो एक यज्ञ मंडप की तरह है। पूरा वास्तुकला इसकी जो है यज्ञ मंडप की तरह है। उसी प्रकार जो भी भगवान की रसोई है, भगवान का यज्ञ मंडप है या भगवान की सन्निधियाँ हैं, उसी क्रम में सब बनाई गई हैं। पुष्करणी है, पुष्करणी माने तालाब है, इसमें गजेंद्र मोक्ष की लीला एवं नौका विहार की लीला भगवान की होती है। फिर इधर शुक्रवार वाली बगीची है जिसमें प्रति शुक्रवार को माँ गोदम्बा जो है सवारी पधारती है।
0: श्री रंग जी मंदिर में वर्ष भर उत्सव मनाए जाए हैं। उत्सव को अनुभव कर भक्त वैकुंठ के वैभव को यही भूमंडल पे अवलोकन कर रहे हैं। मुख्य उत्सव हैं श्री राम नवमी, झूला उत्सव, श्री गजेंद्र मोक्ष, श्री नंदोत्सव, लठ को मेला, श्री वैकुंठ उत्सव और श्री ब्रह्मोत्सव।
1: ये विशेष उत्सव में सबसे बड़ा उत्सव ब्रह्मोत्सव है, फिर झूला उत्सव है, वैकुंठ उत्सव है, भगवान का गोदम्बा जी का झूला उत्सव है और गजेंद्र मोक्ष उत्सव है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के उत्सव, लगभग 20 उत्सव मनाए जाते हैं भगवान के।
2: सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्सव जिसे अगर हम कहें तो विशेष रूप से जिसके लिए तैयारियां होती हैं या विशेष उत्सव जो है वो कौन सा है?
1: ये ब्रह्मोत्सव कहते हैं, ये चैत के महीने में होता है। इसमें पूरे देश विदेश के लोग आते हैं, इनके ठहरने की भोजन की व्यवस्था की जाती है। दोनों टाइम भगवान अपनी वाहनों में, जैसे कभी किसी दिन सोने के गरुड़ में, किसी दिन सोने के हाथी में, किसी दिन सोने के घोड़े में, चंद्र प्रभा में, सूर्य

0: कदम रखने में इस प्रकार से भगवान दोनों टाइम बड़े बगीचे पधारते हैं भक्तों को दर्शन देते हुए।
1: आज या मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखने के काजे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आमे हैं। वृंदावन के प्रमुख मंदिरन में ये मंदिर अपना विशेष स्थान रखे हैं।

भैया ब्रज की माटी तुहे प्रणाम। यह श्रृंखला में आज आपने जानो रंग जी मंदिर वृंदावन के बारे में। आओ भैया अब आपको सुनवा में अलका राजेश को गायो यह लोकगीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे।

0: आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब

0: कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण

0: him today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. हमारा अगला कार्यक्रम है गीतांजलि, जो आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। हमारी अधूरी कहानी, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत को लिखा है रश्मि विराग ने और धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

कलंक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दबंग 3 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सलमान अली और मुस्कान की आवाज़ों में। गीत को लिखा था समीर ने, धुन बनाई थी साजिद वाजिद ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: यारियां फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं शफाकत अमानत अली की आवाज में।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: आइए अब आपको सुनाते हैं मुद्दे की बात के अंतर्गत भेंट वार्ता। विषय है योग और मानव कल्याण। वार्ताकार हैं राजेश अग्रवाल और इनसे भेंट कर रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
4: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मित्रों, जैसा आप जानते हैं आज 21 जून है और 21 जून के दिन पूरी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इस योग दिवस को मनाने का क्या कारण है, साथ ही साथ मानव कल्याण में योग किस तरह उपयोगी हो सकता है, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री राजेश अग्रवाल जी को, जो कि एक योगाचार्य हैं। तो अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
5: नमस्कार जी, धन्यवाद।
4: आमतौर पर जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो योग के बारे में यही जानता है कि भाई आसन करने होते हैं, तो योग का वास्तविक अर्थ क्या है, गूढ़ जो रहस्य है उसके पीछे, या मोटी बात जो जन सामान्य जानता नहीं है, तो योग आखिर है क्या?
5: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मात्र आसनों को ही हम योग समझ लेते हैं, जबकि आसन योग का एक भाग है। हम अगर छत पर चढ़ते हैं तो 10-12 सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच पाते हैं, इसी प्रकार से योग में भी 8 सीढ़ियां हैं जो यम से शुरू होती हैं, यम, नियम, और उसके बाद फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। तो यम के द्वारा हम कैसे हम अपने जीवन को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करते हुए और नियम पूर्वक जीवन जीते हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको अपनाते हुए फिर हम अपने शरीर को इस प्रकार का बनाएं जिसमें हम स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठ पाएं, वह फिर आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि ने अपनी व्याख्या में कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। उसके बाद जब हम बैठ पाए तब फिर हम जो श्वास की क्रियाएं करते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन सत श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। प्राणायाम करने के बाद फिर प्रत्याहार अगली सीढ़ी है। प्रत्याहार का मतलब है प्रति आहार। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं जो हमेशा बाहर देखती रहती हैं, उनसे जब हम बाहर न देखकर अपने अंदर देखने लगें तो वो प्रत्याहार की अवस्था आ जाती है, और जब प्रत्याहार का अभ्यास हमारा लंबा होने लगता है तो फिर एक धारणा हमारे जीवन में आने लगती है, और जब धारणा का अभ्यास हम दृढ़ कर लेते हैं तो हम ध्यानस्थ होने लगते हैं। जो आपने सुना होगा अक्सर जगह जगह लोग कहते हैं कि हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, हमारा ध्यान इस प्रकार से, तो जब ध्यान में हम दृढ़ हो जाते हैं तब फिर समाधि की स्थिति आती है और तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब हमें आत्मबोध होने लगता है, और यही योग की परम अवस्था है जिसकी प्राप्ति बहुत कम लोगों को हो पाती है।
4: जी जी, देखिए आपने बहुत ही विस्तार से बताया, जो सामान्य आदमी समझता है उससे योग का जो अभिप्राय है वो काफ़ी गूढ़ है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी यूँ कहें तो उन सबकी सीढ़ियों को मिलाकर ही आदमी समाधि तक पहुँचता है। अग्रवाल जी, एक चीज़ तो ये हुई कि योग है क्या, उसके बाद चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए, इस योग दिवस को मनाए जाने का क्या औचित्य था, क्यों मनाया गया और कब से शुरू हुआ और आज हम किस स्थिति में?
5: बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। योग हमारी भारत की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में बोलते हुए कहा था, योग हमारे ऋषियों की विरासत है और ये विश्व के लिए एक अमूल धरोहर है, आइए हम सब मिल करके एक ऐसा दिन तय करेंगे पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए, और महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित करते हुए 21 जून को इसका दिन नियत किया, और 2015 से हम प्रतिवर्ष

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस बार हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य थीम रखा गया है, मानवता के लिए योग। योग मानव मात्र के लिए है, मानव को मानव बनना हमारी के लिए योग हम कैसे अपनाएं, बस यही इस बार का थीम है
1: जी। तो देखिए, मानवता के लिए योग वो इस साल की थीम है। इस पे हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा योग के बारे में हम ये जान लें कि भाई देखिए, योग को न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व स्तर पर ये बहुत ही उपयोगी माना गया है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने के आपने बताया करीब 177 देश जो हैं इस दिवस को मना भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो योग का पालन करते हैं, अपने दिनचर्या में उसका प्रयोग करते हैं। तो योग के तात्कालिक लाभ क्या है, जैसे अगर कोई व्यक्ति योग को अपनाता है उसको तुरंत लाभ क्या मिलेंगे? देखिए, दो तरह के लाभ हैं, तात्कालिक लाभ, दीर्घकालीन लाभ, देर से प्राप्त होने वाले या थोड़े समय बाद मिलने वाले लाभ, और एक तुरंत लाभ। तो तुरंत लाभ या तात्कालिक लाभ क्या क्या हैं?
0: जी, जिस प्रकार से हम हर समय श्वास लेते रहते हैं, हमारे जीवित रहने के लिए श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जितनी भी व्याधियां हैं वो सब योग से दूर होती हैं। क्यों दूर होती हैं? ये हमारा जो सिस्टम है, जो वात पित्त और कफ के द्वारा संचालित होता है, और वात पित्त और कफ जब हमारे जीवन में अनियंत्रित हो जाते हैं तो रोग आता है। और जब हम प्राणायाम का अभ्यास, योग का, आसनों का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे वात पित्त और कफ संतुलित होने लग जाते हैं और तुरंत ही हमें इसका लाभ मिलने लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए कहीं बहुत गर्मी हो रही है और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है पंखे का और एसी का, हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो तुरंत हमको ठंडक लगने लगती है। मान लीजिए हमारा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है और हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बीपी हमारा सामान्य होने लगता है। ठीक इसका उल्टा, हमारा बीपी लो है तो हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके बीपी को सामान्य कर सकते हैं। तो ये तो तात्कालिक लाभ है, लेकिन अगर हम दीर्घकालिक लाभ के बारे में बात करें तो इन प्राणायामों का अभ्यास अगर हम निरंतरता के साथ करते रहें तो अगर हमें जेनेटिक बीपी है, जेनेटिक बहुत सारे रोग हैं, तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, हमारा जो शरीर बना है लगभग 9-9.5 महीने में हमारे माता के गर्भ में बनता है और इसको बनने में जो 9.5 महीने लगते हैं, इसी प्रकार से जब हम लगातार योग का अभ्यास साल भर तक करते रहते हैं तो ये हमारी एक एक कोशिका का रूपांतरण होने लगता है, क्योंकि कोशिका हमारे शरीर की इकाई है और वो फिर योग के अभ्यास से ठीक हो जाती है और दीर्घकालिक लाभ हमें होने लगते हैं और हम हमेशा स्वस्थ और व्यस्त और मस्त बने रहते हैं, जीवन में आनंदित बने रहते हैं। और यही एक हमारा जीवन का एक उद्देश्य भी है कि हम आनंदित रहें। हम जो है बीमारियों और बुराइयों से घिरे हुए रहते हैं और योग के द्वारा हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं और बुराइयां भी ठीक होती हैं, और यही मानवता के लिए आवश्यक भी है।
1: हाँ अग्रवाल जी, जैसे आपने बताया, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति है आज की परिस्थिति में उसे तुरंत फायदा चाहिए, तो आपको अगर आप योग करते हैं तो तात्कालिक लाभ भी हैं। साथ ही साथ अगर आप योग को बहुत समय तक अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर उसको रोज करते हैं तो फिर दीर्घकालीन लाभ भी होंगे। मानसिक लाभ भी हैं कुछ सर?
0: जी, मानसिक लाभ तो इसमें बहुत हैं, क्योंकि मानसिक लाभ आप कितनी भी दवाएं खा लेंगे तो उससे आपको उतनी देर लाभ रहने वाला है, लेकिन योग में मानसिक रोगों का तो स्थायी समाधान है। हम आपने देखा होगा, हम लोग पूजा पाठ की पद्धति अपनाते हैं, उसमें हम कई बार भगवान को ढोक लगाते हैं या मुस्लिम भाई हमारे नमाज अदा करते हैं उसमें हम आगे झुकते हैं। इसी प्रकार से आसनों में भी हम जब हम शशांक आसन इस प्रकार के अभ्यास करते हैं तो हम आगे झुकते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसको रक्त की सप्लाई बढ़ जाती है, तो जो ब्रेन की जो हमारी सेल्स जो डेड हो जाती हैं, ब्रेन में जो प्रॉपर रक्त नहीं मिल पाता है वो आसनों के अभ्यास से हमें मिलने लगता है और हमारा मस्तिष्क सदा सर्वदा के लिए स्वस्थ बना रहता है। इसलिए मानसिक रोगों का तो स्थायी इलाज योग के माध्यम से है।
1: हाँ, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि योग करने से व्यक्ति को शारीरिक लाभ होंगे, दीर्घकालीन भी होंगे, अल्पकालीन भी होंगे, तात्कालिक भी होंगे तथा मानसिक लाभ भी होंगे। आपने बात स्पष्ट की। आम आदमी की धारणा ये है कि भाई कोई कहता है कितने समय तक करो योग, चलिए करते भी हैं तो डेली कितना करना चाहिए? आपके हिसाब से योगाभ्यास जो है एक नॉर्मल व्यक्ति को कितनी देर करना चाहिए?
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। लोग ये समझते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है, लेकिन योग ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार आप शुरुआत कर देंगे तो ये स्वयं आपके जीवन में अपना स्थान बना लेता है। क्योंकि 15 मिनट तो हम अपने लिए दे ही

0: सकते हैं। कम से कम 15 मिनट हमको रोज अभ्यास करना चाहिए, और अगर हमारे पास समय है तो हम 1 घंटे इसका अभ्यास करें नियमित रूप से, तो हमारे शरीर की बैटरी पूरे 24 घंटे चार्ज रहेगी। हो रहा है कि वर्तमान जीवन में हम अपना मोबाइल तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन खुद की बैटरी चार्ज नहीं करते हैं, अपनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसको हम चार्ज कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो आइए, मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सब लोग एक शपथ लें कि हम नियमित रूप से योग करेंगे, निरोग रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे।
1: जी जी ये तो अग्रवाल जी कहा भी गया है कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। अगर आपका शरीर ठीक है, आप शरीर से और मन से अगर स्वस्थ हैं, तो जो पुरुषार्थ का काम है, जो आप दूसरा काम करते हैं, वो निश्चित रूप से अच्छी तरह आप कर पाएंगे। पहली शर्त यही है कि आपको निरोगी स्वस्थ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से होना चाहिए, और योग योगाभ्यास जो है इन दोनों शर्तों को पूरी तरह से मानता है। जैसा आपने बताया, मानवता के लिए योग, ये इस वर्ष की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इसके बारे में बताइए, मानवता के लिए योग कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है?
0: बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, मानवता के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। अभी हमारे देश के अंदर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के उथल पुथल मच जाती है, हम उस चीज़ के बारे में विचार नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा विचार करें, अगर हम योगाभ्यास करने वाले लोग हैं, तो हम थोड़ा सा हमारी चिंतन की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है, ये हमें समझ बढ़ जाती है। और जब हमें समझ बढ़ जाती है, तो हम अपने लिए क्या अच्छा है, हमारे समाज के लिए क्या अच्छा है, और हमारे राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है, उसको हम समझने लग जाते हैं, और फिर हम राष्ट्रहित में कार्य करने लग जाते हैं, और वही हमें फिर मानव भी बनाता है, और मानव से फिर महामानव भी बनाता है, क्योंकि मानव से महामानव बनना हमारी जीत है, और मानव से दानव बनना हमारी हार है। इसलिए योग को अपना करके हम मानवता से बढ़ सकते हैं, मानवता से और ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे तो मानवीय गुणों का विकास हमारे अंदर निश्चित रूप से होगा।
1: जी, अगर मानव है तो मानवीय गुण भी होने चाहिए। अगर ये एक बहुत बड़े वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये इनका विकास होता है, तो निश्चित ही ये संसार और अच्छा होगा, जीने के लायक होगा, और सब प्यार और मोहब्बत से एक साथ रह पाएंगे। अग्रवाल जी, इस मौके पे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अपने श्रोताओं को अगर कोई और बात ऐसी रह गई है जो उनके लिए उपयोगी हो सकती है, तो हम वो जानना चाहेंगे।
0: जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते, जिस प्रकार से हम श्वास लिए बिना नहीं रह सकते, इसी प्रकार से हम ये प्रण ले लें जीवन में कि हम योग किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि बीमार होकर इलाज कराने से अच्छा है हम बीमार ही न पड़ें। और मैं तो एक कदम और आगे कहना चाहूँगा कि आप योग को इस प्रकार से करें कि आपके माध्यम से दूसरे लोग भी सीखें, तो ये सेवा भी आपके माध्यम से हो सकती है। तो सब लोग योग खुद करें, दूसरों को कराने का प्रयत्न करें, ताकि हमारा देश हमेशा जन जन हमारे देश का स्वस्थ बने, और जो दवाइयों में जो हमारी जो मुद्रा बहुत ज़्यादा खर्च हो रही होती है, उससे हम बच सकें। धन्यवाद
1: जी। तो मानव कल्याण और योग, इस विषय पर आज हमने अपने श्रोताओं को जानकारी दी, और जानकारी दे रहे थे श्री राजेश अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अच्छी जानकारी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
2: मुद्दे की बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता राजेश अग्रवाल से, भेंट कर रहे थे विजय सिंह नौलखा, विषय था योग और मानव कल्याण। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अंबेडकर नगर और बांदा जिले के हलचल, आइए सुनते हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अंबेडकर नगर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
2: केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर अंबेडकर नगर के सभी विकास खंडों में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर तबके के लोगों को लाभ पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश सशक्त बन रहा है। अंबेडकर नगर में भूमि विवादों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ईसाप्रिया के निर्देश पर जिले के सभी तहसीलों के ग्राम पंचायतों में भूमि विवाद निस्तारण चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अकबरपुर तहसील की उप जिलाधिकारी प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि ग्राम प्रतापपुर चमुरखा में 56, लोरपुर पालहन में 75, चोनगांव में 39, तारा खुर्द में 30 और औरंगाबाद में 35 भूमि विवादों का निस्तारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मिझौड़ा चीनी मिल में जन जागरूकता एवं बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले या सुनिश्चित किया जाए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अंबेडकर नगर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 21 जुलाई को शून्य दुर्घटना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने अंबेडकर नगर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान चारू चौधरी ने जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर, वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। चारू चौधरी ने सर्किट हाउस में आयोजित जन चौपाल में महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निदान का निर्देश दिया। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़करण पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की यह योजना पक्के मकान में रहने की गरीबों की मुराद पूरी कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी इंद्रावती ने बताया,
3: हमारा परिवार एक झोपड़ी में रहता था, पक्का मकान एक सपना जैसे था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे उस सपने को पूरा कर दिया। अब हमारे पास अपना पक्का घर है।
2: अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थलों, बैंकों, तहसीलों आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मुहर्रम के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह सुरक्षा चौकियां बनाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ईसाप्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने शहर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अंबेडकर नगर में इस समय विकास कार्य तेजी से चल रहा है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के द्वारा ग्रामीण इलाकों में तेजी से विकास कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों और नाली निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज द्वारा मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कॉलेज प्रशासन अब शाम 4 बजे तक ओपीडी का संचालन कर रहा है। शाम 4 बजे तक मरीजों को अस्पताल की सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में सिर्फ अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में लागू हुई है। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है और इसका लाभ भी मिल रहा है।
4: अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रशासन सक्रिय है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान मिलेगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद के कृषकों एवं उद्यमियों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त लक्ष्य एवं अनुदान आदि की समीक्षा की गई। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल स्वयं अथवा जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अंबेडकर नगर को विभिन्न उद्यानिक कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए हैं, जिनमें सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार, मसाला फसलों का विकास, प्याज क्षेत्र विस्तार, फेसिंग मल्चिंग तथा सघन बागवानी कार्यक्रम शामिल। किसानों को टिशू कल्चर, मशरूम उत्पादन, काई, EDBE, वर्मी बेड तथा मल्चिंग जैसे कार्यक्रमों

0: का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जनपद के कृषकों से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने हेतु समय से आवेदन करने की अपील की है।
1: अंबेडकर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय निगम का।
2: जनपद के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद विगत 5 जून को पहली बार बांदा पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने स्थानीय सर्किट हाउस में प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बाद में स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन सरकार के द्वारा बांदा का बेहतर विकास किस तरह से हो, इसको लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जनजीवन किस तरह से सुगम और व्यवस्थित हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जनपद के अधिकारी सरकार की आशा के अनुरूप जनता की बेहतर सेवा कर रहे हैं। जहां असुविधा होगी वहां और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह ने वार्ता के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा,
3: केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से चर्चा करते हैं। जब भारत पे संकट हो तो विदेशी नागरिक नहीं, भारत के नागरिक बन करके देश के प्रधानमंत्री जी का साथ दें। भारत की न्यायालय परीक्षण कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय हैं भी या नहीं, इसी कारण वो भारत के विपरीत चर्चा करते हैं।
2: जनगणना कार्य को पूरा करने में प्रदेश में बांदा जनपद प्रथम स्थान पर है। बांदा में काफी तेज गति से जनगणना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य में समयबद्ध तरीके से बेहतर कार्य करने वाले प्रगणकों को जिला प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस वर्ष बांदा पूरे देश में सबसे अधिक तापमान वाला जनपद बना रहा। इसके बावजूद भीषण गर्मी में भी यहां जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों ने पूरे मनोयोग से कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया। बांदा के जिलाधिकारी अमित आचेरी ने बताया कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के फल स्वरूप सिर्फ 15 दिनों में कार्य पूर्ण कर जनपद बांदा ने डिजिटल हाउस लिस्टिंग संबंधी कार्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया,
4: बांदा पूरे प्रदेश में सबसे पहला जनपद बना जिसने अपने फेज 1 सेंसस को पूरा किया, और इसके लिए यहाँ के सभी बांदा के जनपदवासी सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने इतना कॉपरेट किया हमारी टीम्स के साथ, और हमारे न्यूमरेटर्स, चार्ज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, फील्ड ऑफिसर्स, ये सभी बधाई के पात्र हैं, और इन सबकी मेहनत के कारण हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाए हैं।
2: यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विगत 28 मई को बांदा पहुंचे, जहां वे जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाद में मुख्यमंत्री ने भाजपा जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। जनपद के चिल्ली गांव में आयोजित ग्राम तीर्थ स्थापना कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रगति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम हम भुगत रहे हैं। हमने पेड़ काटे लेकिन लगाने का काम नहीं किया। जल का दोहन तो किया लेकिन संरक्षण नहीं किया। हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी जगह जनता की सुनवाई हो, साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं की समस्याओं का भी समय से निस्तारण हो। कांग्रेस के द्वारा महंगाई पर प्रदर्शन करने को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा,
5: ऊर्जा संकट के समय एक गंदी राजनीति करने वालों को जनता ही जवाब दे। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश ने डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम न बढ़ाए। सबसे कम दाम बढ़ाने का काम कहीं हुआ है तो भारत में हुआ है।
2: पुलिस ने बांदा नगर क्षेत्र में नकली और मिश्रित गुट का निर्माण करने वाली फैक्ट्री बरामद कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, और उसके कब्जे से लगभग 2 लाख की कीमत के निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा और गुटखा बनाने की सामग्री सहित बड़ी कंपनियों के डुप्लीकेट रैपर भी बरामद किए हैं। बांदा की सहायक पुलिस अधीक्षक नेविष्टक ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कालूकुआं मोहल्ले से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मकान पर नकली व अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है। जानकारी होने के बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मौजूद गुटखा निर्माण कर रहे एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसके पास से पुलिस को अवैध गुटखा बनाने वाली सामग्री सहित भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित गुटखा बरामद हुए हैं। जनपद के कमासिन क्षेत्र में 74.91 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सिंह वाहिनी पंप नहर परियोजना का कांड अब कार्य अब अंतिम चरण पे है। 2.5 साल में इस परियोजना का 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नवंबर माह तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इस कार्य की शुरुआत दिसंबर 2023 को हुई थी। इस आधुनिक पंप नहर की क्षमता 50 क्यूसेक की है। कमासिन और इसके आसपास के दर्जनों गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की समस्या होती है, लेकिन सिंह वाहिनी पंप नहर के निर्माण से अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले

0: की हलचल का आज का अंक।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है हमारा धर्म और पर्यावरण। आलेख और वाचन है डॉक्टर सुदेश आहूजा का।

0: सुदेश आहूजा का।
1: हमारे यहाँ धर्म का रूप बहुत विस्तृत है, जो संपूर्ण विश्व को धारण करता है, सबके अस्तित्व को धारण करने में सहयोगी है, वही धर्म है। पृथ्वी पर जितने चेतन प्राणी हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। अतः मनुष्य का धर्म है कि वह अपने को कम चेतनाशील जैसे पशु पक्षियों, वनस्पतियों, पेड़ व पौधों की रक्षा करे। हमारे यहाँ धर्म में पाप व पुण्य की दो धाराएं प्रवाहित हैं। महाभारत में दूसरे को पीड़ा देना पाप व दूसरे का कल्याण करना पुण्य कहा गया है। अतः जियो और जीने दो हमारे धर्म का महान उद्देश्य है। हमारे धर्म में आत्मा व परमात्मा का चिंतन किया गया है तथा माना गया है कि सभी प्राणियों में समान आत्मा का निवास है। सभी जीव जंतुओं में एक ही परमात्मा का वास है, अतः छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी कष्ट या नुकसान न पहुंचाया जाए। हमारा धर्म जीवन में सब समान है के महान आदर्श को लेकर चलता है। श्रोताओं, हमारे प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना का संदेश है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, मरुत, रुद्र आदि देवों की उपासना तथा यज्ञ संस्कृति भारतीय ऋषियों की गहरी सोच का ही परिणाम है। यज्ञ हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है तथा वर्षा का कारण है। इस बात की पुष्टि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी की है। हमारे यहाँ यज्ञ व अग्नि पूजन के अलावा सूर्य, चंद्रमा, अनेक पेड़ों की पूजा तथा व्रत उपवास बाह्य शुद्धता से ही नहीं, हमारी आंतरिक शुद्धता से भी जुड़े हुए हैं। रोज स्नान, ध्यान, तुलसी, पीपल आदि में पानी देना, अनेक पर्वों पर बड़ पूजा व आंवले की पूजा का अभिप्राय यही है कि धर्म में पेड़ पौधों को शामिल कर यह सिद्ध किया गया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारे यहाँ हर काम से पहले जीव जंतुओं के लिए खाना निकालना, गाय व कुत्ते को रोटी डालना, पक्षियों को दाना डालना, वच बारस, तेजादशमी आदि त्योहार बताते हैं कि हमारे धर्म में छोटे छोटे जीव जंतु का भी ध्यान रखा गया है। गोवर्धन पूजा पर गाय बैलों की पूजा की जाती है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी 70% जनता खेती पर निर्भर है। अतः हमारे धर्म में उन सभी जीव जंतुओं की पूजा की गई है जो हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारे सारे देवताओं के वाहन व पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति के अधिकतर कथाएं ऐसे जलीय जंतुओं से जुड़ी हैं। उसका अर्थ है कि हमारे यहाँ किसी भी प्राणी को मारने या कष्ट पहुंचाने का नियम नहीं है। न जाने धर्म के नाम पर हम किधर जा रहे हैं। श्रोताओं, धर्म जो आंतरिक शुद्धि से जुड़ा हुआ था, प्रातः साय बैठकर संध्या वंदन करना और मन की शांति को ढूंढने के स्थान पर आजकल मंदिरों में सुबह शाम तेज आवाज में चलने वाले टेप रिकॉर्डर ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण मनुष्य की मानसिक अशांति, चिड़चिड़ेपन और अनेक मानसिक रोगों का कारण बन रहा है। धर्म में मनुष्य की आंतरिक शुद्धि के लिए दया, संतोष, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि नियमों का पालन, व्रत उपवास आदि का विधान किया गया था, उसके स्थान पर आज दिखावा व चढ़ावा रह गया है। इस प्रकार मनुष्य की स्वयं की शुद्धि व समाज में समरसता फैलाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए पूजा, व्रत, उपवास तथा त्योहार आज समाज में दूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आज जो व्यवसाय व दुकानें चल रही हैं, वह हमारे संपूर्ण सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण को दूषित व कलुषित कर रही हैं। हमारे धर्म का विस्तृत उदात्त रूप जो कण कण में भगवान है कि बहुत गहरी सोच के साथ जुड़ा था, दूषित व सीमित हो गया है। अतः हमें चाहिए हम अपने धर्म का पुनः अवलोकन करें तथा धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे लोगों के साथ प्रशासन कड़ाई के साथ पेश आए और अज्ञानी सामान्य जनता को हम अपने धर्म का सही रूप समझाएं, तभी हम अपने धर्म को संपूर्ण मानवता के कल्याण के साथ जोड़ पाएंगे।

संयोजन है ओपी सिंह का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका करते हैं आप बड़ी बेसब्री से इंतजार। इस कार्यक्रम में न केवल दी जाती है आपको सही और सटीक जानकारी, करवाया जाता है प्यारे प्यारे गीतों से आपका मनोरंजन भी। श्रोताओं, आज है 17 जून, यानी मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस। 17 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर वर्ष ये दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालना। प्रत्येक वर्ष के वैश्विक उत्सव में एक अनूठा नवीन जोर दिया जाता है, जिसे पहले विकसित नहीं किया गया। इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव A/RES/49/115 द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में घोषणा की गई है कि हम ग्रह को गिरावट से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें टिकाऊ उपभोग और उत्पादन, उसके प्राकृतिक संसाधनों का सही प्रबंधन, स्थायी प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई करना शामिल है, ताकि यह वर्तमान की जरूरतों का समर्थन कर सके और भावी पीढ़ियां, विशेष रूप से भूमि पर जीवन भूमिचरण को रोकने और उलटने के लिए संयुक्त राष्ट्र और SDG साक्षरकर्ता देशों के संकल्प को दिखाता है। मरुस्थलीकरण और सूखे की चुनौतियों से निपटने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना की गई। यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। UNCCD का उद्देश्य वैश्विक कार्रवाई को संगठित करना और मरुस्थलीकरण से निपटने, सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना विकसित करने में देशों का समर्थन करता है। मुख्यतः देखा जाए तो मानव जीवन जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि हमारी जो लालसा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमने प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। ऐसे में जो प्रमुख समस्या सभी देशों के सामने आ रही वो है रेगिस्तानों की संख्या बढ़ती जा रही है, रहने योग्य भूमि कम होती जा रही है। उससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन को खतरा उत्पन्न होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। तो हमारे प्रयास ऐसे होनी चाहिए कि जो मरुस्थलीकरण यानी जो रेगिस्तान का जो विस्तार है वो कम से कम हो, जीवन बच जाए, हरियाली बच जाए, प्रकृति बच जाए। क्योंकि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती। ऐसे में मानव का प्रयास होना चाहिए कि उसके जो प्रयास है वो प्रकृति को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए। वरना अगर ये रेगिस्तान का विस्तार बढ़ता ही रहा तो शायद कुछ ही लोग जीवित रह पाएंगे, जीवन ही यहाँ से समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए ताकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जीवन है, वो हरा भरा रहे, विकसित हो और आगे बढ़े।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, जिसमें आज का विषय था हमारा धर्म और पर्यावरण। आलेख और वाचन था डॉक्टर सुदेश आहूजा का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति है सुरभि सिंह की।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: तो गर्मियों के मौसम में हम अपने ठाकुर के लिए अब ठंड प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ जतन करते हैं। फूल बंगलों का आयोजन भी ये एक प्रयास है जिसमें हम अपने आराध्य को शीतलता प्रदान करते हैं। फूल बंगले क्या है, किस प्रकार इनका निर्माण किया जाता है और ये परंपरा कब से चली आ रही है, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं राधा रमन मंदिर के सेवायत श्री पुष्पांग गोस्वामी जी।
5: राधे राधे।
4: ये बताइए कि फूल बंगले से क्या मतलब है? क्या वो ईंट पत्थरों के ऊपर फूलों को चिपका देते हैं? फूल और बंगला दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। फूल कोमल होते हैं और बंगला यानी कि बड़ा कठोर सा निर्माण, क्या तात्पर्य है इसका?
5: आपको बड़ा सुंदर प्रश्न है। ठाकुर जी को ग्रीष्म ऋतु आने पर शीतोपचार प्रदान करने हेतु फूल बंगला को मनोरथ सिद्ध किया जाए, तो आपने जैसे कही कि फूल और बंगला दो विरोधी शब्द प्रतीत हो रहे हैं। सो बंगला कहें कि ठाकुर जी को जो कुंज है बाकू आधुनिक भाषा में बंगला की कहे, जो पुराना शब्द है वो है फूलन की बैठक या फूलन की कुंज, ये वाकु पुराना शब्द है। तो पुष्पन से ठाकुर जी की सुंदर कुंज सजाई जाए, ठाकुर जी की बैठक सजाई जाए और वाकु आज के समय में फूल बंगला कहे। तो यहाँ में सुंदर सुंदर जो अपने ब्रज में हैवे वाले पुष्प हैं उनसे ठाकुर जी की ये पुष्पन की कुंज बनाई जाए। यहाँ में सेवा में पुष्पन को जो प्रयोग है वो केवल कुंज तक ही सीमित नहीं।

0: हम अगर प्राचीन ब्रजभाषा आचार्य की पद पदावलिन को अध्ययन करें तो या में दो रूप से पुष्पन की कुंज बने, पुष्पन को प्रयोग हुए। एक रूप में तो कुंज बनाई जाए ठाकुर जी को संध्या के समय ग्रीष्मोपचार पे शीतोपचार प्रदान करवे के तू ग्रीष्म ऋतु में, एक हुए कि पुष्पन के ठाकुर जी की पोशाक भी पुष्पन की बनाई जाए, और एक हुए शयन के समय ठाकुर जी की जो सेज है सैया जाकू कहें वह सैया को भी पुष्पन से रचना करके सुंदर चित्रित किया जाए। तो पुष्पन के सेवा में तीन रूप से प्रयोग है। तो सबसे पहली बात है पुष्पन की कुंज, या को वो वर्णन जो है वो प्राचीन काल से हमारे शास्त्रन में मिले, बहुत पुराने काल से ये सेवा में तथा भारतीय जनमानस में एक सामान्य सामाजिक व्यवहार में भी ऐसी ही पुष्प कुंजन को वर्णन संस्कृत काव्यन में तथा ब्रजभाषा काव्यन में स्पष्ट रूप से हमको देखने को प्राप्त हुई है।
1: ये जो पुष्प आपने कहा इस्तेमाल होते हैं, किस किस प्रकार के पुष्प इस्तेमाल होते हैं? क्या सिर्फ देशी पुष्पों का इस्तेमाल होता है या विदेशी फूलों का भी इस्तेमाल होता है?
0: वर्तमान समय में तो विदेशी पुष्पन को अभी प्रयोग या कई कई जगह देखने को मिले हैं, पर जहां तक श्री राधा रमन मंदिर में जहाँ पुष्प कुंजन को मनोरथ हुई वहां में विशुद्ध जो भारतीय पुष्प हैं उनको ही विशेष करके प्रयोग हुए हैं। हमारे यहाँ की परंपरा में विदेशी वस्तुओं को सेवा में प्रयोग निषिद्ध है। यहाँ तक कि ये तो पुष्प हैं, ठाकुर जी के भोग राग में भी जो विदेश के आए हुए वस्तुएं उनको भी प्रयोग वर्जित है।
1: जैसे
0: जैसे कि आलू है, ब्रज में तो बहुत प्रयोग हुए, परंतु राधारमण मंदिर में आलू को प्रयोग नहीं है, आलू बाहर को है, भारत को नहीं है।
1: तो आलू
0: आलू
1: से बनी हुई कोई भी पदार्थ या आलू की बनी सब्जी राधारमण मंदिर में नहीं बनती?
0: जी नहीं, ऐसे आलू नहीं जाए, टमाटर भी नहीं जावे, ये भी विदेश की
1: अच्छा,
0: जो ये इस प्रकार से जो विदेशी वस्तुएं हैं जहां में भारतीय अपनी भारत देश की माटी की जहां में खुशबू नहीं है, सुगंध नहीं है, तो वो ठाकुर जी को सेवा में नहीं आवे। ऐसे ही जो ठाकुर जी की पुष्प कुंज की रचना हुई वहां में भी विशेष करके ब्रज में उत्पन्न हुए वाली तथा भारत देश में उत्पन्न हुए वाली खिलवे वाले जो फूल हैं, मोगरा है, कुंद है, राय बेल है, जूही है, गुलाब है, ये जो पुष्प हैं, पत्ता हैं, विभिन्न वृक्षन के पत्ता हैं, बड़ के पत्ता हैं, अशोक के हैं, आम के हैं, इनको प्रयोग जो है वो पुष्प कुंजन में किया जाए।
1: इन बंगलों का जो आयोजन है या बंगलों की जो सजावट है या बंगले किस प्रकार बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर हम फूलों से कुछ ढांचा बनाएंगे तो वो टिकेगा ही नहीं, तो किस प्रकार निर्माण किया जाता है इस बारे में बताइए।
0: देखिए जो फूल कुंज बने का है, फूल बंगला जाकू कहें या के जो खांचो होवे का है बाकू कहें ठाट, वो लकड़ी को बनो वे हुए शीशम की लकड़ी को
1: जी
0: में मजबूताई रहे सो वाकू कहें हैं ठाट। ठाट में भी कई चीज होवे, एक तो सिंहासन वेदी हुए जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हुए, फिर बाके ऊपर ठाट लगे बा में चौकूटा है, हथनी है, बगली है, इस प्रकार के जो उनके विभिन्न आकृति हैं उनके हिसाब से उनको नाम है, सो उनको पहले जोड़ करके बांध करके एक ढांचा जो है जिस प्रकार की कुंज बनानी है वैसा ढांचा तैयार किया जाए और बाके बाद बापे पुष्पन की गूंथ करके रचना की जाए।
1: इन फूल बंगलों का जो डिजाइन है वो क्या आप अपने मन से बनाते हैं या कलाकार अपने मन से बनाता है? तो वो जो डिजाइन है वो आप कैसे बनाते हो? हर दिन हर फूल बंगले में एक नया डिजाइन एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। किसी किसी में ठाकुर जी की झांकी देखने को मिलती है, किसी किसी में ठाकुर जी के स्वरूप देखने को मिलते हैं। उसका चयन किस प्रकार किया जाता है?
0: बड़ा सुंदर प्रश्न है आपको। ठाकुर जी की जो पुष्प कुंज है या की जो रचना है ये ज्यामितिक रचनाएं हैं सारी, एक भी रचना जो है कोई ये नहीं कह सके देख करके कि या में कहीं गलती है ये कहीं

0: ज्यामिति से मिलती हुई नहीं है, रेखागण चाकुकेवा से मिलती हुई नहीं है, एकदम विशुद्ध ज्यामितिक रचनाएं हैं। एवं प्राचीन जो अपनों तंत्र शास्त्र है या में यंत्र बने गए हैं, उन यंत्रन को प्रभाव भी कहीं ना कहीं पुष्प कुंजन में, क्योंकि यंत्र को यंत्र और मंत्र ये सेवा में विशेष रूप से प्रयोग किए जाए, तीनों ही वस्तु यंत्र मंत्र और तंत्र। तंत्र को अर्थ है विधि, मंत्र तो स्वयं देवता को स्वरूप हुए है, और यंत्र वा को आधार। तो यंत्र जो है वो यांत्रिक रचनाएं जो है, ज्यामितिक रचनाएं जो है, उनमें उन प्राचीन यंत्र रचना को जो हमारे वेद काल से चली आ रही है, उनको प्रभाव भी कहीं ना कहीं पर परिलक्षित है।
1: ठाकुर जी के बड़े सुंदर स्वरूपों की रचना फूल बंगलों में होती है,
0: जी
1: कई
0: जी
1: तरह के घटनाओं का चित्रण भी होता है, तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: बनाना बड़ा मुश्किल होता होगा।
0: नहीं, अब बिल्कुल सही बात, बड़ा कठिन काम है। याकू विशेष करके पुष्पन में और केला के ऊपर, केला को जो वृक्ष होए, बाकी तना को बीच बीच में से लेकर के छील करके बड़े महीन रचना वा में विभिन्न विभिन्न ठाकुर जी की लीलान की जो झांकी है वाको बंगला में पुष्प कुंज में वाको प्रदर्शन किया जाए। बड़ो ही श्रम साध्य और बड़ो ही लगन और मेहनत को कार्य।
1: ये जो फूल बंगलों की जो रचना है, झांकियों की रचना है, ठाकुर जी के स्वरूपों की जो बनावट है, रचना है, ये सेवाएं स्वयं करती हैं क्या, बाहर से कारीगर बुलाए जाते हैं?
0: नहीं, विशेष करके तो सेवायत ही रचना करते हैं, और कहीं अगर अपने ब्रजवासी भाई बंधुओं की, उनको ठाकुर जी आज्ञा दे उनकी सेवा लेनी हो तो उनको भी सेवा में हाथ आवई है, वे भी आवे सेवा में।
1: जी, क्या इस दौरान ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी की जो पोशाक है, ठाकुर जी के जो वस्त्र है, वो भी बदल जाती है? किस प्रकार की पोशाक धारण करते हैं?
0: यह समय मुख्यतः जो है सूती, जो बिल्कुल विशुद्ध सूती वस्त्र होए, मलमल जाकू कहे, बिल्कुल मलमल को प्रयोग हुए, बहुत ही हल्को रहे, और ताकि ठाकुर जी को श्री अंग में हवा जो है वो लगती रहे। और यहाँ में तो विशेष रूप से पोशाक के स्थान पर पुष्पन की पोशाक बनाई करके, फूलन की पोशाक बनाई करके ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हेतु धारण कराई जाए।
1: जी, और ठाकुर जी के भोग में, ठाकुर जी के भोजन में किस प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल होता है? कैसे परिवर्तन आ जाता है मौसम के हिसाब से?
0: देखिए, प्रकृति के जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो यहाँ में मुख्यतः जितने भी गरम मसाले इनको प्रयोग है वो वर्जित कर दियो जाए। बहुत ही हल्के मसाले रखे जाए में भोग में बनावे में, जो नित्यानि भोग है, और विशेष रूप से फल और शरबत, या को ठाकुर जी को विशेष भोग लगे हैं। इस समय की जो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को जो विशेष भोग कहे हैं वो फल हैं और शरबत।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। मिलावटी अचार सॉस पर कसा शिकंजा, खराब दशा में भंडारित 1155 किलोग्राम हरी मिर्च जब्त की, विभाग की ओर से चलाया गया विशेष अभियान। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इसके तहत सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय दिलीप प्रताप सिंह के नेतृत्व में खाद्य सचल दल ने कोसी कोटवन इंडस्ट्रियल एरिया से टोम्स इंडस्ट्री से बेहद खराब दशा में भंडारित करीब 1155 किलोग्राम हरी मिर्च जब्त करी। विभाग की ओर से चलाए गए इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को स्वच्छ व गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। टीम ने टोम्स इंडस्ट्री से हरी मिर्च के अचार का एक नमूना लिया। स्वच्छ तरीके से रखी गई बड़ी मात्रा में मिर्च को जब्त कर खाद्य कारोबारी के अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया। इसके बाद सचल विभाग

0: विभाग ने गोवर्धन क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सोया सॉस का एक नमूना लिया। इस छापेमारी कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह, अरुण कुमार राणा, राम नरेश और मोहर सिंह मुख्य रूप से शामिल रहे। विभाग ने संग्रह किए गए दोनों नमूनों को जांच के लिए राज्य की खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। सहायक आयुक्त ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अचार को जल्दी तैयार करने, चमकीला दिखाने को इस्तेमाल के होने वाले तरीके, सिंथेटिक रंग और केमिकल, सस्ते और शुद्ध तेल की मिलावट, औद्योगिक एसिड, फंगस और स्वच्छता, सड़े गले कच्चे माल का प्रयोग, चाइनीज फूड की जान सोया सॉस में मिलावट का सच, केमिकल हाइड्रोलाइज प्रोटीन, कार्सिनोजेनिक कैरेमल रंग, अत्यधिक सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स, अजीनोमोटो की ओवरडोज, सूचित पानी का इस्तेमाल। अगर आप भी जांचना चाहते हैं कि किस प्रकार मिलावट को आप जांच सकते हैं तो ये कुछ उपाय हैं। अचार का रंग, अगर अचार असामान्य रूप से बहुत चमकीला हरा दिख रहा है तो समझ जाए इसमें केमिकल रंग मिला हुआ है। सोया सॉस का गाढ़ापन, असली सोया सॉस पारदर्शी थोड़ी पतली होती है। अगर सॉस बहुत ज्यादा गाढ़ी, चिपचिपी और बर्तन पर काला दाग छोड़ने वाली है तो सिंथेटिक है। तीखी केमिकल गंध, डिब्बा खोलते अगर सिरके या मसालों की जगह किसी केमिकल या तेजाब जैसी तीखी गंध आए तो अस्वच्छ मिलावटी है। तेल की परत, अच्छे अचार में तेल ऊपर तक तैरता है जो उसे सुरक्षित रखता है। अगर तेल की जगह पानी जैसा लिक्विड अलग हो रहा है तो वो फंगस को न्योता देता है। लेबल की जांच, हमेशा FSSI लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर ही पैक्ड फूड खरीदें। अब डाल देख नजर आज के इतिहास पर क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। 1631 में मुगल सम्राट शाहजहां की बेगम मुमताज महल का निधन हुआ। आज ही के दिन उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। वहीं 1858 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेते वीरगति को प्राप्त हुई। 1885 में प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का विशाल ढांचा पानी के जहाज से अमेरिका के न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा। 1954 में आइसलैंड गणराज्य डेनमार्क से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। 1972 में अमेरिका में वाटरगेट होड़े से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ विश्व दिवस मनाने की घोषणा करी। 2008 में भारत के पहले हल्के लड़ाऊ विमान तेजस ने बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान भरी। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने नित्य नए आयाम स्थापित किए हैं। आज के दिन वीरांगना झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। सिंहासन हेलुटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 1957 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में भी आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र 23 थी, मनु नई अवतारी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जागेगा स्वतंत्रता अविनाशी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता जो रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखी गई थी, जब भी कोई व्यक्ति पढ़ता है या सुनता है तो उसकी नस नस फड़कने लगती है। उसका भी मन करता है कि जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन का बलिदान अपने देश के लिए किया, वो भी अपने देश के लिए कुछ कर सके। देश प्रेम की भावना उसके अंदर हिलोने लेने लग जाती है। आकाशवाणी के माध्यम से कविता पाठ का आयोजन किया था, काव्य गोष्ठियों का प्रसारण किया जाता है, जिससे इस तरह की कविताएं लोगों को सुनवाई जाती हैं ताकि कहीं ना कहीं वो कविता के माध्यम से देश प्रेम की भावनाओं को अपने अंदर जगा सकें, वो अलग जगा सकें जो देशवासियों को देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। देश प्रेम की भावना हर व्यक्ति के अंदर निहित होती है। जरूरत है उसको पहचानने की, जानने की और समझने की। हर व्यक्ति अपने देश की सेवा करना चाहता है। ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति सेना में शामिल हो जाए, पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाए ताकि वहां जाकर सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा कर सके। लेकिन अगर वो चाहे तो अपने ही कार्यक्षेत्र में पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करे तो अपनी देश की सेवा कर सकता है और उसे आगे बढ़ा सकता है। क्या करे क्या ना करे के अंतर बातचीत करते हैं आपसे, इन विषयों के बारे में तो होते आम बन जाते हैं खास। अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखें, गंदगी इकट्ठा ना होने दें, घर के आसपास के माहौल का भी साफ सफाई का ध्यान रखें। सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

ब्रज दर्पण प्रस्तुति थी सुरभि शर्मा की और संयोजक थे ओपी सिंह। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

गोरा और काला फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, बोल थे आनंद बख्शी के, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं धर्मात्मा फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। शब्द रचना है इंदिवर की और संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

बुढ़ा मिल गया। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में इस गाने को गाया मन्ना डे और अर्चना ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म अभिलाषा में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था झील के उस पार। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

0: मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सीता और गीता फिल्म से।
1: बाप रे,
2: इस तरह जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी।
1: टूटती है तो टूटने दो, तुम डॉक्टर किस काम के हो? वो बांधो ना वो सफेद सफेद, वो क्या होता है?
2: सफेद सफेद आगे के पहियों पे रखना चाहिए।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म सीता गीता में। अगला गीत सुनवाते हैं महल फिल्म से, गाया है आशा भोसले ने।

महल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमर प्रेम फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

आरती मुखर्जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मासूम फिल्म का ये गीत। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

नमस्कार मित्रों, कुछ लोग चाय के बिना नहीं जागते, कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन शुरू ही नहीं होता जब तक उनका पसंदीदा गीत कानों में न घुल जाए। तो लीजिए आपकी यादों की पोटली, आपकी फरमाइश गीतों की ऐसी लिस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है, ऐसे ही प्यारे से गीतों को

यहाँ फोन आपका, फरमाइश आपकी और गीत भी आपकी पसंद का। तो मुस्कुराइए क्योंकि अब बजने वाला है वो गीत जिसे सुनकर शायद आप भी गुनगुना उठें।

0: क्या इशारा।
1: और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई गीत दस्तक दे रहा है तो हमें फोन कीजिए, क्योंकि यहाँ फरमाइशें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पूरी भी की जाती हैं। तो चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पहली फरमाइश के साथ। हेलो आकाशवाणी
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: जी बिल्कुल, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी स्वागत है कार्यक्रम में, जय महाकाल।
2: जी जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बढ़िया, और आप बताइए आप कैसे हैं?
2: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: जी हमें भी ऐसा ही लग रहा है आपसे बातें करके, कि महाकाल की नगरी से अगर किसी श्रोता का फोन आता है तो लगता है कि बस संदेशा आया है प्यार भरा श्रोताओं के माध्यम से ही। सही
2: जी, जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में आपका स्वागत रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या करते हैं आप?
2: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: अभी इस समय तो खेत खाली होंगे ना?
2: हाँ जी दीदी, बिल्कुल सभी खेत खाली पड़े हैं, और उनको फ्रेश करके मतलब छोड़ दिया जा रहा है, तो अब बरसात होगी ना।
1: हाँ
2: 25 जून के बाद में तो फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
1: अच्छा, सोयाबीन की खेती करते हैं आप?
2: हाँ जी, अभी सोयाबीन की होती है, और जब सोयाबीन की कटाई होने के बाद में गेहूं और लहसुन लगाई जाती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत अच्छी आपकी फसल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बता दीजिए अपनी पसंद भी, क्या सुनना चाहेंगे?
2: जी बिल्कुल, पसंद बताने से पहले मैं आपके लिए दुआ करूंगा महाकालेश्वर बाबा से, कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपको तरक्की करते रहे, आप हमेशा आप अपने परिवार के साथ खुश रहो, और आप हमेशा हमारे लिए अच्छे से कार्यक्रम पेश करते रहो। हम यही दुआ करेंगे बाबा से आपके लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस ये दुआ महाकालेश्वर जी के चरणों में हमारे लिए जरूर रखिएगा, जब भी आप दर्शन करने जाएं उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे।
2: जी
1: बताइए अब आप क्या सुनना चाहेंगे?
2: जी फिल्म का नाम है मिस्टर बेचारा, और गाने के बोले साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म।
1: जी ठीक है,
2: हम तो यही कहेंगे, हम जब भी जन्म ले खुश रहे और आकाशवाणी से जुड़े रहे, और बाबा सब पर कृपा बनाए रखे, हम यही चाहेंगे।
1: जी जी, सुनी पसंद का ये गीत।
2: जी थैंक यू सो मच।
0: साथी मेरे सुन तो जरा।
3: हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए, बोलो बोलो ना।

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, परिचय दे दीजिए अपना।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: दीदी, मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता में अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से। दीदी
0: स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं?
1: दीदी हम भी पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। दीदी आपसे जानना चाहते हैं संपूर्ण आकाशवाणी टीम का हाल।
0: संपूर्ण आकाशवाणी टीम का हाल तो जी बस ऐसा है कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं, और बस ऐसे ही सबको रहना चाहिए, चाहे आकाशवाणी की टीम हो या आप और आपके परिवार या आपके ग्रामवासी क्यों ना हो।
1: दीदी सभी लोग अच्छे हैं हमारे गांव में, आप लोगों की दुआएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारा आकाशवाणी परिवार ऐसा ही स्वस्थ मस्त। दीदी अब तो आकाशवाणी ने 90 साल का अपना स्वर्णिम सफर भी पूरा कर लिया है। 8 जून को आकाशवाणी ने अपना 90 साल का स्वर्णिम सफर पूरा किया है। दीदी आज के युग में आकाशवाणी को सुनने के लिए श्रोताओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ये आप लोगों की मेहनत ही है, आप लोगों का प्रयास ही है, आप लोगों की एक है प्रेम भाव ही है कि श्रोता जुड़ते जा रहे हैं आज के डिजिटल युग में।
0: जी जी बिल्कुल। और आज क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: जी दीदी फिल्म का नाम है बरसात, उसका एक गाना है दीदी तेरी अदाओं पे मरता हूँ।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?

0: हेलो आकाशवाणी,
1: आदरणीय रश्मि दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए।
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश यानी खंदौली से आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में राजू जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं दीदी, और हमारी दीदी और हेलो आकाशवाणी टीम कैसी है?
0: बिल्कुल सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आनंदित हैं। और आज देखिए अधिक मास का जो है वो समापन का दिवस है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज सोमवती अमावस्या भी है और अधिक मास भी आज समापन की ओर है, तो ये बड़े पुण्य फल का महीना रहा सभी लोगों के लिए, और ब्रज में तो इस महीने की कुछ
0: विशेष विशेष महत्ता है। और यही कारण था कि हमारे पूरे ब्रजमंडल में जहाँ कहीं भी आप नज़र डालेंगे वहाँ पर हजारों श्रद्धालु परिक्रमार्थी आपको नजर आएंगे। और
1: हम भी लगातार दो दिन वृंदावन गए थे, एक दिन गए थे तो एक प्रोग्राम में गए थे, उसके बाद अगले दिन यानी 28 तारीख को हम परिक्रमा करने भी गए थे, तो रास्ते में जहाँ ये जो काराबंदी से होकर रोड निकलता है हाईवे के लिए, उससे अथाह श्रद्धालुओं की भीड़ थी, रोड निकलना भी मुश्किल था। तो ब्रज में तो अभी तो चलो ये है कि अधिक मास था, लेकिन ब्रज में तो हमेशा 12 महीने ही
0: बस यहाँ तो आनंद ही आनंद है। और जब विशेष कोई पर्व होता है तब ये आनंद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। अपनी पसंद बता दीजिए।
1: अब क्योंकि आज अधिक मास का समापन है, तो आज दीदी मेरे को तो कोई इस समय कोई भजन याद नहीं आ रहा है।
0: कोई गीत सुनिए

0: जरूरी थोड़ी हमेशा भजन ही सुनेंगे।
1: नहीं नहीं, देखिए दीदी, दीदी हमारा देश जो है वो सांस्कृतिक प्रधान देश है और हर पर्व का अपना एक अलग महत्व होता है। हम भी भगवान की ही संतान है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कोई ऐसा भजन सुना दीजिए हमें जो भक्ति से ओतप्रोत।
0: ठीक है, आपने फोन किया इसके लिए।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: अरे कहते हैं कि ना दौलत की तमन्ना है,
0: ओहो,
1: और ना शोहरत की आरजू।
0: क्या बात है।
1: और आपसे बात हो जाए दीदी जान, तो यही सबसे बड़ी जुफ्तजू।
0: अरे रे रे रे रे, क्या बात है, क्या बात है। परिचय दे दीजिए अब इसी बात पर, शेरो शायरी तो आपने सुना दी।
1: अरे दीदी जान, ये मान के चले रश्मि जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, बोल तो वही रहे हैं।
1: आप द्विज भारती मुंबई की ममता सिंह, और लखनऊ की दीप्ति जोशी, और मध्य प्रदेश भोपाल की सुनीता सिंह से बढ़कर हैं। कमाल की हैं, कमाल की दीदी जान, कमाल की हैं आप। धमाल मचा देती हैं। हाँ। और माला माल कर देती हैं, मजा आ जाता, बाढ़ आ जाती मेरे घर में।
0: अभी बाढ़ मत आने दीजिए, बाढ़ आने में भी समय है।
1: अरे दीदी जाने, मान के चलिए भगवान की दुआ हो गई कि मथुरा जैसे, मैं मथुरा का दीवाना और ग्राम बहुत लंबा पता है बता दूं, हिंदुस्तानी कलाकार।
0: अच्छा चलिए।
1: और ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से आपकी भाभी जान लैला दीवानी जी। नमस्कार।
2: नमस्कार दीदी जान।
0: नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: अरे दीदी जान बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो गई तो अब मोटे हो गए।
0: अरे बात, क्या बात है, क्या बात है। और क्या सुनना चाहेंगे आज
1: आप दीदी जान? हम दोनों लोग गुनगुना लेंगे और फिर ठुमका लगाएंगे। फिल्म का नाम है वो मैं तेरा दुश्मन।
0: मैं तेरा दुश्मन, कौन सा गीत है?
1: हाँ, गीत का बोल है दीदी जान कि सारे जहां के सामने इकरार कर लिया,

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: रश्मि दीदी, मैं आपका नियमित श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा, सिहोरा से।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में। महेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: दीदी हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
0: बिल्कुल, और हम भी यही कामना करते हैं, हमारे सभी श्रोता स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। और आज आपकी क्या पसंद रहेगी?
1: दीदी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भी आप आकाशवाणी स्टूडियो में आती हैं तो यूं समझ लीजिए कि आप आए बाहर आए।
0: ये आपका प्यार है और बस इस प्यार से मेरी एनर्जी बहुत बहुत बहुत बढ़ जाती है। बस ऐसे ही आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे।
1: दीदी आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो अंदाज है ना, ये बहुत अच्छा है।
0: जी चलिए, आप सभी को मेरा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं बिल्कुल दिल से आप सभी की आभारी हूँ।
1: आज हमारी पसंद रहेगी दीदी फिल्म है कटी पतंग, जिसका एक शीर्षक गीत है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी तो क्या एक कटी पतंग है।

शब्द रचना मनोज मुंतशिर की, संगीत अंकित तिवारी का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

स्पेशल 26। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे एमएम करीम और केके को। गीत रचना शब्बीर अहमद की थी, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

10 फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें के और शान की थी। और आइए अब सुनते हैं जुबीन गर्ग की आवाज में ये गीत फिल्म गैंगस्टर से। इस गीत को लिखा सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का।

अभी तक आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपके ढेरों संदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं थोड़ी सी चर्चा आज के विषय पर। आज हम बातचीत कर रहे हैं बरस जाओ मेघ जीवन पुकार रहा है इस विषय पर। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, लू के थपेड़े और बढ़ते तापमान की कठिनाइयां लेकर आता है।

है। जब सूर्य की प्रचंड किरणें धरती को तपाने लगती हैं, तब पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी वर्षा की एक एक बूंद के लिए तरसने लगते हैं। सूखी धरती मानो आकाश की ओर देखकर बादलों का इंतजार करती है। बारिश केवल जल की बूंद नहीं होती, बल्कि जीवन का संदेश लेकर आती है। किसानों की आशाओं वर्षा से जुड़ी होती हैं। खेतों में पड़ी दरारें, सूखे तालाब और मुरझाई फसलें बादलों को देखकर जैसे मुस्कुरा उठती हैं। पहली वर्षा की सूंधी सूंधी खुशबू मन को आनंद से भर देती है और प्रकृति में नई चेतना का संचार करती है। तो दोस्तों, ये तो रही बात, अब लेते हैं आपके संदेश। इस क्रम में पहला संदेश हमें प्राप्त हुआ है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान का। अगले संदेश के साथ पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा, ईशांत। बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रत्नमाला और विद्या कुमारी। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा। दरियापुर भावली महाराज से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक और इनके सभी परिवारी जन। शेरी वडनी रकोला से अरुणा, बलदेव और आदित्य दामोदर। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से। आप सभी अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले। पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा सोन बने। अगले संदेश के साथ श्रोतागण जुड़े हैं मामूलवाड़ी महाराज से आप सभी सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडुकार और तुषार। अगली फरमाइश के साथ नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे, बुलढाणा से। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानुप्रकाश जुड़ चुके हैं। गांव चौलदा बागपत से संजय, अमन और अपार ढींगिया का ही संदेश प्राप्त हुआ है। मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, लकी, तान्या, नारंग। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। मजनू का टिल्ला से जुड़े हैं कमल, मधु, सागर, बालूजा। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। अगले संदेश के साथ फनेश कुमार चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र, हियांश चंदन। मगरलोड छत्तीसगढ़ से आप सभी का ही संदेश प्राप्त हुआ। डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी और सोनम अदीबा। अब्दुल गफार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक, उमर कटारे और राजेंद्र जी। संदेश मिला संजय कॉलोनी खंडवा से। चंडीगढ़ से सतीश और विमला अनिजा का ही संदेश प्राप्त हुआ है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं दिनेश, करुणा वर्मा। फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज और गुरनूर, शुभदीप सिंह। करणवीर हाउस बुच्चो कैंचिया, बठिंडा पंजाब से आप सभी श्रोतागण जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। गीत को आवाज दी है साहिल हाडा ने, फिल्म का नाम सरबजीत।

और कार्यक्रम में आज बातचीत का सिलसिला जारी है, बरस जाओ मेघ जीवन पुकार रहा है इस विषय पर। जी हाँ दोस्तों, वर्षा प्रकृति का अनमोल उपहार है जिसका जनजीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। समय पर होने वाली वर्षा किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है, साथ ही साथ बारिश गर्मी से राहत देती है और हवा को शुद्ध तथा ठंडा बनाती है। पशु पक्षियों और मनुष्यों को भी इससे नया जीवन मिलता है। अत्यधिक वर्षा कई समस्याएं भी उत्पन्न करती है, जैसे बाढ़, जल भराव, यातायात में बाधा और जनजीवन की हानि। लेकिन एक निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में वर्षा, बरसती बूंदों में छिपा जीवन का संगीत, वर्षा से धरा बने हरियाली की प्रीत, इस संदेश को देती है। अब कार्यक्रम में लेते हैं संदेश। संदेश प्राप्त हुआ है।

बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा नसीब और पलक लुबना यस मंसूरी का। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। करीमनगर से लक्ष्मी नारायण, विजया और अभिनय, इन्हीं के साथ साई किरण। गंजुटवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना, आलिया अंसारी। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद और निशा, साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्य। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत, मयंक और इनके सभी परिवारीगण जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान, तुलसी, मस्कीन। संदेश प्राप्त हुआ है हमें दिल्ली से और अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। फरुखाबाद से प्रवेश कुमार, अखिलेश, डिंकल, जिले गिरीश, अरविंद और रामलखन। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, इनका कहना है गर्मी का भीषण तपन और उमस के बाद सावन की पुहारें किसी वरदान से कम नहीं होती। रिमझिम बूंदों की आहट, सूंधी खुशबू और हरी भरी प्रकृति से मन सुकून प्राप्त करता है। संदेश प्राप्त हुआ है राजनगर बिहार से नवीन, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, कामेश्वर, प्रदीप, राजबहादुर, शंभू और इनके समस्त परिवारजनों का। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा। छनुलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन, हेमंत और धर्मदास वाधवानी। संदेश मिला विलासपुर छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश के साथ डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजबिये। गंजुटवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा और अयाज अंसारी। सोमनाथ जाधव, गीता, ओम सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता जाधव। नेहरू चौक पेटर से सुरेश, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव। शिव मंदिर चौक दमदम अर्जुनपुर से बसंतलाल, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री, अभय कुमार सनातनी और बीके सिन्हा। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनटी बुलंदशहर से आप सभी श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और परिवार के सभी सदस्य। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना भगत जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में अगला संदेश जो हमें भेजा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा और इन्हीं के साथ स्वीटी छाबड़ा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीके, रंजू, अशोक, सुशील, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील और इनके परिवार के सभी परिवारीजन। गगनदीप ठांडी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी नवाशहर पंजाब से। एक और संदेश हमें प्राप्त हुआ है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराज से नासिर, नाजियार, शाहिद और शाहिद का। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, साहिल, बिट्टा बजाज। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और इन्हीं के साथ स्वीटी। अमरावती महाराज से हर्षा, दिलीप, अक्षय और रुद्रा रामेकर। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बात और SMS आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं विषय बरस जाओ मेघ जीवन पुकार रहा है इस विषय पर। जी हाँ दोस्तों, बदलते मौसम में रिमझिम बारिश और इंद्रधनुष की छटा दिल को छू लेती है। प्रकृति न जाने कितनी रंग बिखेरती रहती है और मन प्रफुल्लित होता है। कार्यक्रम में अब लेते हैं संदेश। संदेश मिला है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार।

काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का। गंगानगर राजस्थान से मेहर ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। शेगांव बुलडाणा मारा से संतोष, तेजस और लोकेश। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अपना नाम और स्थान हमें जरूर लिखकर भेजें। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज और गुड़िया। पोटियाखला दुर्ग से सुजाता, शशांक और सीमा साहू जुड़ चुके हैं। डीके साहू, संध्या, योगेश, मुरलीधर और लक्ष्मी देवी, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। नंदकिशोर गटे, साक्षी, संगीता, जयशी मेहत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलते। संदेश मिला है हमें बीड शहर महाराष्ट्र से। नर्मदा पार्क मंगलवीड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद और नदीम पटेल जुड़ चुके हैं। इनका कहना है, जल है तो कल है, इसलिए पानी का महत्व भी हमें समझना चाहिए और उसका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत, आरती, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना और रोनिका। संदेश मिला है बुंदेलखंड यूपी से। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नुखिलाल वर्मा जुड़ चुके हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। गंडुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, इमराना, नवाजिश, दानिश, अमन और राधा नामदेव। अगले संदेश के साथ जुड़े हैं आप सभी श्रोता। विजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार अजमेर शरीफ से। पुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन, आराध्या और लल्लू। इनका कहना भी है कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव और जंतुओं के लिए वर्षा का जल अमृत के समान है। यह कृषि कार्य के लिए सिंचाई, भूतल स्तर को बढ़ाने और पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले संदेश के साथ जुड़े हैं आप सभी सुरिंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, प्रतीक्षा और इनके सभी परिवार के सदस्य। रश्मि जर्ना और भरत कुमार जुड़े हैं राजकोट गुजरात से। मोहाली पंजाब से बब्बल और ओम प्रकाश मल्होत्रा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंछोर। संदेश प्राप्त हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़ से। शमशुल कमर रही, शाहीन, अदनान, फैजान, अनु, उस्मान और कलीम अंसारी गंडुडवारा से जुड़ चुके हैं आप सभी श्रोता। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। भोजपुर, चिलकाना, सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, अदीब अब्दुल, जावेद नाहिद और मोहम्मद इंतजार। रायगढ़ रोड छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश और बल्लू निषाद। इन्हीं के साथ श्रीनिका और श्रीनिजा। कमल सेन, तोषण, विनायक, सोंगा, धमतरी छत्तीसगढ़ से। मोहल्ला हलवाइयन, शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन रोजी, बिट्टू भैया, साजदारानी और हिना कौसर जुड़ चुके हैं। खरदौन मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र और राजकुमार बोड़ाना। फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, अररिया बिहार से जुड़ चुके हैं आप सभी श्रोता। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार जुड़ चुके हैं।
वैष्णव कॉलोनी सनावत से।

मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, शाकिर अलकमकत्री, अल्तमश रमेश गौड़, सादाब खत्री जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता वरंगल से आयशा, तबस्सुम और जुबेरिया। मधुबनी एक्सटेंशन से

शिवाजीनगर खंडवा से ही एक और संदेश हमें मिल चुका है, राजेश सुरेखा शुभम और अक्षय सेन का। बबुरी बाजार चंदौली से विजय सरोज जायसवाल, जमशेदपुर से मुराहू देवंती जायसवाल। भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा। पंडरिया से पवन प्रभा देवी लक्की।

जी दोस्तों, अब चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, वर्षा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि जनजीवन की आधारशिला है। यह धरती को हरियाली, किसानों को समृद्धि और मानव जीवन को राहत प्रदान करती है। साथ ही साथ हमें एक संकल्प भी लेना चाहिए, हमें जल का संरक्षण करते हुए प्रकृति के इस अनमोल उपहार का सम्मान करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके अनेकों लाभ और आनंद उठा सकें। और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS। FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 12:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम ब्रज लोक गीत का। आज इस कार्यक्रम में हमारी कलाकार हैं शालिनी शर्मा। तो आइए सुनते हैं इन्हीं के गाए कुछ ब्रज लोक गीत।

ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शालिनी शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत। लोकगीत आगे भी जारी रहेंगे, लेते हैं एक व्यावसायिक अंतराल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: So easy.
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
10: हमारी जनगणना हमारा विकास।
9: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं. सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शालिनी शर्मा के गाए ब्रज लोकगीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष फॉन डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त

0: वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात 53 अरब डॉलर मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेलु और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल K कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आज रात्रि 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। आज संध्या 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम नीदरलैंड के मध्य हिंगडिंगले लीड्स से आंखों देखा हाल। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे हमारी प्रसारण ऐप पर। अपराहन 2:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 8:00 सुनिएगा विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। इस कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे योग और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा। साथ ही साथ सुनिएगा स्वरचित काव्य पाठ के अंतर्गत मानवीय मूल्यों पर आधारित डॉक्टर नीतू गोस्वामी का

0: काव्य पाठ। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं अपराहन 1:45 पर। अपराहन 3 बजे होगा हमारी प्रथम सभा का समापन। सांध्यकालीन सभा शुरू करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण के लिए विश्व दिवस, साथ ही साथ योग अभ्यास के माध्यम से जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसी कार्यक्रम में आप सुनिएगा व्यक्तिगत विकास वार्ता, युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से अक्षय सक्सेना की बातचीत। फिल्म संगीत का आनंद भी आप युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत ले सकते हैं। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे स्वस्थ किसान समृद्ध किसान में योग की भूमिका और वृक्षारोपण से रोकें सूखे एवं मरुस्थलीकरण को। साथ ही साथ सुनिएगा भेंट वार्ता, खेत बचाओ अभियान क्रम में कैसे बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति। प्रगतिशील किसान से बातचीत करेंगे ओपी सिंह, किसान होंगे नरेंद्र कुमार शर्मा। संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज का विसुधा, प्रस्तुत करेंगे बाबूलाल शर्मा, श्याम सुहानी। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। सुहानी तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं उस्ताद असद अली खान का वीणा वादन। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: और आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देश गान।

0: अभी तक आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम वनिता लोक कुचिपलो में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

बहनों, रोज बांटिए, रोज बढ़ेगी एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अपना वनिता लोक कार्यक्रम। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। तो बहनों, वनिता लोक कार्यक्रम वनिताओं का है यानी महिलाओं का है, तो बात करते हैं हम अपनी। तो बहनों, एक अच्छी नियमित दिनचर्या से हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लगातार तनाव, उच्च रक्तचाप, नींद की समस्या या लंबे समय से चल रही किसी शारीरिक बीमारी से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारे जीवन में यानी खासतौर से महिलाओं के जीवन में योग के क्या प्रभाव होते हैं, कितना असर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं और योग किस प्रकार महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है, सशक्त करता है, इस विषय पर बात करते हैं। तो बहनों, योग हमारे जीवन में केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने की एक समग्र पद्धति है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियां

कार्यस्थल के दबाव और हार्मोनल परिवर्तन के कारण महिलाओं में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने में योग सहायक होता है। योग के दौरान गहरी श्वास, ध्यान और आसनों का अभ्यास तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन में शांति का अनुभव होता है। नियमित योग अभ्यास मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करके नकारात्मक विचारों की तीव्रता को कम करता है और भावनात्मक संतुलन को बेहतर करता है। योग हमारे शरीर के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। इससे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। योग से नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और हार्मोनल परिवर्तन से जुड़ी मानसिक चुनौतियों में भी ये हमारे लिए सहायक होता है। एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता में भी योग वृद्धि करता है। इस प्रकार योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी साधन है। तो बहनों, हम सभी को अपने जीवन में योग का स्थान अवश्य देना चाहिए, जिससे कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और सशक्त रहें।

0: बहनों, मानवीय मूल्य हमारे जीवन में सुदृढ़ बनाते हैं और हमें हमारे जीवन में सुदृढ़ बनाकर जीवन को एक नई दिशा देते हैं। मानवीय मूल्य वो नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गुण होते हैं जो कि मनुष्य के व्यवहार को सही दिशा देते हैं, समाज में सद्भाव, न्याय और सहयोग को बढ़ाते हैं। ये मूल्य व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनने, दूसरों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करने की हमें प्रेरणा देते हैं। हमें सच बोलना, ईमानदार रहना सिखाते हैं। किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुँचे, सभी के प्रति स्नेह और सद्भाव रहे, दूसरों के दुख को अपना दुख समझें और उनकी सहायता करें, सभी व्यक्तियों के अधिकारों और विचारों का आदर करें, अपने कार्यों और व्यवहार में निष्कपट हों, मिलजुल कर कार्य करें, विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और मान्यताओं को स्वीकार करें और अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। सभी के साथ निष्पक्ष और सम्मान व्यवहार करना व्यक्तित्व के विकास करते हैं। तो बहनों, मानवीय मूल्यों पर आधारित एक काव्य पाठ हम आपको सुनवाते हैं। बहुत ही सुंदर भावनात्मक पंक्तियों के रूप में पिरोया हुआ डॉक्टर नीतू गोस्वामी से।
1: सभी को सादर राधे राधे। मानव मूल्यों और सामाजिक मूल्यों पर आधारित कुछ काव्य पुष्प सुमन प्रस्तुत हैं। जीवन में अवसाद घनेरे, कैसे गीत खुशी के गाऊं, चेहरों पर हैं पड़े आवरण, किसको मन का मीत बनाऊं। नहीं दिखता कहीं उजाला, तमने कसकर डेरा डाला, पंत हो गए पथरीले सब, आँखों की पुतली पर जाला, चिंताओं के बादल उमड़े, कैसे झूमूं, कैसे नाचूं गाऊं, जीवन में अवसाद घनेरे, कैसे गीत खुशी के गाऊं। कहीं रोग से जर्जर काया, कहीं हृदय पर कोहरा छाया, कहीं वसन नहीं है तन पर, कहीं किसी का मन भर आया, पीड़ाओं की इस वस्ती से कैसे बचकर बाहर आऊं, जीवन में अवसाद घनेरे, कैसे गीत खुशी के गाऊं। क्यों तुम मुझको जान ना पाए, प्रीत मेरी पहचान ना पाए, मन में मेरे आन बसे हो, क्यों इसको तुम मान ना पाए, तुम मुझको चाहे बिसरा दो, मैं तुमको कैसे बिसराऊं, जीवन में अवसाद घनेरे, कैसे गीत खुशी के गाऊं।

जे हैं। झूठे सब किरदार हो गए, झूठे सब किरदार हो गए, बिखरे अब परिवार हो गए। कोई किसी की यहाँ सुने ना, कोई किसी की यहाँ सुने ना, रिश्ते सब लाचार हो गए। पुख्ता जो अब तक कहलाते, पुख्ता जो अब तक कहलाते, बेवस वे अखबार हो गए। ट्विटर इंस्टा और फेसबुक, ट्विटर इंस्टा और फेसबुक खबरों का बाजार हो गए। सच्चाई का पहन के चोला, सच्चाई का पहन के चोला, सूबे के सरदार हो गए। और कल तक जो महकाते आंगन, कल तक जो महकाते आंगन, फूल वही बेजार हो गए।

बहनों, अभी आपने सुना काव्य पाठ। मानवीय मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर नीतू गोस्वामी। बहनों, बिल्कुल सही बात है कि मानवीय मूल्य मानव जीवन की आधारशिला है। इसके बिना समाज में शांति, सहयोग और नैतिकता की कल्पना करना कठिन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ ही बहनों, हम महिलाओं की जिम्मेदारियां, चाहे प्राचीन समय हो या आधुनिक समय हो, और अब तो डिजिटल युग है, तो इसमें अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो बहनों, डिजिटल युग ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संचार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए नए अवसर प्रदान किए। हालांकि इनके साथ ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर अपराध और गोपनीयता के उल्लंघन जैसी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। इसलिए महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा आज एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। महिलाएं सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स और डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग करती हैं। यदि उचित सुरक्षा अपना करके उपाय को अपनाए जाएं, तो व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल बनाना और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो डिजिटल सुरक्षा के लिए अलग-अलग खातों के लिए अलग-अलग पासवर्ड, और पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्हों का प्रयोग करके सुरक्षा की जा सकती है। अपना मोबाइल नंबर, पता, बैंक विवरण जैसी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करनी चाहिए। नियमित रूप से अपनी गोपनीयता की जांच करते रहें। संदिग्ध लिंक और संदेशों से सावधान रहें। इसके साथ साथ केवल विश्वसनीय लोगों को ही अपना मित्र बनाएं। आपत्तिजनक गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें। साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करके परिवार और अपने बच्चों को भी सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जागरूक करें। डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा केवल तकनीकी उपायों तक सीमित नहीं, बल्कि जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और

0: कानूनी अधिकारों की समझ भी उतनी ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अपनी गोपनीयता, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा कर सकती हैं। बहनों, युग कोई भी हो, महिलाएं हमेशा माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में हमेशा सबके साथ हैं।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा International Airport, where dreams take off.

0: तो बहनों, वनता लोक कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको बता दें कुछ टिप्स। तो बहनों, गर्मियों का समय है और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दिन भर में कम से कम 8-10 गिलास पानी ज़रूर पिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इसके साथ ही दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ करिए। हल्की सी सैर ताजी हवा में 20 मिनट के लिए कम से कम धीरे धीरे टहलना अपनी आदत बना लीजिए और प्राणायाम यानी सांस की कसरत ज़रूर करें। इसके बाद पौष्टिक नाश्ता दलिया, ओट्स या पोहा खाएं, साथ में भीगे बादाम ज़रूर लें। दोपहर का समय पोषण और आराम से भरपूर होता है। इसके लिए आप अपने खाने में दाल, रोटी, हरी सब्जियां, सलाद और दही लेकर के अपने दोपहर के आहार को पोषण भरपूर दे सकते हैं। इसके बाद ही शाम के समय हल्का सा नाश्ता ग्रीन टी, सूप या भुने हुए मखाने लें। इसके साथ बहनों, उम्मीद करती हूँ कि ये आज के घरेलू टिप्स आपको पसंद आए होंगे। और बहनों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्कार।
1: अभी तक बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी दीप्ति शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और अनु मलिक की आवाजों में फिल्म घातक से। इस गीत को लिखा अनु मलिक ने, संगीत आर डी बर्मन और अनु मलिक का था। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे पय्यम अब्दुल्ला, इरशाद कामिल और ए आर रहमान की आवाज़ों में। गीत रचना इरशाद कामिल की थी, संगीत ए आर रहमान का।

0: G7 summit in France, Mr. Trump said Israel was fighting Hezbollah too long and that too many people are being killed. India has delivered another 5 tons of essential medicines to Kabul. The External Affairs Ministry said that it reaffirms the country's enduring commitment to providing humanitarian assistance for the well-being of the people of Afghanistan. In cricket, India was 70 for 1 in 8.1 overs against Afghanistan on the second one-day international of the three-match series in Lucknow. Earlier, Afghanistan won the toss and elected to field first. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.3% up in the afternoon session today. The Sensex rose 225 points to 77,033, while the Nifty advanced 66 points to 24,056 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. G7 leaders adopt declarations on global stability, security cooperation and efforts to counter transnational organized crime. Prime Minister Narendra Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France, to reach Paris this evening as part of his visit to France. Defence Minister Rajnath Singh says India's sovereignty non-negotiable, cites surgical strikes, Balakot and Operation Sindoor as decisive actions against terrorism. India's defence production soars to record 1.78 lakh crore rupees in financial year 2025-26. Surges 110% since 2020-21. Security forces intensify enforcement and counter-insurgency operations across Manipur. 3 militants arrested, 26 illegal bunkers destroyed. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and Afghanistan underway in Lucknow. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा

0: होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक ये दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय

0: अंग जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
1: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
2: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षो में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
4: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना

0: हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में

0: 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: लीजिए प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि यह झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की

0: झील है। लेकिन श्रोताओ, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। यह एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।

0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे।
2: ओह।
1: इसके कारण हिंदू और मुसलमान

0: दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
1: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
1: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
2: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
3: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे ऐसा चल नहीं सकता,
2: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल
5: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद,
9: मंगल पांडे जिंदाबाद,
10: इंकलाब
11: जिंदाबाद,
10: इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
12: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
3: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और

0: मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
1: अरेस्ट करो,
2: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
3: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: Tum, bande ko, ti ko na mangta hai. Durant, hospital bhejo.
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूं।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांति वीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भईल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भईल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भईल, जननी के भेंट परान भईल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भेल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त

0: होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशी का।
2: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
3: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
4: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
3: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
4: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
3: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
4: अच्छा माँ।
5: माँ।
4: लो, देवेंद्र भी आ गया।
5: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
3: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
4: ठीक है माँ।
5: नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
4: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
5: ये देखो दीदी, ये मारा।
4: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
5: अरे ये मारा।
4: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
5: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
4: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
5: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
3: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
4: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
6: हमें अंदर आने दो।
4: अरे क्यों?
7: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
4: क्या काम है? ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
6: लड़की हट।
4: माँ,
6: ये चाकू देख रही है ना?
7: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
4: अरे
7: मैं इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
4: हट
7: रास्ते से।
4: क्या हुआ? देखो जल्दी
3: आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
6: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
4: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
6: ये चाकू देख रही है ना?
4: छोड़ दो,
3: मुझे मत मारो।
4: कुछ मत करो।
3: चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है।
7: ये बहाने बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
3: अरे, अरे मेरे बात को छोड़ो।
4: मेरी माँ को छोड़ो।
6: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
7: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
8: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
4: देवेंद्र।
5: हाँ दीदी।
4: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
5: अच्छा, हाँ।
4: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
5: अच्छा।
4: हेलो।
9: हाँ बेटा, बोलो।
4: पापा।
9: हाँ
4: पापा।
9: हाँ बोलो बेटा।
4: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
9: कौन घुसा है?
4: माँ को बहुत मार रहे हैं।
9: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, है? ठीक है?
4: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
5: अच्छा।

0: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशू यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
1: अरे कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को।
2: वाह वाह वाह,
1: कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
3: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
1: देखो ना, सबकी जान बचाई
3: मेरी बच्ची।
0: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: अभी तक आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
8: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
7: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराहन के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे अपने ढेरों कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। युवा साथी सुनेंगे, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का दैनिक कार्यक्रम युव वाणी।

कार्यक्रम युवावाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। जी हाँ, आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण के लिए आज विश्व दिवस हम मनाते हैं। जी हाँ, आज बात करें हम आपसे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस को लेकर, क्या प्रासंगिकता है आज के इस दिन में। जी हाँ, आज है 17 जून वर्ष 2026, और आज इस जो दिन हम मना रहे हैं, इसकी जो थीम है आज वर्ष 2026 के लिए, इस दिवस का जो वैश्विक विषय है, जो थीम है, वो है रेजिलेंस रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रिस्टोर। जी हाँ, यानी कि हम ऐसे जो जगह है जो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि वहाँ पर हमारे कम वर्षा के होने से, या कम पानी होने से, या खेती न होने से, या हरियाली के चले जाने से, हमारे वृक्षों के वहाँ न होने से, धीरे धीरे ज़मीन का जो मरुस्थलीकरण हो रहा है, या आप कह सकते हो जो हमारी जो ज़मीन है, जहाँ उपजाऊ थी, जहाँ कभी हरियाली हुआ करती थी, पेड़ होते थे, फसलें होती थी, आज धीरे धीरे मरुस्थल की ओर जा रहे हैं। क्या ऐसे कारण हैं, क्यों हमारा जो जल स्तर है वो दिन पर दिन नीचे की ओर जा रहा है, आप कह सकते हैं, तो क्या ऐसे मूलभूत कारण हैं, हमें उन सब कारणों पर आज गौर करना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में इस दिन की शुरुआत की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था साथियों, कि वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में घटते जल संसाधनों, मिट्टी के क्षरण को रोकना। जी हाँ, हम जानते हैं हमारे किसान भाई और जो भी लोग जुड़े हैं पेड़ों से संबंध रखते हैं, या प्राकृतिक जो हमारी संपदा है उससे संबंध रखते हैं, जानते हैं कि जो भूमि की ऊपरी सतह होती है, वो उसमें उर्वरता होती है, वो फर्टिलाइज हो सकते हैं, उसमें जो भी चीज़ आप बोएंगे उसमें क्षमता होती है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो धरती की उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, और वहाँ पर चीज़ें उगती नहीं हैं। इसलिए हमको जो ऊपरी सतह है उसको बड़े संभालना पड़ता है, उसका संरक्षण करना पड़ता है, वर्षा से भी संरक्षण करना पड़ता है, इस तरह का प्रयास करना पड़ता है कि वो वर्षा से भी या वृक्षारोपणों के माध्यम से भी हमारा जो भूमि का जो उपजाऊ क्षेत्र है वो बना रहे, और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो, उसकी जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, हमारी जो भूमि का स्वास्थ्य हेल्थ है उसकी, वो और बेहतर दिन पर दिन होती जाए। यही विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस की प्रासंगिकता है, उसका मुख्य बिंदु है कि धीरे धीरे हम लोगों में जागरूकता आए और अपनी इस धरा को, इसकी जो नैसर्गिक जो सौंदर्य है उस पर हमारा विचार होना चाहिए। और क्या करें इसके लिए, जी हाँ, इसके लिए ये करें कि हमारे जो जल संसाधन हैं, उन जल संसाधनों का हम उचित उपयोग करें, और ताकि ये जो कहते हैं कि जो जो समस्या है तभी इसका समाधान निकल पाएगा। शुष्क इलाकों में पानी के संरक्षण, पेड़ पौधे लगाएं, है ना, तो आप कह सकते हैं, और टिकाऊ जो हमारी जो कृषि, जो हमारी टेक्निक्स हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग का उद्देश्य जो है वो हमें अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और UNCCD की आधिकारिक जो आप उनकी वेबसाइट्स हैं उससे, और अधिक जिनसे संबंध में आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या करें आज जो ये समस्या है दिन पर दिन जो बढ़ रही है भूमि की, उसको हम कैसे निपटाएं, ताकि हमारे वो क्षेत्र भी जहाँ पर, जिन्हें बंजर के रूप में हम जानते हैं, जहाँ पर कम, तो धीरे धीरे उस ज़मीन पर भी हम अपने प्राकृतिक जो अपनी जो जो खाद हैं उनको इस्तेमाल करके धीरे धीरे वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें अपनाएं, ताकि वो ज़मीन भी उपजाऊ हो और वो भी कृषि योग्य भूमि बन सके। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि आज का जो दिन है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस, जी हाँ, जिसे 17 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं, उसकी सार्थकता हो पाएगी, उसकी जो प्रासंगिकता है वो जन जन तक पहुँच पाएगी।

और दोस्तों, आज चर्चा का एक और विषय है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपसे योग अभ्यास के माध्यम से जोड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखना और कैसे हम अपने स्वास्थ्य को योग के माध्यम से बेहतर बनाएं। कहते भी हैं, और आपने कहीं ना कहीं संदेश को ज़रूर पढ़ा होगा कि योग भगाए रोग। सरल भाषा में सहजता के साथ इस संदेश को समझा जा सकता है कि जिस तरह से हमारी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली पर यदि हम थोड़ा ध्यान दें और ये महसूस करें कि हमारा जो योग है वो क्या है। योग है आपको व्यवस्थित करने का एक माध्यम। जी हाँ, जीवन शैली जो आप अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जीते हैं, और उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हैं कि कभी किसी चीज़ के लिए वो समय नहीं दे पाते जितना कि उस चीज़ को देना चाहिए, और इस आपाधापी में कहीं ना कहीं वो चीज़ें अक्सर छूट जाती हैं जिनकी प्राथमिकता आपके जीवन में सबसे पहले होनी चाहिए। और ऐसी वो सारी चीज़ें जिनकी प्राथमिकता पहले होती है, जिनकी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए, उन चीज़ों को अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं अगर हम डायरी में लिख लें, कहीं ना कहीं अगर हम व्यवस्थित होकर जीवन जिएं कि हम सुबह उठें और सबसे पहले हम अपने शरीर को समझें, थोड़ा शांत बैठें, दिन को व्यवस्थित करें और इस तरह का पूरे के पूरे दिन का एक लेआउट बनाएं, पूरे के पूरे दिन का इस तरह का हमारा एजेंडा हो जिसमें हर चीज़ को उसकी प्राथमिकता के अनुसार हम व्यवस्थित कर पाएँ, तो हम पाएंगे इसमें हमारी जो योग है वो उसकी बहुत अच्छी भूमिका है। और बात करें अगर हम योग की, तो योग में सारी की सारी चीज़ें, आहार, विहार,

और आपके आसन, प्राणायाम और सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करती हैं और स्वास्थ्य प्रदान करती हैं और आरोग्यता की ओर आपको लेकर के जाती हैं। और बात करें अगर हम जोड़ों की, जी हाँ, अक्सर हम जानते हैं हमारे जो शरीर में जिस तरह से धीरे धीरे शरीर की उम्र बढ़ती है और बॉडी में से आप कह सकते हो जो एक लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही होती है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी जब कम होती है तो आप पाते हैं कि उठने बैठने में जैसे ही लोग उम्र दराज होने लगते हैं, उनके कहीं आप देखते हैं उनके घुटनों में तकलीफ़ है या कहीं और हड्डियों में कहीं किसी प्रकार का दर्द है, तो कभी ये कैल्शियम की कमी से होता है, कभी हमारे खान पीने का जो हमारा जो हमारी जो भोजन है उसमें हमारा अव्यवस्थित होना, हम कभी किसी समय भोजन कर रहे होते हैं, कभी किसी समय भोजन कर रहे होते हैं, या हमारी थाली में पोषक तत्वों की जो है कमी होती है, संतुलित आहार की हम जो है अनदेखी करते हैं। छोटी छोटी सी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको अगर हम दूर करें तो हम पाएंगे कि हम उन सब चीज़ों को अपनाने लगेंगे जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जिसे आप कह सकते हो जो पैकेज्ड फूड है, जो पैकेट में आता है, उससे हम थोड़ा परहेज़ करें या फास्ट फूड से हम परहेज़ करें। तो जो चीज़ें हैं, हरी सब्जियां हैं, फल हैं मौसम के, उनको अपने आहार में हम शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यायाम की अगर बात करें योग के माध्यम से, या जोड़ों का हमारा स्वास्थ्य जो हमने आज अपनी चर्चा में लिया है बिंदु, तो किस तरह से वो हम उसका लाभ ले सकते हैं। जी हाँ, बालासन यानी कि चाइल्ड पोज, ये कूल हों जांघों और टखनों के जोड़ों के जो तनाव को दूर करने में मदद करता है। इस आसन का हम इस आसन से हम लाभ ले सकते हैं। और सेतु बंध यानी ब्रिज पोज कैसे हैं, सेतु बंध आसन है जिसमें घुटनों, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से को मजबूत मिलती है, और इसके अगर हम करें तो मांसपेशियों में ताकत आती है। और बहुत कॉमन एक आसन है भुजंगासन जिसको हम कहते हैं, जिसमें छाती, कंधे और इसको आप पेट के बल लेट के धीरे धीरे अपने जैसे सांस लेने के साथ साथ जैसे आप अपना हम पोज बनाते हैं, आप देख सकते हैं कई सोशल मीडिया के माध्यम से या कहीं आप साहित्य के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह इसको करना है। तो प्रशिक्षक जो है उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। और योग के ऐसे आसन है, भुजंगासन हो गया, वीरभद्रासन है, बालासन, सेतु बंधासन, तो इस तरह के आसनों का प्रयोग करके आप घुटनों के दर्द या कमर के दर्द या पीठ के दर्द से आप राहत पा सकते हैं। और प्रयास सिर्फ इतना कि हमें 2 कदम चलना होगा योग की ओर।

0: और इस गीत ने दिया है एक संदेश हम सब में, एक नया संदेश इस तरह का कि हम अपने शरीर की ऊर्जा को पहचाने और उस ऊर्जा को केंद्रित करते हुए किसी खास फोकस पर ले जाकर हम ऐसा प्रयास करें कि हम वो चीज़ें करें जिसमें हम अपना भी हित कर रहे हों और अपने परिवार का, समाज का और देश का हित कर रहे हों। बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की आवश्यकता है इस गीत के साथ। कार्यक्रम में बातें आपसे और भी इस व्यावसायिक अंतराल के बाद।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: और सुनते हैं कार्यक्रम में अब व्यक्तिगत विकास वार्ता। जी हाँ, युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से बातचीत कर रही है अक्षया सक्सेना। आई सुनते हैं ये बातचीत।
5: दोस्तों, हम हर बार युवा कलाकारों से भेंट करते हैं और आपके लिए नए नए क्षेत्र में निपुण युवा कलाकारों से मिलवाते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही युवा कलाकार हैं जो पेंटिंग के क्षेत्र में निपुण हैं। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए।
6: जी, मेरा नाम नीलम अग्रवाल है और मैं बांके बिहारी कॉलोनी वृंदावन में रहती हूँ।
5: जी, बहुत अच्छी बात है। नीलम जी, आप ये बताइए कि आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता में क्या किया हुआ है?
6: मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता में डबल एमकॉम किया हुआ है।
5: जी, तो किस ग्रुप से आपने एमकॉम किया है?
6: मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से किया हुआ है और मैंने इकोनॉमिक्स ग्रुप से किया हुआ है और मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी सीखा हुआ है 1 ईयर का।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है नीलम जी। वैसे तो ये प्रश्न महिलाओं से ज्यादातर नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, आपकी उम्र क्या है?
6: जी, मेरी उम्र 28 है अभी।
5: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आपने कौन सी कला सीखी है, आप कौन सी कला में सबसे ज्यादा निपुण हैं? जैसे आपने संगीत, डांस, पेंटिंग या क्या सीखा हुआ है?
6: मैंने पेंटिंग सीखी हुई है जो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे डांस का भी थोड़ा बहुत शौक है और मैं संगीत भी गुनगुना ही लेती हूँ कभी कभी।
5: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मल्टी टैलेंटेड युवा कलाकार हैं, आपको हर क्षेत्र में अलग अलग रुचि है। तो सबसे ज़्यादा रुचि आपकी पेंटिंग में है ना? तो आप ये बताइए कि पेंटिंग के क्षेत्र में आपकी ये रुचि किस तरह से उत्पन्न हुई?
6: जी, सच कहूँ तो ये बस यही समझ लीजिए कि गॉड गिफ्ट है, जो कि बचपन से ही था कि पेंटिंग करूँ, किसी चित्र को देखकर कुछ बनाऊँ। जो भी चित्र सामने आता था उसको देखकर मैं बनाने लग जाती थी, तो ये गॉड गिफ्ट ही है। इसमें ये नहीं है कि किसी के कहने पर ही मुझे रुचि हुई है, बस शुरू से रुचि अपने अंदर खुद ही।
5: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बचपन से इस क्षेत्र में रुचि है। तो आप ये बताइए, आपने कहीं किसी विद्यालय से या कहीं कोई प्रशिक्षण लेकर किया है, कोई कोर्स किया है, या बस अपनी मर्जी से ऐसे ही पेंटिंग करते हैं?
6: सच कहूँ तो ये है कि बचपन में मैं शुरू में जो भी चित्र सामने आता था उसको देखकर मैं बनाने लग जाती थी, फिर मैंने धीरे धीरे उसका प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया।
5: जी,
6: फिर जैसे कि मैंने स्टोन पेंटिंग, निप पेंटिंग और ये ऑयल पेंटिंग है, फोआ पेंटिंग है, इस तरह की पेंटिंग सीखने का फिर मैंने प्रशिक्षण लिया।
5: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रशिक्षण भी लिया है और आपका खुद का भी बहुत ज्यादा लगाव है पेंटिंग के क्षेत्र में, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आप ड्राइंग कला के क्षेत्र में क्या क्या डिजाइन और क्या क्या किस तरह के चित्र बना सकती हैं, बताइए।
6: ड्राइंग कला के क्षेत्र में जैसे मैं निप पेंटिंग बना लेती हूँ, स्टोन पेंटिंग बना लेती हूँ और ये पोहा पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है और फैब्रिक पेंटिंग है, इस तरह की काफी पेंटिंग वगैरह बना लेती हूँ मैं।
5: अच्छा, तो आप ये बताइए, आप किसी जैसे आजकल होते हैं ना जीवित आदमी की तस्वीर बनाते हैं या पशु पक्षी की या

0: प्राकृतिक दृश्य देखकर हूबहू बना सकती हैं क्या आप?
1: हाँ जी, अगर मैं कोशिश करूँ और पूरी तरीके से उसमें मन लगाऊँ बनाने में, तो मैं हूबहू बना सकती हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है ये, तो मतलब कि आपके सामने कोई भी अगर कोई दृश्य हो या कुछ भी हो तो आप उसको एक पेपर पे या किसी भी चीज पर उतार सकती हैं।
1: हाँ,
0: सामने,
1: अगर
0: है
1: मैं
0: ना?
1: कोशिश करूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से बना सकती हूँ और उतार भी सकती हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए, आप इसके लिए पहले चित्र देखती हैं या उसे अपने सामने रखकर बनाती हैं या फिर बस अपने दिमाग में इमेजिन करके और चित्र बनाती हैं?
1: सबसे पहले तो मैं चित्र को ध्यान से देखती हूँ,
0: जी
1: फिर उसके सामने रखकर फिर मैं बनाती हूँ। अगर मुझे कुछ मतलब उसमें लगता है कि मुझे दोबारा से उसको देखना है या उसको समझना है, तो मैं उसको दोबारा से देखने या समझने की कोशिश करती हूँ फिर बनाने के लिए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: पूरी तरीके से उसमें मन लगाती हूँ कि ये मुझे चित्र पूरा करना है इस तरीके से।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: अपना
0: बात है
1: मन
0: कि आप
1: मतलब
0: पहले,
1: कहीं और नहीं लगाती हूँ, इधर उधर मन नहीं लगाती अपना।
0: जी मतलब आप एक जगह कॉन्सेंट्रेशन बनाती हैं अपना, पूरा
1: हाँ
0: ध्यान लगाती हैं और उसके
1: हाँ
0: बाद वो
1: जी
0: चित्र वैसा का वैसा ही बना सकती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ड्राइंग कला के अतिरिक्त आप और कौन कौन सी कला जानती हैं, जैसे संगीत, भजन, डांस वगैरह? हमारे श्रोताओं को कोई भजन वगैरह कुछ गाकर सुनाएंगी आप?
1: हाँ, वैसे तो मेरी रुचि भजन में भी है, डांस में भी है, सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी रुचि है, अखबारों में लिखने में भी रुचि है मेरी,
0: जी
1: और
0: तो
1: भजन
0: अच्छी।
1: गाने की तो फिर
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी आपसे भजन जरूर सुनेंगे नीलम जी। अच्छा, एक
1: हाँ
0: सवाल और बताइए कि ड्राइंग बनाते समय यदि कोई गलती हो जाती है या कोई चित्र ठीक प्रकार से नहीं बनता, तो पेंटिंग फिर दोबारा से करती है या उसी को मिटाकर उसी में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके ठीक करती है?
1: हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ गलती हो जाती है बनाते बनाते, फिर मैं उसको जहाँ से गलती होती है वहीं से उसको मिटार के दोबारा से बना देती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ही गलती हुई है फिर मैं उसको पूरे चित्र को हटाकर फिर दोबारा से उसका स्केच दोबारा बनाती हूँ
0: सही
1: फिर।
0: बात है, चाहे उसको ठीक करके बनाए चाहे फिर
1: हाँ
0: दोबारा से बनाए, जो
1: हाँ
0: मेन चीज है वो ये है कि पेंटिंग बहुत ही
1: बहुत
0: खूबसूरत होनी
1: खूबसूरत बननी
0: चाहिए।
1: चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े बनाने के
0: जी
1: लिए, और
0: अच्छा,
1: कितना भी मुझे चाहे समय देना पड़े।
0: तो अब आप ये बताइए कि पेंटिंग डिजाइन के क्षेत्र में या पेंटिंग कार्य के लिए कौन कौन सा सामान होता है या कौन कौन से यंत्र होते हैं जिनको जुटाना पड़ता है, जिनके बिना पेंटिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं होता?
1: पेंटिंग के लिए तो मेन यही कलर वगैरह हैं और कागज़ हैं, ब्रश
0: जी
1: है, यही
0: जी
1: सब चीज़ें मेन होती हैं जो कि हमारे पास जरूर होनी चाहिए, इसके बिना तो पेंटिंग आपकी बनी नहीं सकती है।
0: जी
1: और जैसे अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग होती हैं, जैसे कि निब पेंटिंग है, निब पेंटिंग के
0: जी
1: लिए निब होनी चाहिए,
0: जी
1: कलर होने चाहिए, और जैसे कि ऑयल पेंटिंग है जो कि ग्लास पर बनती है, शीशे पर बनती है, तो
0: जी
1: उसके लिए ऑयल कलर होने चाहिए। इस तरह से स्टोन पेंटिंग है, स्टोन पेंटिंग के लिए स्टोन, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, कलर्ड स्टोन आते
0: जी
1: हैं बाजार में, वो वे होने चाहिए। इस तरीके से जिस प्रकार की हम पेंटिंग बनाते हैं उस प्रकार की पेंटिंग के लिए उसी प्रकार का हमारे पास सामान होना चाहिए।
0: जी अच्छा, आपने अभी जैसे पहले बात की थी अभी पॉट पेंटिंग के बारे में, तो पॉट पेंटिंग में ये बताइए, जैसे क्ले मिट्टी से पेंटिंग बनती है तो उसके लिए मिट्टी या जैसे आप बता रहे निब वगैरह जो भी जरूरी सामान होता है वो सब इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाता है या फिर कुछ?
1: मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो मिल ही जाता है मार्केट में।
0: अच्छा, मतलब आप पहले पेंटिंग बनाने से पहले जिस भी तरह की पेंटिंग बनानी है तो जरूरी सामान बाजार से जाके एक लिस्ट बना के फिर सारी चीजें
1: हाँ
0: परचेज करते हैं पहले, उसके बाद में फिर उसी के
1: हाँ जो भी मुझे
0: अकॉर्डिंग आप
1: पेंटिंग
0: अप्लाई
1: बनानी
0: करते
1: हाँ
0: हैं।
1: जो भी पेंटिंग मुझे बनानी होती है उसको मैं पहले लिख लेती हूँ कागज में कि मुझे ये सामान चाहिए, और फिर मार्केट से सारा सामान लाने के बाद उसके बाद मैं पेंटिंग बनाना शुरू करती हूँ, जिससे कि मुझे बीच में कोई दिक्कत ना हो कि मुझे ये सामान लेने दोबारा जाना है बीच में ही पेंटिंग अपनी छोड़कर।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो, एक आध कुछ रह जाए तो बाद में उसको फिर लाया जा सकता है ना,
1: हाँ
0: ऐसी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है।
1: हाँ हाँ
0: अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस कला के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई जोखिम होता है या फिर आसानी से बस हो जाता है, कोई किसी तरह का नुकसान वगैरह भी हो सकता है क्या?
1: हाँ ये है कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तब थोड़ा जोखिम का भी डर रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास आकर बैठ गया है और उसके कोई कलर उसके हाथ में लग गया, तो फिर इस प्रकार से इन सब जोखिमों का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर उसकी आँख में कोई कलर ना घुस जाए या फिर बच्चा ब्रश को उठाकर कहीं अपनी आँख में ना दे दे। इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हम पेंटिंग कर रहे हैं उस समय पर हमारे पास कोई बच्चा तो नहीं बैठा, या
0: जी
1: फिर हमारी जो ब्रश है वे हमारी कहीं आँख में ही ना चला जाए, हमारी नाक
0: जी
1: में ना चला जाए, इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही, और ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कलर
1: हाँ
0: इस्तेमाल करना
1: जी
0: चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना खराब तरह के कलर या फिर
1: हाँ
0: सस्ते के चक्कर
1: हाँ
0: में
1: ऐसा
0: हम।
1: होता है कि क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में कुछ लोग घटिया क्वालिटी के कलर ले आते हैं,
0: जी
1: उससे क्या है कि अगर किसी बच्चे के हाथ पर ही वो कलर लग जाता है तो फिर
0: जी
1: उसकी त्वचा जो है खराब होने का डर रहता है, इसलिए हमें बढ़िया क्वालिटी के कलर ही लाकर पेंटिंग करनी चाहिए।
0: अच्छा, और ये सारे जोखिमों से बचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि

0: ग्लव्स पहनकर या फिर अपने फेस को किसी चीज से किसी तरह से पैक करके फिर आराम से पेंटिंग बनाए, जिससे कि जो भी उसके दुष्प्रभाव होंगे वो हमारे
1: हाँ,
0: शरीर पर नहीं होंगे
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ ये भी बात सही है। और हम थोड़ा ऑयल भी अपने हाथों पर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर कोई कलर हमारे हाथ में लग भी जाए तो वो हमारी त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल लेकर भी अपने हाथ पर लगा सकते हैं, दोनों हाथों
0: जी
1: पर।
0: हाँ, आपने तो ये बहुत अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं को दिए हैं। आप भी श्रोता इस चीज का ध्यान रखें और हमेशा पेंटिंग बनाते समय ये सारी सावधानियां जो हैं ये बरतें। अच्छा, आप ये बताइए पेंटिंग कला को सीखने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लग जाता है, और इस कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भविष्य में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं या फिर नहीं?
1: जी टाइम की तो ये बात है कि अगर हम कंप्यूटर के द्वारा सीखेंगे, पेंटिंग सीखेंगे
0: जी
1: या हम वेब डिजाइन का कोर्स करेंगे तो वे पूरा 1 ईयर का होता है, लेकिन सीखने के ऊपर है, अगर कोई चाहे तो उसको 6 मंथ में भी पूरा कर सकता है। और जैसे कि स्टोन पेंटिंग है, फैब्रिक पेंटिंग है, निप पेंटिंग है, अगर हम इनको करते हैं तो ये पूरे 10 दिन में हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी में ज़्यादा लगन है, ज़्यादा ही उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो
0: जी
1: वो चाहे तो 5 दिन में भी उसको पूरा कर सकता है।
0: जी
1: इसीलिए
0: बिल्कुल
1: ये तो इंसान के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है कि
0: जी
1: उसमें लगन कितनी है।
0: जी बिल्कुल सही है। मतलब लगन से कोई भी काम जो होता है वो मुश्किल नहीं
1: हाँ
0: होता।
1: जी
0: अगर कोई भी बंदा पूरी मेहनत से पूरी लगन के साथ कोई काम करे या पेंटिंग सीखने की कोशिश करे तो वो बहुत जल्दी ही
1: हाँ,
0: उसको
1: जल्दी सीख
0: अपने
1: सकता
0: जीवन
1: है।
0: में शामिल कर सकता है और
1: हाँ जी
0: पेंटिंग बना सकता है।
1: हाँ जी
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए युवा श्रोताओं के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी जो पेंटिंग या और कोई कलाएं सीखना चाहते हैं?
1: जी मैं तो युवा श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वे जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, या वे पेंटिंग सीखें, या वे बिजनेस में आगे जा रहे हैं, या फिर वे सर्विस में आगे जा रहे हैं, वे जो भी
0: जी
1: काम करें सब लगन से और मेहनत से करें। वे ये सोच लें कि मुझे ये काम अपना पूरा करना ही है, चाहे इसमें मुझे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन सारी बाधाओं को और सारी विपत्तियों को तोड़कर उसे आगे बढ़ने की अगर उसमें हिम्मत होगी तो उस व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता है।
0: जी बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात आपने कही है कि अगर मेहनत करने का इंसान के अंदर ध्येय होगा और पूरी लगन के साथ वो कोई भी काम करेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो नीलम जी आप ये बताइए कि बहुत सारी नई नई तरह की पेंटिंग्स भी आती रहती हैं, तो इस टाइम जो ट्रेंड में चल रहा है सबसे ज़्यादा आजकल क्या है जो युवाओं को आकर्षित करता है अपनी, और किस तरह की नई पेंटिंग आज के समय में प्रचलन में है?
1: नई पेंटिंग में तो ये है कि जैसे पोवा पेंटिंग भी है
0: अच्छा,
1: और ये ग्लास पेंटिंग वगैरह हैं, इस तरह की पेंटिंगें होती हैं।
0: खूब, बहुत खूब भजन आपने हमको गाकर सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी के साथ अब इस भेंट वार्ता को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को पेंटिंग के बारे में जानकारी दी और इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ भेंट वार्ता में थी नीलम जी और संचालन कर रही थी मैं अक्षया सक्सेना।
2: इस बातचीत को अभी आपने सुना, व्यक्तिगत विकास वार्ता के क्रम में युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से बात करी अक्षया सक्सेना ने। और इसी के साथ आज का युवाणी अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपने दोस्त अनुराग पांडे को। नमस्कार।

युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। श्री मोदी ने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली

0: संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसके अलावा श्री मोदी सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक कार्य सत्र में भी शामिल हुए। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्ज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि बातचीत बहुत लाभकारी रही। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, अर्थव्यवस्था, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के पर भी बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें लगी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेट्टेबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेट्टेबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। चर्चा का विषय वृक्षारोपण से रोकें सूखे एवं मरुस्थलीकरण को और स्वस्थ किसान समृद्ध किसान में योग की भूमिका। इस विषय पर रहेंगी आज की चर्चा। कार्यक्रम लेकर आएंगी आपके बीच ममता रानी, जिसमें आज आप सुनेंगे खेत बचाओ अभियान के क्रम में भेंट वार्ता, कैसे बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति, प्रगतिशील किसान से बातचीत सुनेंगे आप। आज नरेंद्र कुमार शर्मा से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम नीदरलैंड के मध्य हेडिंग्ले लीड्स से आंखों देखा हाल। समय संध्या 6:30 जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 का समय ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का, जिसमें आज आप सुनेंगे बाबूलाल शर्मा ब्रजवासी से ब्रज काव्य सुधा क्रम में काव्य पाठ।

7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप सुन सकेंगे अपनी ही फरमाइश के फिल्मी नगमे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे मैं व्हाट्सएप। हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9412225575। 9412225575 पर आप भेजेंगे हमें व्हाट्सएप संदेश। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात्रि 8:35 पर आप सुनेंगे संदेश स्वर में देशगान और समाचार संध्या। रात्रि 8:45 पर न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे दोनों बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। श्रोता सुनेंगे एक बार फिर से फिल्म संगीत रात्रि 9:15 पर सुहाने तराने क्रम में। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद एक बार फिर से रात्रि 10 बजे लेंगे श्रोता। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार उस्ताद असद अली खां, आप सुनेंगे इनसे वीणा पर बजाया राग पूरिया धनाश्री। तो ये था विवरण हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देश गान FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम ले रही के आ रही हैं आपके बीच ममता रानी।

कार्यक्रम सुनवे वारे सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैयाओं, वृक्ष धरा को भूषण है, बिल्कुल सही बात है, और करते दूर प्रदूषण है। हाँ भैया, वृक्ष के बिना जीवन असंभव है। खेती को बचाना है और अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना है ना, वाकेले हमें वृक्षन को लगाना होगा और बचाना होगा। मृदा को स्वास्थ्य बढ़िया रखे हैं, वृक्ष जरूर लगाएं और भरपूर मात्रा में लगाएं। छायादार फलदार वृक्ष लगाए के पृथ्वी के मरुस्थलीयकरण को हम दूर कर सके हैं। हरियाली बढ़ाओ जाते हमारो पर्यावरण संरक्षण बढ़े है, धरती को उपजाऊपन बढ़े है। पौधान की जो मोटी मोटी जड़ें हैं ना, वो धरती के उपजाऊपन को बांध रखे हैं, और जो उनकी पत्ती टहनी गिर जावे हैं, सड़ जाए हैं, गल जाए हैं, और माटी में ही वो खाद बन के बाकी उपजाऊपन को बढ़ावे हैं और माटी को पोषक तत्व प्रदान करे हैं। वृक्षन से माटी को कटाव कम होवे है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े है। माटी को मरुस्थलीयकरण घटे, बड़े काम के हते वृक्ष। किसान भैयाओं, पेड़ काटवे के स्थान पे उगाइवे की ज़्यादा ध्यान देव, लग जाओ जा कार्यक्रम को रूप दे देव कार्यक्रम को, ठीक है। बेकार पड़ी खाली जमीन घर के पिछवाड़े आसपास सभी जगह आप वृक्ष लगाएं, हरियाली बढ़ेगी और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वातावरण में बढ़ेगी, शुद्ध वायु हमें और आपको जीवे के लिए मिलेगी। धरती के उपजाऊपन और मृदा के स्वास्थ्य को हम सुधार कर सके हैं। जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे वहाँ बारिश भी ज़्यादा होगी, और जब बारिश ज़्यादा होएगी यानी कि हमें सिंचाई के लिए, हमारे किसान भैयन के लिए पानी की आवश्यकता है का है, जो पड़े है ना बा में हमें तो बहुत ही बचत है जाएगी, खर्चा कम है जाएगा ना। और मथुरा वृंदावन तो हमारा ब्रज धाम निरालो है, ऐसो ही है या में कि ब्रज वृंदावन धाम है, ये तो हृदय कमल है। तो ऐसो ही सुने हैं लोकगीत।

0: अंशुना सक्सेना को गाए हुए सुनियो आपने ये लोकगीत। हाँ, वृंदावन धाम, जहाँ पे वृंदा, तुलसा महारानी और कदम्ब की खुशबू तो हमारे मन को मोह लिए ना। अरे खेती की तो बात है ही, हरियाली की बात है और चाहे बचावे की बात है, काहे की खेत बचाओ अभियान क्रम की बात करें भैयाओ, तो जामे बड़े काम की बात है। कैसी के जो है काहे, हम अपनी जो भूमि है, किसान भैयन के खेत की जो माटी है ना, वाकी उर्वरा शक्ति कैसे हम बढ़ाएं और कैसे बचाएं। लागत ज्यादा ना आवे, जीव ध्यान रखो जाए जा बात में, पूरा ध्यान रखोगे तो भैया दिव्यांगे जानकारी सुनियो, बातचीत पूरी सुननी है। नरेंद्र कुमार शर्मा प्रगतिशील किसान और बातचीत है ओपी सिंह की, कैसे बढ़ावे भूमि की उर्वरा शक्ति।
1: किसान भाइयों, आजकल एक अभियान चल रहा है खेत बचाने का। खेत वो मिट्टी, वो भूमि, वो हमारी धरती माँ, जिससे हम हर वर्ष

0: बल्कि वर्ष में कई बार और बहुत सारी फसलें लेते हैं, लेकिन हम लेते ही रहेंगे, उसको देंगे नहीं, उसको लौटाएंगे नहीं, तो वो गरीब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, अनुत्पादक हो जाएगी। तो खेत बचाओ अभियान के पीछे का जो उद्देश्य है वो सरकार यही चाहती है कि हम खेतों की उस उर्वरा शक्ति को समझें, उनके स्वास्थ्य को समझें जो मिट्टी हमें फसलों के माध्यम से देती है। तो क्या है ये अभियान, और एक किसान भाई आज हमारे साथ हैं, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, आप प्रगतिशील हैं, ऐसे अभियानों से भी जुड़े रहते हैं और वो जानकारी जो हमारे वैज्ञानिक उनको देते हैं उसको अपनाते हैं। तो नरेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, राम राम।
1: राम राम जी।
0: जी तो बताइए, जो अनुभव, ये जो अभियान चल रहा है, आप तक क्या जानकारी पहुँची है?
1: ये खेत बचाओ अभियान आज के समय में, जब रासायनिक खाद बहुत बड़ी मात्रा में डाले जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। किसान के अंदर एक समझदारी आनी चाहिए और धीरे धीरे आ भी रही है। कहते हैं ना, स्वस्थ धरा तो खेत हरा।
0: क्या बात है।
1: तो मिट्टी हमारी स्वस्थ है तो खेत हरा भरा दिखाई देगा। तो इसके तहत वैसे मिट्टी जांच की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और मिट्टी जांच से हमारा पता चलता है खेत में क्या कमी है। वैसे किसान भाई आजकल पशुपालन पर जोर नहीं दे रहे हैं, बहुत पशु कम रख रहे हैं। अगर पशुपालन रखते हैं तो उनको शुद्ध दूध पीने को मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगा, और खेत के लिए गोबर मिलेगा। एकमात्र जो कंपोस्ट है पशु का, गोबर है, उसमें सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे अलग से मिट्टी जांच करवाएं तो जिंक देनी है, कैल्शियम देना है, मैग्नीशियम देना है, सल्फर देना है, लेकिन वो कंपोस्ट एकमात्र ऐसा है जिसमें सारे तत्व मौजूद हैं
0: जी। और एक बार अगर हम डाल देते हैं एक साल, तो कई सालों तक
1: काम करता है।
0: तो मतलब क्या किसान इस बात को भूल गया है? भाई हम किसान को नासमझ तो कह नहीं सकते, जानकार नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, परंपरा से खेती कर रहा है, लेकिन नई जानकारियाँ आई, तकनीकी आई, उसने उनको अपनाया। तो क्या अपनी पुरानी चीज़ों को क्या किसान अब मतलब अमल में नहीं ला रहा?
1: हाँ, अमल में नहीं ला रहा, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। और ये जो कंपोस्ट खाद के रिजल्ट हैं, ये धीरे धीरे आते हैं, लेकिन देर तक टिकाऊ रहते हैं, बहुत लंबे समय तक टिकाऊ रहते हैं।
0: जिस टिकाऊ खेती की बात करते हैं, वो टिकाऊपन तभी आएगा जब हमारी मिट्टी की हालत और स्वास्थ्य अच्छा होगा।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: देखो, अगर हम एक दूसरे रूप में देखें तो हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि ताकत के दवा लो, हरी सब्जियां खाओ, तब आप ठीक होगे। तो धरती माता के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है, और वो हीमोग्लोबिन की कमी हरी खाद से, कंपोस्ट खाद से, इन्हीं से पूरी हो गई।
0: मतलब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो हमारा भूमि का चाहे पीएच है, चाहे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है, जो वैज्ञानिक कहते हैं, अगर हम किसान भाइयों को समझाएं कि वो भूमि का हीमोग्लोबिन है और वो हरी खाद से और कंपोस्ट से आएगा, वो सही होगा, तो उसको डालना जरूरी है। तो ऐसे में जो किसान भैया कहते हैं कि भैया आजकल जैसे खाद, वैसे ऐसी बात नहीं है, जितना हमें ज़रूरत है सरकार उपलब्ध करा रही है, चाहे डीएपी की बात हो, यूरिया की बात हो, लेकिन किसान भाई लेकिन इस बात से बहुत आशंकित रहते हैं कि पता नहीं फसल पे मिलेगा कि नहीं, पहले क्यों लेके रखना चाहते हैं। तो ये इतना आवश्यक नहीं है जितना किसान परेशान हो जाता है?
1: नहीं, आवश्यक तो नहीं है, लेकिन मैं किसान भाइयों को एक बात को और ध्यान देना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ खाद ऐसे भी मौजूद हैं जिनको हम जीवाणु खाद बोलते हैं। जैसे मैं नाम लूँ तो एक एजेटोवेक्टर है, खेत में डाल दो तो हवा में से ही नाइट्रोजन खींच के पौधों को मिलती है, जैसे ढेंची।
2: आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नेदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देख
1: तो कितनी अच्छी बात है कि हमको अगर 10-20 रुपए का वो मिल रहा है जीवाणु खाद, तो हमें डालना चाहिए।
0: लेकिन वो बीज उपचार के समय,
1: बीज उपचार के समय और जमीन में भी डाल सकते हैं उसको। एक फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया आता है।

0: हमारे जमीन में अनऑथराइज फास्फोरस बहुत है, लेकिन हम उस फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया को डाल देंगे तो फास्फोरस पूरा का पूरा काम करेगी
1: जी, तो
0: ऐसे।
1: आप इन चीजों को करके देख रहे हैं, आप अपने
0: हाँ
1: खेत पे करते हैं
0: बिल
1: इसमें?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप जब करते हैं तो जैसे करके दिखाते हैं वैज्ञानिक भाई, आप अपने यहाँ करते हैं, तो आसपास के किसान भाई आपसे आके नहीं पूछते कि भैया नरेंद्र जी यार आपने ये काम अच्छा कर लिया?

0: बने,
1: हाँ
0: हाथ पर डेला उछालो फूट सा खिल जाए,
1: हाँ
0: तो इतनी सॉफ्ट मिट्टी आपकी कैसे है?
1: हाँ
0: धान में घास खरपतवार उखाड़ते हैं तो आसानी से उखड़ा आता है। बोले इसमें ऐसा क्या है ये कि हमने कहीं किसी खेत में नहीं देखा। तो हमने बताया कि जिस तत्व की कमी है वो हमने पूरा कर दिया है, कार्बन की कमी है खेत में, जीवांश कार्बन की कमी है, वो कार्बन डाल दो तो आपका खेत बहुत सॉफ्ट हो जाएगा,
1: वो कंपोस्ट कैसे
0: कंपोस्ट
1: पूरा हो जाता
0: से पूरा हो
1: है,
0: जाएगा।
1: चाहे आपका खेत खाली है, पानी की उपलब्धता है तो हरी खाद बना लो है। तो ये चीज़ें अगर किसान भाई जो उनकी परंपरा से होती थी, उनके आसपास होते थे, पुश्तैनी काम हम करते थे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे बात चलती है कि भाई खेती से किसान की आय बढ़ानी है, अब इस आय को सिर्फ फसल उत्पादन से तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भाई गोबर की खाद की ज़रूरत है, कंपोस्ट की खाद है, तो हम पशुपालन को भी खेती के साथ साथ करें, फसल चक्र को अपनाएं, टिकाऊ खेती की तरफ जाएं, तो बहुत सारे जो खेती के आयाम हैं इनको समग्र रूप से करें तो किसान की आय वास्तव में बढ़ सकती है।
0: हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए पशुपालन और किसान का तो एक पुराना
1: पुराना संबंध है।
0: संबंध है, पशुपालन नहीं है तो वो किसान नहीं है। और गोबर के महत्व को समझना होगा, गोबर गोबर मैला नीम की खली, इससे खेती दूनी फली, ये कहते
1: जी
0: हैं
1: जी पुरानी
0: पुरानी कहावत
1: कहावतें
0: है।
1: घाघ भट्टरी
0: तो
1: की।
0: बिना गोबर के तो खेती होनी नहीं। और आजकल के युग में हम फसल अवशेष न जलाएं, उसके लिए बड़ा सस्ता साधन उपलब्ध है हमारे पास में, जिसको डीकम्पोजर बोलते हैं। मात्र 20 रुपए का आता है और 2 किलो गुड़ में 5 बीघे के लिए 1 हेक्टेयर 1 एकड़ के लिए तैयार हो जाता है। हम उसको खेत में चलाएं, आप देखेंगे कि 4-5 बार अगर हमने चला दिया, माना कि धान में चला दिया, तो आपकी तो एक पानी की बचत होगी, खाद की भी बचत होगी और जमीन की उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ जाएगी।
1: तो मतलब चीज़ें हमारे बीच में आ गई हैं, किसान भाइयों तक पहुंच रही हैं सिर्फ, और बहुत सारे आप जैसे किसान भाई उसको अपना भी रहे, लेकिन अभी और जागरूकता की ज़रूरत है,
0: हाँ बिल्कुल।
1: जुड़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है।
0: देखिए मैं अगर आज के युग में बात करूं तो एक एग्रीकल्चर हब सेंटर
1: जी।
0: जनपद में खुलने चाहिए, वहाँ किसान जाके देखें कि यहाँ कैसे अच्छी खेती हो
1: कैसे
0: रही
1: हो
0: है,
1: रही है। जी।
0: तो उसको अपनाएं। अब किसान तो एक दारू की तरह, मैं देसी भाषा में बात करूँ तो दारू की तरह रिजल्ट चाहता है कि आज मैंने डाल दिया और 2 दिन
1: कल
0: बाद मुझे रिजल्ट मिल जाए,
1: हाँ
0: अगर रिजल्ट नहीं मिला तो दवा बेकार है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, मैंने अपने कुछ साथियों से कहा कि धान का सीजन मिर्च का सीजन है, आप इसमें ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास डालो, तो बोले डाल दिया उन्होंने, बोले सब रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। तो इतना जल्दी रिजल्ट थोड़ी दिखाई देता है,
1: वो मिट्टी
0: लेकिन
1: में जाएगा,
0: मिट्टी में
1: मिलेगा,
0: जाए
1: लेकिन लंबे समय तक काम करेगा।
0: लंबे समय तक काम करेगा और कर किया है, हमने डलवाया वहाँ अच्छा रिजल्ट आया है।
1: तो किसान भी मतलब वैसे तो किसान के लिए कहा जाता है किसान संतोषी है, किसान इंतजार करता है, इसीलिए उसको अन्नदाता कहते हैं। लंबे समय आज बीज डालता है, 4 महीने तक इंतजार करके फिर 5वें महीने फसल आने का इंतजार करता है, लेकिन किसान भी अब ऐसा हो गया कि आज इंजेक्शन लगाओ कल बुखार उतर जाए, इस तरह के रिजल्ट चाहने लगा है।
0: हाँ
1: ये धारणा ठीक नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको क्वालिटी के साथ, मतलब क्वालिटी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, तो इसमें समावेश कहीं ना कहीं हमको करना
1: जी
0: पड़ेगा।
1: जी मतलब धैर्य की बहुत
0: धैर्य की
1: जरूरत है,
0: जरूरत
1: जीवन
0: है।
1: में धैर्य की जरूरत है, तो किसान को भी धैर्य की
0: वैसे
1: जरूरत है।
0: जागरूकता आ रही है, बदलाव आ
1: हाँ
0: रहा है। मैं एक बात और कहूँ, किसान के खेत पर पेड़ नहीं है तो पेड़ों का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि अगर किसान के खेत पर एक पेड़ होगा तो वहाँ ऑक्सीजन मिलेगी, और जहाँ आप देखेंगे जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है वहाँ फसल अच्छी होती है। और खेत के पेड़ के नीचे अगर कोई हमारा मित्र जीव है, धूप की वजह से कहीं दूर चला गया छाया में, तो वो पेड़ों से मित्र जीवों की भी सुरक्षा होती है
1: जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी किसान के पास जमीन है उसके कुछ भाग में वो चार फलदार पौधे लगा ले, जिससे उसके अपने खान पान की जरूरत हो जाए,
0: खेत के चारों
1: और वहां की इकोलॉजी भी सुधर जाए,
0: चारों कोनों पर पौधे होने
1: कुछ
0: चाहिए,
1: कुछ पौधे होने चाहिए जिससे, तो मतलब अन्न वाली फसलें, दाल वाली फसलें, साथ साथ उसमें सब्जी वाली फसलें और उसमें कुछ फलदार

0: पौधे भी अगर हों तो उसकी जो माली हालत है, उसकी आय बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है उसमें।
1: पेड़ों का एक और रोल है कि पेड़ हमारे बर्ड कल्चर, चिड़ियों का बैठने का आश्रय है। चिड़िया बैठेंगी तो नीचे कीड़ा देखेंगी, कीड़ा देखेंगी तो वो कीड़ा खाएंगी, तो हम ये IPM होता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और अगर पेड़ ही नहीं होगा तो चिड़िया कहाँ बैठेंगी, घोंसला कहाँ बनाएंगे।
0: एक आप कह रहे हैं कि एक चक्र
1: चक्र
0: है
1: है
0: जो किसान के आसपास उसकी जमीन के आसपास बनता है, उस
1: ये,
0: चक्र को तोड़ना नहीं है, उसमें फल सब्जी भी जरूरी
1: जरूरी
0: है,
1: है।
0: उसमें जो है खेती किसानी भी जरूरी है, उसमें पशु भी जरूरी है, और उसमें आसपास का जो परिवेश और उसका समावेश है वो भी जरूरी है। इसको मिला के चलेंगे तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, और वो तंत्र बनेगा तो फिर सब कुछ ठीक होगा,
1: ठीक
0: ऐसा
1: होगा,
0: आपका अनुभव
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते?
1: नहीं, मैं तो किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि विशेष तौर से आजकल जो जीवाणु खाद आ रहे हैं मार्केट में, अगर आप इनको जरूर अपनी फसल में समावेश करें, और DAP, यूरिया, पोटाश हमारे ज़मीन में पड़ी हुई है, इनको एक्टिव करने का काम करें। ये एक्टिव होंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, और नहीं तो कोई रासायनिक खाद काम नहीं करेगा जब तक कि जीवाणु खाद नहीं होगा।
0: जी। तो किसान भैया, ये जो खेत बचाओ अभियान है इसके पीछे यही उद्देश्य है, और शायद आपके पास बहुत सारे किसान भाइयों के पास पहुँचे होंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे KBK से, हमारी विश्वविद्यालय से, और ICR के जो जितने भी संस्थान हैं वहाँ से भी पूरे जून में ये जो वैज्ञानिक है वो पहुँच रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, और नरेंद्र शर्मा जी ने भी इस बात की ताकीद की, और वो कही कि अगर इन चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे, उन्होंने करके देखा है, वो किसी की मुँह जवानी सुन के नहीं बता रहे, उन्होंने किया है, उसके परिणाम देखे हैं, और उस परिणामों को ही आपके साथ वो साझा कर रहे थे कि अगर आप वैज्ञानिक जानकारियाँ अपनाएंगे, कुछ अपने अनुभवों को डालेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी जो नई आ रही हैं उनको भी समावेशित करेंगे, किसी एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। अब किसान के जहन में जो DAP और यूरिया की बात आ गई है वो उससे काम नहीं चलना, आपको बहुत सारी जो चीज़ें नरेंद्र भाई ने बताई कि भाई एजिटोवेक्टर से बीजोपचार करिए, फॉस्फोरस जो स्थिर हो जाता है ज़मीन में उसको मोबिलाइज करिए, मिट्टी पानी की जांच कराइए, उसमें कितना खाद आपको किस फसल के लिए ज़रूरी है वो मिल जाता है, तो आपकी जो आय है वो भी बढ़ती है और लागत है वो कम हो जाती है। तो इन चीज़ों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारा लाभ आपको जानकारियों से मिल सकता है। आप जागरूक रहिए, जानकार रहिए, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको देखते रहिए, बहुत सारे जिला लेवल पर बहुत सारे आसपास मेले लगते रहते हैं, अभियान चलते रहते हैं, उनमें जाइए, भागीदारी करिए, और वहाँ जो जानकारी मिले उसको करके देखिए, अपनाइए, तो निश्चित तौर पर आप भी एक प्रगतिशील कृषक हो सकते हैं। नरेंद्र भाई आप आए, जानकारी दी हमारे किसान भाइयों से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: धन्यवाद। राम राम।
2: खेत बचाओ अभियान क्रम में भैया आपने जानकारी लेनी कैसे बढ़ा में भूमि की उर्वरा शक्ति, प्रगतिशील किसान हते नरेंद्र कुमार शर्मा और बातचीत हती OP सिंह की। बात बिल्कुल सही है, हमारे जो अन्नदाता हैं जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति, हमें पूर्वक पोषक तत्वन को ध्यान रखना है, और जो हमारे अन्नदाता हैं उनके स्वास्थ्य को भी हमें ध्यान रखना है, अपनों भी ध्यान रखना है। धोताए ते जग जा में बास में बड़ी शुद्ध ताजी हवा हो वह, और बास में भैया वा को आप समय को प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, योग करके, प्राणायाम आसन करके, आप अपने शरीर में ऊर्जा को संग्रह करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए लो, और अपने परिवार के सदस्यों को भी कराओ, जैसे कि जहाँ योग होगा वहाँ निरोग रहेंगे, दवाई गोली सब ते छुट्टी है जाएगी। भैया बात बिल्कुल सही है, अगर आपको जानकारी ना है तो जो कर रहे हैं विनती ने एक जुड़ जाओ, इनके पास नेक समय निकाल के चले जाओ, तो बात से बढ़िया बात और क्या होगी, आसन करो, सब कुछ करो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आपको परिवार भी खुश रहेगा, और फिर आनंद आवेगा, लोकगीत को सुनने में कछु और ही आनंद है, और गिरिराज की शरण में चलो सुन ले में है लोकगीत, शरण पूरी हो जाएगी, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में।

बिजेन तिवारी को गायब है। और सुनो, आपने ये लोकगीत तो शरण तो हमें मिल ही गई है। और एक और बात है कि मौसम की जानकारी, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और भैया, आप मौसम के अनुसार ही अपने कृषि कार्य करो और अपने पशुओं को और अपना ध्यान रखो। बस घड़ी की सुई तो ये कहे, आज को वृक्ष ग्रामीण कार्यक्रम अब यहीं पे हुए है संपन्न। कार्यक्रम सुन भी बारे सभी भैया बहन को हमारी राम राम।

किसान भाई और बहनें, अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी ममता रानी। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

साथियों को धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए सुनते हैं संध्या वंदन के आज के इस कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म बजरंग बली से। स्वर इस गीत में महेंद्र कपूर, अजीज नाजा और साथियों का।

0: बजरंग बली, जय जय जय बजरंग बली।
1: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना EKYC और बैंक विवरण अवश्य जाँच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की

समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी, इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से केवी के कृषि विश्वविद्यालय ICAR के अनुसंधान केंद्र, कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंच पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 18 जून को दिन में 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किशोर वय बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135, जी हाँ टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या मोबाइल नंबर 9412-25575 9412-22557 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। श्रोताओं, यदि आपको आपके बच्चों में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन जैसे आवाज़ का बदलना, डायबिटीज, थायराइड, हार्मोनल असंतुलन जैसे PCOS, मासिक धर्म की समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना, अत्यधिक मोटापा या बच्चों में असामान्य रूप से कम या अधिक विकास, लंबाई न बढ़ना आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर रवनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन गुरुवार 18 जून 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनने जा रहे हैं बाबूलाल शर्मा ब्रजवासी से ब्रज काव्य सुधा क्रम में काव्य पाठ।
1: आकाशवाणी श्रोतान को नमन करतो भयो शिव महिमा में पहला छंद प्रस्तुत कर रहे हूं। शिव महिमा में शिव

ज्येष्ठ शुक्ला दशमी बुधन हस्त नक्षत्र में गंगधार धराधाम शिव हुगेराई है। जब सती अपमान भयो प्रजापति दक्ष यहाँ बनी पार्वती मात हिमालय पे आई है। विष्णु चरण उदक सो बनी वैष्णव है मात शिव की जटान सो शैव कहलाई है। कहे ब्रजवासी गंग मेरु के पहाड़न में अलक नंदा सीता चक्षु भद्रावताई है। वेद और पुराण कहे हिम के पहाड़न सो तीन दिव्य धार गंग धरा पे गिरात है। एक मंदाकिनी स्वर्ग सो गिरे धरने दूजी धरा धाम भाग।

लात है गंगा भागीरथ संवाद में प्रस्तुत कर रहे हूँ। सगर सुत तारण कुधरन पधारो मा भागीरथ नैन मुदे वचन सुनायो है। दो कर जोर तप कर घन घोर तब

है प्रदूषित कर न कोई कल योग माए मोहे भागीरथ बहन निज मुख सो उचायो है। भागीरथ सुन बहन नाई मिले नर चैन करे गो प्रदूषित जो मेरो स्वच्छ पानी है। त्यागे गो जो मल मूत्र खोवे निज काम सूत्र।

और मैं गेलानी है। ब्रजवासी गंग तंग नंग की व्यथा कु आज गेह गेह कहे गंगा मात की कहानी है। शुद्ध करे सोले संस्कार कु गंग जल तन शुद्ध अंतेसी की जग में आधार है। कले पाप हारन कु मुनि तप धारण कु ऋषि मुनि न की बनी श्वेत कंठ हार है। गौमुख

सुधा राधे को लात है, कल कारखाने न को मट में लो गंदो जल, नाली गंदे नाले न सो गंगो में बहात है। हिम के पहाड़ न सो निकस अमृत तुल्य, भूपे मल मूत्र विश्व मानव में लात है। ब्रजवासी ही में न रामो घन श्याम जाके, ऐसो नर जग में पाखंडी कहलात है। तपसी योगी ज्ञानी विचारक ध्यानी सब, सुनो गंगा पावन की कष्ट की कहानी है। राक्षस को रूप धारे मानव प्रहार करे, करे मट मेली गंगा मात महारानी है। भागीरथ आओ आज धरा पे उतरे देखो।

0: और दो रन उन्होंने लिए, 23 रन पर खेल रही हैं स्मृति, और बहुत अच्छी फील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन देख रहे हैं अंपायर के कहीं उनका जूता लग तो नहीं गया, लेकिन अभी फिलहाल।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट, मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच, टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान

0: किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 1 दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
3: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
5: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
4: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
6: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है, पहले मंदिर तक जाने

0: रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी। पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
2: बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: सैफ अली वर्मा का स्कोर इस समय बढ़ के हो गया है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में 9.83 की।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412-25575। जी हाँ, 9412-22575। और हम लेंगे आपका व्हाट्सएप संदेश, सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का फिल्मी नगमा। शुरू करते हैं।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412-25575। जी हाँ, 9412-22575। और हम लेंगे आपका व्हाट्सएप संदेश, सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का फिल्मी नगमा। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला व्हाट्सएप संदेश लेते हैं।

कार्यक्रम में जुड़े हैं श्रोता साथी अपने व्हाट्सएप संदेशों के साथ में। श्रोता साथी हैं, आपने संदेश भेजा। वरवट बकाल बुलढाणा से हैं श्रोता साथी नारायण हागे, कमल, दिव्या और जया हागे। अनारकली बाजार जगराव से हैं कमल पाठक, सुनील पाठक और गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और इनके ये साथी सभी सुधी श्रोता। कार्यक्रम में अगला संदेश लेते हैं, ये चंडीगढ़ सिटी से है सतीश अनेजा, विमला अनेजा कार्यक्रम के सुधी श्रोता। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, पिया दिशानी और निमित आहूजा। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिप्पा, कपिल चिप्पा, ईशान और पूजा परिहार भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नवानकर का मिला संदेश। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर अक्सर हरिद्वार से सुन रहे हैं कार्यक्रम। श्याम सुहानी, करणवीर हाउस बुचु कैंचिया, बठिंडा पंजाब से हैं परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, कुलदीप सिंह एकम और दमन अभिजोत। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफीम कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा जुड़े हैं कार्यक्रम में। शिवाजी चौक बुराड़ा खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ बाग, अमोल बाग, गुड़िया और कृष्णाली, अशोक देशमुख। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनबाला सुरलकर का संदेश। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया और अनस और रेहान का ये संदेश मिला। सागर लखनऊ दौन मध्य प्रदेश से है लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे और सक्षम चौबे, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और आदिब। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर के श्रुदी श्रोता साथी हैं। देरापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक शेरी वड्डे रघुला से अरुणा दामोदर और बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर का भी संदेश मिला। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, जिक्रा और आयशा खत्री, बाबू कॉलोनी, अब्दुल्ला मस्जिद, खंडवा, मध्य प्रदेश से ये श्रुदी श्रोता। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेहराज जहां। जी हाँ, जिन भी सुधी श्रोताओं के मैसेज कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं वो दोबारा मैसेज न भेजें, और भी श्रोताओं को नाम लेने हैं कार्यक्रम में, पढ़ने हैं उनके संदेश। सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी, रानू मैडम, ये सभी महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से संदेश भेजते हैं कार्यक्रम में, संदेश के साथ में है। ऑरेंज कर्नाटक स्टेट से चाइना तिरुपति विलेज से प्रकाश श्यामला, और एक और संदेश है हम तक, कंवर कॉलोनी बड़वास जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी जुड़े कार्यक्रम में। कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा डाबी, विक्रम अर्चना, साक्षी ढाबी, ये सभी गांव टूकिया जिला बालोतरा राजस्थान के सुधी श्रोता हैं। ददरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा अपने कार्यक्रम में जुड़े। आरती अरोड़ा, पिंकी लवली, मिंटू टॉमस, पंजाबी वड़िंग खेड़ा के सुधी श्रोता हैं कार्यक्रम में। और एक और सुधी श्रोता जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज और गुरु नूर सिंह, शुभदीप, ये सभी गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से जुड़े हैं सुधी श्रोता। कोटवार नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय, दुबिहार नेवाता जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय।

आइए सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। इसको फिल्म से लिया हमने, फिल्म चलते चलते से। आवाज़ इस गीत में अलका याग्निक और अभिजीत की।

और व्हाट्सएप से संदेश श्रोता साथियों के हम तक पहुंचे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी में। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। आप भी सुन सकते हैं अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा करें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9412-25575। जुड़े हैं श्रोता साथी, आप जुड़े आकाशवाणी अंबिकापुर से। ये श्रोता साथी हैं मोनिका राम प्रजापति, और ये एक और मैसेज हम तक पहुंचा, बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूढ़त और चेतन नाहटा कार्यक्रम में। अगले संदेश के साथ में श्रोता साथी हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना ताई गोड़ा ने, हीरामणि शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोड़ा ने। अगला संदेश श्रोता साथियों का पटियाली रोजगंज डूंगरवाड़ा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी और बेबी अरिबा हबीबा। अगले संदेश में राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से है मारिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम, हरशंकर, रत्नेश और प्रशांत प्रजापति का ये व्हाट्सएप संदेश। देवरी बटापारा से है के आर साहू, आकाश, कमलेश, गंडू लाल गजक और मुरली क्षत्रिय कार्यक्रम में आप भी जुड़े। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता कार्यक्रम में, और आपने कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्ष का संदेश मिला। आप नसवाला चौक मलकापुर से हैं संजय पाटिल, सौभाग्यवति उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, क्षीर सागर, संजय चौहान कार्यक्रम में। अगले संदेश के साथ में है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसमा, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से है ये श्रोता साथी, और आप भी जुड़े कार्यक्रम में संदेश के साथ में। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता और गीता, बाजार रोड मुंगीसापुर से है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शुभिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लोबना और यश मंसूरी। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से हैं सईद भाई, सुफियान अनस, अल्फिया, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान और हदिया खान का ये संदेश मिला। विदर्भ श्रोता क्लब से हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप भी जुड़े मोर टक्का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कामला पटेल, अंतिम और ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना मन मानस और कनिका पटेल। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और रिमझिम गुप्ता भी जुड़े कार्यक्रम में। श्याम सुहानी कार्यक्रम में आप जुड़े कार्यक्रम में। सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया संदेश के साथ में है। मंजलू का टीला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, सतना एमपी से उमंग मंगलिक, आकांक्षा और माही मलिक जुड़े हैं कार्यक्रम में। संदेश के साथ में है श्रोता साथी गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदले, आरपी जोदले, नांदेड़ महाराष्ट्र से नंदेड़ ये सुधीश श्रोता है, और मैसेज के साथ में गोवर्धन बैरी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष राजा, चतर मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधाना खुराना का संदेश मिला। गांव पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर। आई सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म भीगी पलकें से ये गीत। आवाज इस गीत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की। एमजी हसमत के गीत को संगीत दिया जुगल किशोर

कार्यक्रम में जुड़े हैं सुधी श्रोता कार्यक्रम में। आपने संदेश भेजा, अपने व्हाट्सएप संदेश के साथ में है। जी हम भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानो चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही, अंशिका जोशी, अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जसविंदर कैंट और सुधी श्रोता जुड़े कार्यक्रम में।

करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगुला गोपाल महेश्वरी पवालिका विष्णुवर्धन बिगने। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश वर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा। संदेश के साथ में सुधी श्रोता, आपने संदेश भेजा। गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा और स्वप्निल रश्ता। खंदौली आगरा से राजू लवानिया, चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा सिहोरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा के सुधी श्रोता। और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। करताल जिला रंगारेड्डी तेलंगाना से कानगुला गोपाल महेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन। संदेश के साथ में बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, भीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अहराम और समस्त हाशमी परिवार। कार्यक्रम में जुड़े नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उबर और राजेंद्र कटारे का संदेश मिला। रिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा भी जुड़े कार्यक्रम में। अगला संदेश श्रोता साथियों का संतोष नाभदेव, अभय अनिल, अजीत ज्योति, रंजना शेखा, भारती पूर्वी रूही, अनुअनन्या, शक्ति भक्ति, आदर्श लवकुश व नामदेव परिवार जुड़ा कार्यक्रम में। ये संदेश हमको मिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से, गांव पोस्ट सोरई से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेटी बेटे से। ये गीत आवाज लता मंगेशकर की थी, गीत शैलेंद्र का, संगीत शंकर जयकिशन का था इस गीत में। और आइए सुने ये श्रोता साथी जुड़े कार्यक्रम में आज के सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ जुड़े थे, उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसू, अर्णव सत्या महानंद पाकुड़ झारखंड से जुड़े थे इस कार्यक्रम में, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी योगेश, संध्या कीर्ति, ये सभी रसेला छत्तीसगढ़ के सुधी श्रोता थे। और आप भी जुड़े थे रेडियो के इस कार्यक्रम में, भिलाई 3 चरौदा से, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदून सिद्दीकी, आप भी जुड़े कार्यक्रम में। और आप मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का संदेश मिला, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि जुड़े कार्यक्रम में। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। इजाज़त दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनुराग पांडे को, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संवेग स्वर में देशगान। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून सन 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना ई केवाईसी और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि, सहायता और भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से केवीके कृषि विश्वविद्यालय ICAR के अनुसंधान केंद्र कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंच पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियां में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित

0: क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास योजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
5: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर

0: बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi meets US President Donald Trump on sidelines of G7 summit in Evian. Issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figure prominently. Prime Minister also holds bilateral meetings with German Chancellor Friedrich Merz, European Council President Antonio Costa and European Commission President Ursula von der Leyen. India and France reaffirm commitment to innovation, artificial intelligence and technology cooperation at inauguration of India Pavilion at Viva Tech 2026 in Paris. Railways approves multiple projects worth over 1,200 crore rupees to improve connectivity and safety. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India and sub-Himalayan West Bengal tomorrow. And in men's cricket, Afghanistan chase target of 403 runs set by India in second ODI of 3-match series in Lucknow. A crucial bilateral meeting was held between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at Evian, France on the sidelines of G7 summit this evening. During the talks, issues of seafarers' safety and opening of Strait of Hormuz figured prominently. Prime Minister Modi commended President Trump for the progress in peace efforts in West Asia. The Prime Minister said that India has consistently emphasized the importance of the freedom of navigation and all should work together to place a particular emphasis on it. Mr. Modi added that lakhs of Indian seafarers in maritime trade are on duty in different oceans of the world and their safety is of utmost importance to India.
3: Excellency, hum jante hain ki maritime trade ki duniya mein Bharat ke lakhon seafarers aaj duniya ke alag alag samundar mein apni sevaen de rahe hain, vishv ki pragati mein bahut bada yogdan de rahe hain aur main samajhta hu ki unki suraksha bhi utna hi mahatvapurna hai. Mujhe pura vishwas hai ki samjhote mein seafarer ki suraksha bhi sunishchit hogi aur usko prathmikta milegi. Excellency, main fir ek baar

अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह को फिल्म चलते चलते में धुन तैयार करी थी इस गीत की आदेश श्रीवास्तव ने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ही सुनते हैं फिल्म चेहरा से ये गीत। आवाज इस गीत में श्रेया घोषाल और सोनू निगम की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाने तराने। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे श्रोता एक बार फिर से रात्रि 10 बजे FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: भारत की सुरक्षा केवल उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के साहस से ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उस शक्ति से भी होती है जो उन्हें आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत रक्षा उपकरण उपलब्ध कराती है। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान हो, मिसाइलें हो, युद्धपोत हो या फिर आधुनिक हथियार प्रणालियां, हमारी निर्भरता विदेशी देशों पर काफी अधिक थी। लेकिन बीते कुछ वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है। अब भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में इसमें 110% से अधिक की वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी, रक्षा गलियारों का विकास, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें इस परिवर्तन की आधारशिला बनी है। भारत किस तरह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि हमारी सामरिक शक्ति को किस तरह मजबूत कर रही है, वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की क्या नई पहचान बनी है और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की चुनौतियां और संभावनाएं क्या हैं, इन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और रक्षा विशेषज्ञ भी आप हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। जय हिंद।
1: लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे शुरू करते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में आज जो हमारा रक्षा उत्पादन है उसमें तकरीबन 110% की वृद्धि हुई है। एक सैन्य रणनीतिकार के नजरिए से हम बात करें तो इस भारी बढ़ोतरी ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को किस तरह बूस्ट किया है और साथ ही साथ विदेशी कलपुर्जों पर हमारी निर्भरता को कितना कम किया है?
3: मैं कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, शक्ति

में शांति और उसी में मनोबल ऊंचा होता है आर्म फोर्सेस का। पहले जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तकरीबन 65% पूरा का पूरा हम लोग आयात करते थे और अब तकरीबन 65% हम भारत में खुद बनाते हैं। तो ये जो पहल है हमारी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, इससे बहुत फर्क पड़ा है। ये डिफेंस कॉरिडोर का सेटअप होना, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप्स को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स हैं उनको साथ में लेकर के चलना। तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिसे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है और खासकर जब वो बनती है जो

0: प्राइवेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक साथ मिलजुल करके काम करना, डीआरडीओ का इनका मनोबल ऊंचा करना, इनको प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप को साथ ले चलना, अकेडेमिया के साथ करना, जो यूजर्स है उनको साथ में लेकर के चलना। तो ये जो बेसिक कार्रवाई है, काफी पहले प्रोसीजर्स होते थे, उन प्रोसीजर से जिससे देरी होती थी उनको हटा दिया। अब जब भारत के अंदर कोई भी चीज बनती है, और खासकर जब वो बनती है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो, ये नहीं कि भारत में बनाने बात अलग है, पर वो वस्तु बनाना जो इंटरनेशनल से टक्कर दे, और वो हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, इस प्रकार अपने बनाए हुए रेडार ने किस प्रकार से दुश्मन के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। और यही कारण था कि अबाउट 88 आवर्स सिर्फ 100 घंटे से भी कम में पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा चीन का पूरा रक्षक तुर्की है, उसको मदद करा, पाकिस्तान अपना खुद करा और उसको पेनिट्रेट करना। ये तब हो सकता है जब आप आत्मनिर्भर हो, जब आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना करें, मेक इन इंडिया हो, आपको मालूम है आपकी चीज क्या है, आपने अपने एरिया के मुताबिक स्पेसिफिक इसे बनाया है। तो ये जो एक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1.78 लाख करोड़ एंड ऑल टाइम हाई। और जैसे आप कह रहे हैं कि ऑफकोर्स 2000 मतलब पिछले साल से तो आपको 15.6%, तो उससे पहले अगर देखा जाए तो 110% से भी ज्यादा। और वापस अगर 2013-14 की ओर देखेंगे तो उस वक्त तो हार्डली डिफेंस प्रोडक्शन यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 43,000 crores, और अब इट इज प्राइवेट प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 43,000 crores है, प्राइवेट प्रोडक्शन। लेकिन वेल इमेजिन 1,78,000 crore में प्राइवेट का contribution है, that's almost about the same as what was the total defense production of 2014.
1: अजय जी, आपसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लंबे समय से भारत के विदेश और रक्षा नीतियों को कवर करते रहे हैं। एक वो भी दौर था जब हम दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक थे, और आज यानी 25-26 की हम बात करें तो हमने 38,424 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। आयातक से निर्यातक बनने के इस सफर में वैश्विक पटल और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भारत का कद कितना बढ़ा हुआ आप देख रहे हैं?
2: देखिए, पहले मैं एक बिंदु बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, जो कुलकर्णी सर भी बात कर रहे थे। निजी सेक्टर ने तकरीबन 24% किया है इस 1,78,000 करोड़ में से। निजी सेक्टर की ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक वो ग्रो नहीं करेगा तब तक हम देश में एक्सपोर्ट या जिसे कहते हैं नहीं कर पाएंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट का कैसे सफर आया है, वो सफर ग्रेजुअल होता है, हमेशा ग्रेजुअल होता है। पिछले 10-12 साल में स्पीड बहुत पकड़ी है, बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। हम कोई 400-500 करोड़ की एक्सपोर्ट करा करते थे 10-12 साल पहले, और अब कोई 38,000 करोड़ की जैसे आपने नंबर दिया उतनी कर रहे हैं। अब ये एक्सपोर्ट जो है ये कई ऐसे मुल्कों को हो रही है जो तुर्की के आसपास हैं, पहले तो ग्रीस है, आर्मेनिया है, बिना का रॉकेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि चीन के साथ, जिनकी तालमेल नहीं बैठ रही उन मुल्कों के साथ, जैसे वियतनाम को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को, ब्रह्मोस की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जिनके लिए हम पार्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग यूएस से, उनकी कंपनी को भी हम पार्ट सप्लाई करते हैं, हमारी कई निजी कंपनियां यहाँ। आगे आने वाले दिनों में हमने अभी बहुत स्पीड पकड़नी है। आपने एक बात बोली कि हम सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, इंपोर्टर अभी हम रहेंगे, 10-12-15 साल और रहेंगे, जब तक हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, युद्धपोत यानी वॉरशिप का इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, और सबसे बड़ी बात जैसे S-400 मिसाइल मारक क्षमता, जैसे हमारा एक कुशा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कंप्लीट होने को 5-7 साल लगेंगे। जब तक वो ऐसे प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, हम इंपोर्टर रहेंगे। ये एक सच्चाई है, हमारे देश को मान के चलना चाहिए। हर देश सारा कुछ नहीं बनाता, हम एक बहुत बड़े इस टाइम एक्सपोर्टर की तरह उभर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, मगर ये अभी 10-15 साल और लगेंगे हमको टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, और अभी स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है। ये मैं आपके श्रोताओं को एक ऑनेस्टली और बिल्कुल सच्ची बात बता दूं, स्पीड पकड़ने की बहुत जरूरत है।
1: जी हाँ, कुलकर्णी सर, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, जैसा कि बैनर्जी जी कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की जो भागीदारी बढ़ी है उससे एक नई उम्मीद की किरण रक्षा क्षेत्र में जगी है, आपको क्या लगता है कि रक्षा उत्पादन में सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो ये सिनर्जी है, यानी जो तालमेल है, इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या ये मॉडल आने वाले समय में हमें फाइटर जेट्स और सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट बना सकता है?
0: देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट को देखते हुए अभी हम देखते हैं टाटा ने फर्स्ट एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करने की कोशिश की नागपुर से, और जैसे बैनर्जी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वक्त लगता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, इतनी आसान नहीं है, और कोई दूसरा देश आपको देता भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पहल की है प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने, कम से कम वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर के डीआरडीओ ने अपनी फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई है, उसको देखते हुए जरूर

0: मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और खासकर डिफेंस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को एक बात का आभास होना चाहिए, तो फौज है उनसे खरीदती रहेगी, क्योंकि अगर आप उनको बोलेगा 100 हवाई जहाज बना करके उसके बाद फैक्ट्री बंद हो जाए, वैसे नहीं हो सकता है, 100 के बाद वो प्रोडक्शन चल, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब आप बनाते हैं जस्ट नॉट मेक इन इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड, मतलब फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि 40 पीस आर्टिलरी के दे दिए उसके बाद फैक्ट्री क्या करेगी, आपके लिए बनाए उसके बाद क्या होगा। तो ये जो सस्टेनेंस है ऑफ प्रोडक्शन, सस्टेनेंस ऑफ एंड मॉडिफिकेशन, उसके ऊपर इनोवेशन, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई है, और खासकर मैं कहूंगा टाटा की हो, महिंद्रा हो, एलएन की हो, कल्याणी भारत फोर्ज हो, अशोक लेलैंड हो, अडानी, अल्फा डिजाइन, ये जितने भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी भी 178,000 करोड़ का है, इसमें तकरीबन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 25% प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, विच इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब सिनर्जी हो, जिसकी आप बात करें, सिनर्जी इज अ मस्ट, यानी कि जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, जो इस्तेमाल करने वाला है यूजर, ये दोनों का जो तालमेल है ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर भी कुछ ऐसी चीज मांगे जो बनने में तकलीफ हो, और मैन्युफैक्चरर भी ऐसी चीज बनाए जो यूजर को ना पसंद हो, तो दोनों का तालमेल बहुत जरूरी, नंबर वन। नंबर टू, जब चीज हिंदुस्तान के अंदर बनती है तो उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस करते हैं वो उसको बहुत आसानी होती है। अभी आपने मार्क वन बनाया है, आपने हमने बनाया है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको मार्क टू बनाने में दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस सप्लाई उसको पाने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सिनर्जी है बहुत जरूरी है, जिसमें डीआरडीओ की भी काफी हद तक उसका सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। हमारे पास बड़े बड़े जमीनें हैं, ग्राउंड्स हैं, जहाँ पे आप फायरिंग कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं आपका मटेरियल कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सारा कुछ मिलकर के अकेडमिया है, IITs है, भारत के बच्चे बड़े होशियार हैं, वो आगे आते हैं, स्टार्टअप्स हैं वो आगे आते हैं, तो आई थिंक गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है आत्मनिर्भर के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, वो बहुत जरूरी है। और डिफेंस कॉरिडोर जिस तरीके से बने हैं, इससे आप देखते हैं कि इनोवेशन को एक स्फूर्ति मिलती है, और इस इनोवेशन के कारण आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आप भारत के अंदर ही अपने हम दिया, जैसे आप कह रहे हैं वी आर द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स, और हो सकता है कहीं एक साल तक हमें ऐसे रहना पड़े, क्योंकि आपको इट्स नॉट सो इजी, ये बहुत जो डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है इट इज वेरी वेरी नीच टेक्नोलॉजी, और उसको पाना आसान नहीं, चाहे वो सीकर्स हो या स्टिल्थ हो। और आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने अमेरिका से तेजस के लिए अपने इंजन मांगे, और कहा हो 2 साल हो गए, 2 इंजन नहीं आ पाए, 2 साल हो गए, क्यों? हमने उनके भरोसे, उन्होंने कहा नहीं हमने तो फैक्ट्री में बंद कर दी है, हम आपके लिए अभी बनाना शुरू करेंगे, इसमें लगे। पर अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा फिर MCA प्रोजेक्ट जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा। तो बहुत जरूरी है ये डिफेंस में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, जो बीच बीच में रुकावटें आती है ब्यूरोक्रेटिक, वो नहीं, वो सरकार ने हटा दिए, तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा।
1: बनर्जी साहब, अगर 2013-14 की बात करें तो हमारा स्वदेशी रक्षा उत्पादन 43,786 करोड़ रुपए का था, जो अब 4 गुना के करीब बढ़ गया है। बतौर पत्रकार, नीतिगत स्तर पर वो कौन कौन से डिसीजन आप मानते हैं जो गेम चेंजर साबित हुए हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के नजरिए से?
2: पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कोई 5-6 साल पहले एक लिस्ट निकाली रक्षा मंत्रालय के लिए कि ये आइटम जो है अब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, आपने इंडिया में ही बनाने। वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट अपडेट होती रहती है, उसको इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रबर की सील है, कोई हेलीकॉप्टर में लगती है, हर कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद बदली जाती है, वो इम्पोर्ट नहीं होगी। कुछ व्हीकल आर्टिलरी गन इम्पोर्ट नहीं होगी, अब हम खुद बनाते हैं आर्टिलरी गन, ठीक है। पनडुब्बी, एक हैरानी वाली बात यह है कि हमने एक सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बनाया है INS विक्रांत, जो हमने खुद बनाया है। नेवी के साथ अब 95-98% जो शिप हैं वो इंडिया में ही बनते हैं। हमने एक परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी यानी SSBN जिसे बोला जाता है नेवल पार्लेंस में, INS अरिहंतर, उसके 3 आगे की श्रेणियां बना चुके हैं। ये सब हम कर चुके हैं। जो नीति चेंज हुई वो ये चेंज हुई, छोटी छोटी चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे थे वो इम्पोर्ट नहीं होंगी। मेटलर्जिकल पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स, हर हेलीकॉप्टर में, प्लेन में टैंक है उसमें या व्हीकल है उसमें मूविंग पार्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होगा। तो वो जो पॉलिसी आई वो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। जैसे मिसाल के तौर पर आज सुखोई और MiG-29 लड़ाकू विमान है भारतीय वायुसेना के पास, तकरीबन सुखोई 270 और MiG-29 कोई 60 के आसपास है, और MiG-29 नेवी के पास भी है करीब 40-45, तो 100 वो है और 370 विमान है हमारे पास जो कि रूसी ओरिजिन के हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तो अब आ नहीं सकते रशिया से, वहां तो जंग छिड़ी हुई है, तो वो अब इंडियन एयरफोर्स यहां पर लोकल इंडस्ट्री के साथ बात करके उसको यहीं पर बनाने का प्रयास कर रही है। भाई डाईकास्ट तो है ही ना, पार्ट तो आपके पास है, उसको बनाइए स्पेयर पार्ट को। दूसरी चीज ड्रोन यानी

0: नेवी बहुत एक महंगी टेक्नोलॉजी है, जटिल प्रणाली है, उसको आप इंपोर्ट करने की बजाय एयरफोर्स फिर से प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के कह रही है कि तुम बनाओ हमारे साथ मिलकर। एक और जटिल प्रणाली है जिसे बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हमने नाम दे रखा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब रक्षा मंत्रालय ने पहली बार निजी क्षेत्र को वो विमान के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो कि पांचवी श्रेणी का लड़ाकू विमान है उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र में तीन कंपनियों को, तीन कंसोर्टियम्स को इनवाइट करा है कि अपनी बिड दीजिए। ये पहली बार है कि निजी कंपनियों को बुलाया गया। अगेन निजी कंपनियों को फिर से बोला गया है सबमरीन्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी हम बनाते हैं, मगर परंपरागत पनडुब्बी जिसे बोलते हैं हम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, वो उस पनडुब्बी अभी हम एक जर्मनी से बनने की तैयारी है, एक फ्रांस से पहले बन रही थी, अब उसको बनाने की भी तैयारी है इंडिया में। हेलीकॉप्टर अभी तक हम ALH बना रहे थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बना रहे थे, और अब हम अपने आप एक बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-17 एक थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है वो हम रूस से इम्पोर्ट कर रहे थे, अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर आ रहा है उसे बोलते हैं इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके हेलीकॉप्टर की दो श्रेणियां होंगी, एक नेवी यूज करेगी और एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था 8-10 साल हमें पेस मेंटेन रखनी पड़ेगी तभी हम आत्मनिर्भर होंगे।
1: कुलकर्णी जी आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे, जैसा कि ड्रोन तकनीक का बैनर्जी साहब ने जिक्र किया, रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि नीतिगत समर्थन और नई पहल बहुत जरूरी है, इनोवेशन डिफेंस स्टार्टअप्स भी काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो भविष्य की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जैसे AI और ड्रोन, उस क्षेत्र में हम दुनिया के तमाम देशों की अगर तुलना करें तो कहां खड़े हैं और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
2: देखिए ड्रोन वॉरफेयर अब समथिंग हम लोगों को यकीनन उसके साथ अडॉप्ट होना है। हम देख रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर किस प्रकार से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ईरान के युद्ध में, तो ड्रोन वॉरफेयर तो बहुत ही जरूरी है। हमने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस प्रकार से एंटी ड्रोन पे पूरी कार्रवाई करके पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको गिराया, और वो भी ड्रोन जो पाकिस्तान को टुनके नहीं दे वो गिराया, जो वो ड्रोन जो चीन ने पाकिस्तान को दिए वो गिराया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत जरूरी है, हम धीरे धीरे करके, ये नहीं कहूंगा कि वी आर एट द बेस्ट, बट डेफिनेटली नाउ वी आर गेटिंग एट दैट लेवल, और इसको भारत के अंदर बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्पोर्ट ही करते रहेंगे तो बहुत महंगा होगा ये, तो इसलिए आज की तारीख में अगर हम देखें स्टार्टअप देखें जरूर, चाहे स्टार्टअप्स के पास आपके पास या नेविगेशनल सिस्टम हो या उसके सीकर्स हो या उसके पास फोटोग्राफिक देखें, बहुत कुछ साधन हैं जो स्टार्टअप्स के पास है वो इस्तेमाल करें। तो बहुत जरूरी है इनोवेशन, बहुत जरूरी है ये स्टार्टअप को एनकरेज करना, बहुत जरूरी है रोबस्ट R&D, बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन और यूजर का उसके साथ इंटरफेस। यूजर को भी बहुत जरूरी है कि अपने आप को दूर ना रखे कि जब मेरे को सामान ला करके दिखाओगे तब मैं देखूंगा तब बताऊंगा ना जी आप तो फेल हो गया ना। यूजर एंड मैन्युफैक्चरर का इंटरफेस तो चलता रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल अगर हम ये हमारे लिए है इसलिए आत्मनिर्भरता वो भारत के लिए है, और जब बढ़िया बनेगा और सस्ता और अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली विश्व में उसकी मांग बढ़ेगी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब कोई भी सामान टेस्ट होता है तो हमारे जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है और टेस्टिंग जो पैरामीटर्स है जिसको GSQR हम लोग सेट करते हैं बहुत ऊंचे है, और वो उस बात का जब एक दफा पास हो जाता है तो पूरा विश्व इंतजार कर रहा होता है, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो स्मॉल आर्म्स हो चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उनको लगता है अगर भारत ने लिया है मतलब ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत सच में उसको इस्तेमाल करता है और जब इंट्रोड्यूस करता है बहुत कुछ देखभाल करने के बात करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे -50 डिग्रीज भी है +50 डिग्रीज भी है, तो दोनों तरीके के है हमारे में, तरह तरह के टेरेन कंडीशंस है, तो ये सब को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब भारत के अंदर करते हैं। इसलिए रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा, इनोवेशन बहुत जरूरी है, अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज यूरोप में सक्सेस कर गई वो भारत में होगी, भारत का रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी है कि हम लोग ड्रोन को मद्देनजर रखते हुए UAV को मद्देनजर रखते हुए न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चाहे साइबर है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चाहे स्पेस है नेविगेशनल है जियोस्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हर एक चीज के साथ मिलकर के अपना बनाना, अपने तरीके से उसको यकीन करना कि इसको कोई हैक ना कर सके, इसको कोई लड़ाई के मैदान में कोई भी हैकिंग नहीं होगी या जाम ना कर सके, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम भारत के अंदर बनाए, और इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस कोई भी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मुझे लगता है काफी थ्रस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर बने हैं उसमें बहुत जरूरी है, या अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ

0: ना हमारे को एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए नेतृत्व रखी, तो बहुत जरूरी है कि डिफेंस सेक्टर में भी हम लोगों ने उसी आले दर्जे पे अपना प्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे कि हमें गर्व होना चाहिए और हमको भी लगना चाहिए कि हमारे शक्ति से हमारा मनोबल ऊंचा हुआ।
1: बनर्जी साहब, जो आकाशवाणी के श्रोता दूर दराज के गांव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमने बड़े बड़े आंकड़ों पर चर्चा की, वो ये जानना चाहते हैं जब भारत जैसे देश का रक्षा उत्पादन इस तरीके से बढ़ता है तो एक सामान्य नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।
2: इसके कई सारे आंसर। पहला आंसर ये है कि जब हम अपने आप ही बनाएंगे तो हमारे को सबसे पहली चीज फैक्ट्रियां खड़ी होंगी। फैक्ट्रियां खड़ी होंगी तो एक कारीगर चाहिए, और मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कारीगर की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब वो फैक्ट्री खड़ी होगी वहाँ 100-500 आदमी काम करेंगे, उनके आसपास हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा, जॉब्स आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तो डीजी सेक्टर ने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे अच्छी तरीके से तो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने पड़ेंगे। जब पैसे लगेंगे तो जो इंजीनियर हैं, R&D के इंजीनियर हैं, लड़के पढ़ लिख के आए हैं IIT से और इंजीनियरिंग कॉलेज से, उनको मौका मिलेगा। मेटलर्जिकल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। जब आप ग्रो करेंगे तो, जब आपके एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इन सब की जरूरत पड़ेगी। निचले स्तर पर कारीगर, मैं लेबर नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड टास्क है, दिस इज नॉट लेबर, वेरी स्पेशलाइज्ड टास्क, तो आपको ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए। और वो ट्रेन्ड मैन पावर हमारी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या जो ITI है वो सिखाते हैं, वहां से लड़के लड़कियां चाहिए, ट्रेन्ड मैन पावर। एक जैसे छोटी सी आपको उदाहरण देता हूँ, एक जहाज में अगर एक रिवेट भी लगाना होता है वो एक स्किल्ड जॉब है, हाईली स्किल्ड जॉब है, कई सालों के परीक्षण के बाद वो लगता है एक रिवेट भी। जब आप जहाज में जाते हैं, एक सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं, आपको उसके विंग पर रिवेट लगे देखेंगे जो उसको होल्ड करते हैं, बड़ा हाईली स्किल्ड जॉब है। और सोच लीजिए मिलिट्री में कितना हाईली स्किल्ड जॉब होगा, वो जब लड़ाकू विमान की स्पीड ही 2000 किलोमीटर है तो उसको एक डिफरेंट किस्म की फ्रिक्शन चाहिए, डिफरेंट किस्म का मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए आपको, MRO हब यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल हब बनेंगे। साफरान एक इंजन मेकर है फ्रांस का, उन्होंने यहाँ बनाया, साफरान के इंजन रफाल में यूज होते हैं, तो आपको इंजीनियर चाहिए उनके। तो ये जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट करता है, सब छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी इम्पैक्ट करता है जो कि पढ़ लिख के आगे जाएंगे।
1: जी हाँ कुलकर्णी जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, हमने भारत की उपलब्धियों की चर्चा की, थोड़ी चर्चा चुनौतियों की भी कर लेते हैं कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में अभी किस तरह की चुनौतियां हैं भारत के सामने और उसको डील करने के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है।
0: अपने को मालूम है ये हमारे दुश्मन कौन है, इसमें तो ये सोचने की तो बात नहीं, और पैदा हो सकते हैं दुश्मन, क्योंकि कोई भी जो इस तरह के देश है वो भारत को उन्नति तरक्की करते हुए देखना पसंद नहीं करते। सबको लगता है कि भारत गरीब है, तो भारत अपने बलबूते पे एक लोकतंत्र होने के नाते जिस प्रकार से धीरे धीरे करके उस पायदान पे जा पहुंचा है, वहां पर अगर अपने को रुक रहना है, उससे और आगे बढ़ना है, अगर नंबर 1 GDP वाला अगर $22 trillion का है, नंबर 2 तकरीबन $17-18 trillion का है, तो नंबर 3-4-5 पे नहीं रुक सकता है, उसको भी कम से कम $14-15 trillion की इकोनॉमी बननी पड़ेगी। तो अपने को बहुत आगे जाना है, उसमें बहुत जरूरी है कि हम सबने मिलकर के सोचा है ये हमारा देश है, और उस देश को यकीनन जो भी है शक्ति में शांति है। हम जो इतना सब कुछ बनाते हैं लड़ने के लिए नहीं बनाते, यकीन करने के लिए, लड़ाई अगर होगी तो दूसरे जो भी लड़ेगा उसको मालूम है कि तो मधुमक्खी के चक्कर में उंगली मारी है और अब वो मधुमक्खियां जो है बिंबला गई, उनको नुकसान होगा, ये वो बात है। और इसके लिए हम लोगों को सतर्कता, और सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है हर एक फील्ड में। और ये कह रहे टेक्नोलॉजी पहले 10-15 साल में एक बार चेंज होती थी, अपने पास हथियार जो पुराने होते थे वो चलते, अब नहीं, टेक्नोलॉजी 3-5 साल में बदली हो जाती है। आज देखिएगा वो कौन सा है, वो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, फटाफट कौन से जनरेशन है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हवाई जहाज देखिए आपने रफेल इंपोर्ट किया, 4.5 जनरेशन, फिर 6th जनरेशन स्टिल। तो आप देखते हैं किस तरीके से लगातार जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती है। जो जब आप भारत के अंदर हम बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम उसको अपग्रेड करने की काबिलियत भी रखते हैं, हमें मालूम है हमने इसको किस तरीके से बनाया है, इसको किस पे, तो चाहे वो इंडियन ओशन में हमें शिप्स इस्तेमाल करनी है, सबमरीन इस्तेमाल करनी है, डिस्ट्रॉयर इस्तेमाल करने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, अंडमान निकोबार में आपने बहुत बड़ा सेटअप करना है, चाहे अपने एयरक्राफ्ट है, चाहे अपने UAV है, चाहे अपने ड्रोन वॉरफेयर है, चाहे अपने लाइट टैंक्स है, चाहे अपने आर्टिलरी पीसेस है, चाहे अपने स्मॉल आर्म्स है, या अपना बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स हैं, जूते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड का इक्विपमेंट है, हाई ऑल्टीट्यूड का क्लोथिंग है, सब कुछ भारत के अंदर बनना है। और ऐसा बनना है कि हर एक भारत के सिपाही को लगना चाहिए ये मेरे देश में बना है। और क्योंकि हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं, विश्व में जाकर के सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं. हमारा सैनिक यूएस के सैनिक के साथ मिलता है, हमारा सैनिक

0: देशों में, देश उनके सैनिकों के साथ मिलता है, बाहर देशों के साथ मिलता है, बाहर के देश के सैनिक भारत में आते हैं, वो देखते हैं भारत के अंदर किस तरीके से लड़का खड़ा है, उसके पास क्या हथियार है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, जो मनोबल है वो आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है जब ट्रेन वेल, आपका इक्विपमेंट अच्छा है, आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर पूरा विश्वास है, तो आपको मालूम है कि जीत मेरी होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जीत मेरी होगी, मैंने मेहनत करनी है, मैंने कोशिश करनी है, सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, अब जिम्मेवारी मेरी है। जब ये माहौल एक पैदा हो जाता है देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि देश तरक्की के रास्ते पे है और देश जिस मुकाम पर जाना चाहिए भारत को वो मुकाम जाएगा।
1: बैनर्जी साहब, कार्यक्रम में समय कम है, आखिर में आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि जब रक्षा उत्पादन भारत का बढ़ रहा है तो इससे भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति को भी मजबूती मिल रही है, अगर हाँ तो कैसे?
2: जी बिल्कुल, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमने ब्रह्मोस 3 ऐसे मुल्कों को बेची है जिनका चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है, वो साउथ चाइना सी में जो विवाद है उसका पार्ट है, वो उनमें से 2 एटलीस्ट फिलीपींस और वियतनाम, और तीसरा इंडोनेशिया जिसको हमने बेची है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मोस बड़ी स्पेसिफिक ब्रह्मोस उनको बेची है कि लैंड से चलेगी टुवर्ड्स द शिप, जमीन से सामने के युद्धपोत पे मारने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछी कैसे हमारी कूटनीति पे फर्क पड़ता है, हमारी कूटनीति पे जैसे तुर्की ने कुछ दिन पहले बोला कि भारत हमको इनसर्कल कर रहा है, आर्मेनिया को आम कर रहा है, साइप्रस को, ग्रीस को, जिस जिस से तुर्की की नहीं बनती उसको हम वेपन हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अब कूटनीति में एक और बात आती है, जैसे अब आप फ्रांस के साथ आपका बहुत अच्छा टाई अप है, यूएसएसआर यानी अब सोवियत रशिया के साथ, और रशिया के साथ मॉस्को मान लीजिए बहुत अच्छा टाई अप है, विमान बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए, को प्रोडक्शन के लिए, टैंक्स को प्रोडक्शन के लिए, इंजन के, हमारे जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं उसमें साफरन नामक एक कंपनी है फ्रांस की, उसके इंजन लगे हुए को 20 साल से, इंजन यहीं इंडिया में बनते हैं, रॉ मटेरियल भी यहीं से आता है, यहीं के लड़के लड़कियां उन फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दूसरी बात, एयरबस का C295 विमान वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन लगी हुई है उसकी, कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ यहाँ बनता है, कुछ तो बना रहे। मेरा मानना यह है एक टारगेट हमको रख के चलना चाहिए, हमने बहुत अच्छा काम किया है, 178,000 करोड़ पे आ गए, मगर एक कहावत है ना कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, और वो रास्ता वाकई में बहुत लंबा है, और इसमें एक तो हमारे मुल्क में एक बड़ी रियलिटी आनी चाहिए कि हम हर चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। 30 साल लग गए जी, 30 साल लगते हैं जहाज बनाने को, बिकॉज आपके को हाथ पकड़ के सिखाता नहीं है, कोई टीचर नहीं है वहाँ कि आपने ये बनाना, देयर इज नो टीचर, आपने खुद ही गलती करनी है, गिर के फिर सीखना है, और कोई बताएगा नहीं आपको कि इंजन कैसे बनेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा विमान का डिजाइन कैसे और उड़ता क्यों है, कितना थ्रस्ट चाहिए इंजन को, इसमें वेपन कैसे लगेंगे, वेपन फायर कैसे होंगे, रडार ने वो वेपन कैसे उठाने हैं, जमीन से आपने जब मिसाइल चलानी है तो रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, रडार उसको पकड़ के मिसाइल को बताएगा ऑटोमेटिकली कि फायर कर दो, ये कुछ सिखाएगा नहीं, कोई देयर इज नो टीचर, आप खुद ही टीचर हो, तो लेट अस नॉट क्रिटिसाइज कि 30 साल लगे, 20 साल लगे, लगते हैं इतने जी बिल्कुल लगते हैं, तेजस को 33 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं, परमाणु ऊर्जित पनडुब्बी को 30 साल लगे जी बिल्कुल लगते हैं इतने, हम जर्मनी से या फ्रांस से या अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो एक बहुत विकसित मुल्क है, हम भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक तो नो क्रिटिसिज्म, दूसरा R&D वेरी स्ट्रॉन्ग, R&D अनुसंधान जिसे बोलते हैं हिंदी में, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें इस टाइम, नो शॉर्टकट्स, जहां शॉर्टकट लगा वहां खेल खत्म है, नो शॉर्टकट्स, बेंचमार्क शुड बी वेरी हाई, रक्षा मंत्रालय ने बेंचमार्क बहुत हाई रखे हैं, अभी बेंचमार्क हाई रखना पड़ेगा, नो शॉर्टकट्स, R&D बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वे फॉरवर्ड है।
1: कुलकर्णी जी, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे है, जैसा कि बैनर्जी साहब कह रहे हैं कि राह पनघट की आसान नहीं होती है लेकिन कदम तो बढ़ाने ही होते हैं, तो अगले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उत्पादन के नजरिए से आप कहां देखते हैं?
0: मेरे को लगता है धीरे धीरे करके कम से कम अगर हम अपना इम्पोर्ट जो है 21% तक रखें और 80% हम अपना खुद बनाने की कोशिश करें, और जब हम खुद बना रहे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसमें कोई ये नहीं कट कॉर्नर्स करो ना, ये मानना करना पड़ेगा ये हमारा है और हमने इसको आले दर्जे का बनाना है। अगर हमने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है तो सबको लगना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम एक बात माने कि ये हमारे लिए बना है, हमने इसको इस्तेमाल करना है। मुझे लगता है वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अगले 5 साल के अंदर एक तो हमारा एक्सपोर्ट जो है मुझे लगता है उसमें काफी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, अभी तकरीबन 40-45 हजार करोड़ का है, वो खुद ही 50 हजार करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, और अपना जो इंटरनल जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन जैसे अभी डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ पे पहुंचा है, उम्मीद करता हूँ ये भी 3,00,000 करोड़ पार कर जाएगा। हमारे पास बहुत अच्छे दिमाग हैं, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास इच्छा है, करने की काबिलियत है, और हम करेंगे, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, बट मेक इन इंडिया विल बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
1: आज की चर्चा से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संकल्प है जो अब धरातल पर परिणाम देता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक स्वतंत्रता और वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जब किसी

0: राष्ट्र के सैनिकों के हाथों में उसके अपने देश में बने हथियार और तकनीक होती है, तब आत्मविश्वास भी बढ़ता है और रणनीतिक स्वायत्तता भी बढ़ती है। आयातक से निर्यातक बनने की ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन ये सफर हमें बताता है कि दूरदर्शी नीतियाँ, तकनीकी नवाचार और सामूहिक प्रयास किसी भी लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ता रहे, हम नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, हमें कार्यक्रम में अनुमति दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब आपका, अजय जी आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बनर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म फरा से गीत, प्रसून जोशी का संगीत, जतिन ललित का आवाज़, इस गीत में सोनू निगम और सुनिधि चौहान की।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अभी आपने सुना फिल्म फना से ये गीत। आवाज दे रहे थे गीत को सोनू निगम, श्रेया घोषाल। प्रसून जोशी का गीत, संगीत जतिन ललित का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत धूम 3 फिल्म से आवाजें इस गीत में सुनिधि चौहान और साथियों की।

गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत प्रीतम का, आवाज़ इस गीत में थी सुनिधि चौहान और साथियों की फिल्म धूम 3 से। ये गीत अभी आपने सुना और आइए सुनते हैं फिल्म बादशाहों का ये गीत, आवाज़ें नुसरत फ़तेह अली खां, राहत फ़तेह अली खां और साथियों की।

गीत मनोज मुंतशिर का संगीत। इस गीत में तरिश बागची का और आवाज़ इस गीत में नुसरत फ़तेह अली खां और राहत फ़तेह अली खां साथियों की थी। फिल्म बादशाह से अभी आपने सुना ये गीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फिजा से। आवाज करसन सरगथिया और सुनिधि चौहान की, तेजपाल कौर का गीत संगीत, अनु मलिक का, फिल्म फिजा से ये गीत।

गीत तेजपाल कौर का, संगीत अन्नू मलिक का, आवाज़ फिल्म फिजा के इस गीत को दे रही थी सुनिधि चौहान और करसन सरगतिया। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रेस 2 से आवाज़ बेनी दयाल और शर्मली खोलगड़े की।

0: मयूरपुरी के गीत को संगीत दिया प्रीतम ने। फिल्म रेस टू से अभी आपने सुना ये गीत। आवाज़ दे रहे थे गीत को बेनी दयाल और शालमरी खोलगड़े। और आइए सुनते हैं फिल्म रेस से ये गीत, आवाज़ें इस गीत में मोनाली और साथियों की।
1: All right, see, it hurts.

गीत समीर का, संगीत प्रीतम का, फिल्म रेस में भी आपने सुना मोनाली और साथियों को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में उस्ताद असद अली खां का वीणा वादन, जो राग पूरिया धनश्री में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में असद अली खां का वीणा वादन, जो राग पूरिया धनाश्री में निबद्ध था। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमियो में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय

0: our fourth plant of semiconductors will be fully functional commercial manufacturing in our country.
1: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।